1954 की फिल्म नागिन। संगीत की जानकार पर 40s 50s से निकाली हुई चुने हुए संगीत, ऐसे गीत जो हिट परेड में अपनी छाप छोड़ चुके हैं। ऐसे ही गीतों से हम अपने कार्यक्रम का शुरुआत करते हैं। When melody was supreme, 40s 50s and 60s, और इस बार फिल्म 1953 की फिल्म राज कपूर साथ में नरगिस, शंकर जयकिशन के संगीत पर।

0: गीतकार हजर जयपुरी, संगीतकार शंकर जयकिशन लता मंगेशकर के साथ मुकेश 1953 की फिल्म आ संगीत के जंकार पर 40s, 50s और 60s से निकाली हुई चुने हुए संगीत।
1: आपने बना लिया है गहरा संबंध, सिर्फ मनोरंजन नहीं बल्कि समाज सेवा, इसी स्टेशन के सहारे हम करते हैं आपके साथ। फीजी समाचार, भेंट वार्ता, स्थानीय समाचार, सामाजिक सूचनाएं, सुनते रहिए संगीत की झनकार।
0: संगीत की झनकार पर मैं हूं आपका साथी फिरोज खान। हर रविवार की सुबह 10 से लेकर 12:30 बजे तक आपके लिए चुने हुए लोकप्रिय संगीत, पुराने फिल्मों से निकाली हुई एंड ऑफकोर्स करीबन 11 से लेकर 12:30 बजे तक द अदर गोल्डन ईयर्स ऑफ बॉलीवुड हिट ऑफ 90s। लेकिन 17-1 को छोड़कर आप जाइएगा मत। हर रविवार को खास प्रोग्राम चलती है स्टेशन पर, आपको याद रहे 2:30 से लेकर 5 बजे तक। सू बहुत ही मुश्किल से अपने प्रोग्राम को तैयार करके आपके पास शामिल होती है, आपके कॉल्स को रिसीव करती है। शी टेक्स डेडिकेशन, रिक्वेस्ट, हेलो, जो भी हो। डोंट फॉरगेट 3279-1701 फ्रॉम 2:30 to 5 p.m. here on Radio 1701. But today is a very special day. Well, actually, 15th of May is a very special day for our Indian listeners. We have a lot of listeners of Indian origin here in Brisbane and all around the world listening to 1701. But many of them are from Fiji. And 15th of May is a special day for Fiji Indians. We pyar se hum usko Girimitians bolte hain. Ji haan, that was the first ship that arrived in Fiji on this particular day, 15th of May. And to commemorate them, Indians all around the world are celebrating this event with song, dance and everything. And today, we'll be celebrating it with you from 2:30 to 5. So why don't you give Sue a call, 2:30 and 5 this afternoon on Radio 1701, 3279-1701. And guess what? I've got Sue on the line at the moment. And I'm just going to ask her one question. How excited are you, Sue, to prepare this special program very close to your heart this afternoon?
2: Hello, Feroz. How are you?
0: I'm fantastic. Thank you.
2: Today, very excited and a bit of emotional time for us all Fiji people, remembering all Girimitians today. Now, as we all know, this is the time that, and this is the month our Girimitians came from Fiji, from India to Fiji. So how can we forget them? So I will bring some Girimitians stories, some documentaries, some Fiji songs, Fiji jokes, whatever. And if anybody wants to remember Girimitians on this day with any song or anything, you can call me on 3279-1701.
0: Achha, Sue, aapko yaad rahe, sirf Girimitian nahi, lekin aapke usual program mein, usual jo गीत संगीत आप प्ले करते हैं, बहुत ही अच्छे अच्छे सिलेक्शन लाते हैं, यूपी के, पंजाबी के, राजस्थान के सिलेक्शन, और उसमें आज मिक्स रहेगा खास तौर पर फिजी के आर्टिस्ट। हाँ
2: जी हाँ फिरोज, स्पेशली दिस प्रोग्राम को मैंने तैयार किया है फिजी गिरमिटियस पर, लेकिन जो मेरा प्रोग्राम है सभी को पता है इट्स अ मिक्स खिचड़ी प्रोग्राम, यानी कि उसमें राजस्थान भी होता है, रिमिक्सेस भी होता है, लेटेस्ट रिमिक्सेस, ऑल हिट्स, बहुत कुछ मैं लेकर आती हूँ, नागपुरी गीत लेकर आती हूँ, पहाड़ी एल्बम से गीतें लेकर आती हूँ, सो दैट मेक्स अ मिक्सचर ऑफ माई प्रोग्राम, दैट मेक्स मी हैप्पी एंड आई लव एंजॉइंग that sort of program.
0: Okay, so entertainment from Fiji, aapke khas taur par kaun kaun si cheez include karege program mein aaj?
2: Fiji mein like Fiji jokes.
0: Fiji joke apna alag jagah rakhta hai na?
2: Ji, bilkul sahi. Fiji ka apni alag bhasha hai, apne log hai. Fiji ka alag log geet hoti hai, bhajans hai, aur bahut kuch qawwali hai, aur bahut kuch Fiji mein sunne ko milta hai.
0: Har sham ko main aapke program ko sunta hu, definitely sunta hu. That is the time I do the preparation for my cooking. I love cooking. Aapka program between 2:30 and 5 I listen to, and I'll be really looking forward this morning to listen to your program. Sue, thank you for joining in, and we are definitely looking forward, and hopefully listeners आप इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं तो खासतौर पर 2:30 से लेकर 5 बजे तक सू के साथ दीजिए. टेलीफोन नंबर 3279701. और एक बात और, 5 के बाद शशि, शी विल आल्सो बी प्रेजेंटिंग इन अ प्रोग्राम अ सेगमेंट ऑन गिरमिट.
2: Thank you for us. Thank you so much. Looking forward for 2:30. Join me from 2:30 on Radio Visvani AM on special Gurmit segment, especially for Fiji Circus.
0: तो अभी आप सुन रहे थे और प्रेजेंटर सू उसके प्रोग्राम फ्रॉम हाफ पास्ट 2 to 5 दिस आफ्टरनून ऑन रेडियो 1701 ब्रिस्बेन. संगीत की जानकार पर इंतजार करने के लिए, साथ देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया. मैं हूं आपका साथी फिरोज खान. हर रविवार को 10 से लेकर 12:30 बजे तक संगीत की जानकार का शुरुआत करते हैं. जैसे मैं बता चुका हूं, चुने हुए लोकप्रिय संगीत गोल्डन ईयर्स ऑफ बॉलीवुड, हिट्स ऑफ 50s, 60s and 70s से निकाली हुई चुने हुए संगीत जिसको सुनकर आपको संगीत की जानकार को बार बार सुनने को जी चाहेगा. याद रहे, ये है संगीत की जानकार, बातों की जानकार नहीं. लेट्स टॉक मोर म्यूजिक. आपके लिए, आपके खिदमत में चुने हुए लोकप्रिय संगीत 40s, 50s and 60s से निकाली हुई. उसके बाद करीबन 11 से लेकर 12 बजे तक आपके लिए हम पेश करते हैं द अदर गोल्डन ईयर्स ऑफ बॉलीवुड, हिट्स ऑफ 90s. फिलहाल ये है संगीत की जानकार, व्हेन मेलोडी वाज सुप्रीम.

बाप रे बाप 1955 के फिल्म बाप रे बाप। जी हाँ, संगीत की झनकार में 40s 50s से निकली हुई संगीत के अंतर्गत आज सुबह आपका परिचय करा रहे हैं, खास तौर पर 1950s से निकली हुई चुने हुए संगीत। ओपी नैयर संगीतकार, आशा भोसले के साथ किशोर कुमार, पर्दे पर किशोर कुमार, 1955 की फिल्म बाप रे बाप। 1950s से निकाली हुई चुने हुए संगीत को आगे बढ़ाते हुए इस बार आपका परिचय करा रहे हैं, इंट्रोड्यूस करा रहे हैं द डायनेमिक डुओ ऑफ 1940s 50s एंड 60s, दैट्स संगीतकार लक्ष्मी कांत प्यारेलाल और आवाज मोहम्मद रफी। मोहम्मद रफी सेंग most song for this music director than any other music directors. Ji haan, total of 390 songs he sang for Lakshmikant Pyarelal. He won a Filmfare Award in 1964 for film Dosti. तो चलो फिल्म दोस्ती से निकाली हुई दो चुने हुए संगीत आपकी खिदमत में पेश करेंगे। आपको याद होगा पर्दे पर संजय खान, उमा और बेबी फरीदा, गीतकार थे मजरू सुल्तानपुरी। The dynamic duo of Lakshmikant and

award-winning combination of Lakshmikant, Pyare Lal and Mohammad Rafi. 1964 ki film Dosti Se Nikali Hui bhi aap sun rahe the. Geetkar Majru Sultanpuri. Parde par Sanjay Khan, Uma aur Baby Farida. ये है संगीत की जानकार। हम अपने कार्यक्रम का शुरुआत करते हैं चुने हुए लोकप्रिय संगीत 40s, 50s और 60s से निकाली हुई। फिलहाल 40s, 50s, 60s से चुने हुए संगीत को आगे बढ़ाते हुए इस बार हम शामिल करते हैं साल 1956 फिल्म भाई भाई। पर्दे पर किशोर कुमार और साथ में निम्मी, आवाज किशोर कुमार, मदन मोहन संगीतकार और गीतकार राजेंद्र कृष्ण, आवाज गीता दत्त। यह है संगीत की झंकार, आपका साथ फिरोज खान, हर रविवार की सुबह 10 से लेकर 12 बजे तक।

1956 के फिल्म भाई भाई पर्दे पर किशोर कुमार और मिमी, मदन मोहन संगीतकार, गीतकार राजेंद्र कृष्ण, आवाज गीता दत्त, संगीत के जानकार पर वन मेलेडी वॉज सुप्रीम। जी हाँ, उन दिनों संगीत धुन संगीत का जान माना जाता था। और हर रविवार को 10 से लेकर 12 बजे तक आपके लिए हम पेश करते हैं 40s, 50s, 60s से निकाले हुए ऐसे संगीत जो हिट परेड में अपनी छाप छोड़ चुके हैं, जिसमें धुन हो। और अब चलो साल 1956 एक बार फिर। आपको याद होगा मैम साहब, मीना कुमारी पर्दे पर और साथ में किशोर कुमार, मदन मोहन संगीतकार और गीतकार राजेंद्र कृष्ण। जी हाँ, दिल दिल से मिला कर देखो, अपना तो बना कर।

0: संगीत की झनकार पर आपके साथ फिरोज खान हमारे स्टूडियो में।
1: आपने बना लिया है गहरा संबंध, सिर्फ मनोरंजन नहीं बल्कि समाज सेवा, इसी स्टेशन के सहारे हम करते हैं आपके साथ फीजी समाचार, भेंट वार्ता, स्थानीय समाचार, सामाजिक सूचनाएं। सुनते रहिए संगीत की झनकार।
0: जी हाँ, डाउन मेमोरी लेन, साल 1959, फिल्म धूल का फूल, पर्दे पर माला सिन्हा, रजत कुमार, अशोक कुमार और नंदा, एन दत्ता संगीतकार, गीतकार शाहिर लुधियानवी, आवाज मोहम्मद रफी, मोहम्मद रफी नहीं लेकिन महेंद्र कपूर के साथ आशा भोसले। डाउन मेमोरी लेन, वे यू वन यू फर्स्ट हेड दिस सॉन्ग।

डाउन मेमोरी लेन। इस बार साल 1959, फिल्म धूल का फूल। एन दत्ता संगीतकार, गीतकार शाहिल लुधियानवी, पर्दे पर माला सिन्हा के साथ रजेंद्र कुमार, अशोक कुमार और नंदा, और आवाज महेंद्र कपूर के साथ आशा भोसले। तो चलो साल 1957 इस बार, और फिल्म तुमसा नहीं देखा, शम्मी कपूर और आशा पारे की फिल्म। ओपन ईयर संगीतकार आवाज रफी और आशा भोसले, गीतकार मजरू सुल्तानपुरी।

0: जुल्फों वाले आते हैं घेरा डाले, मेरी क्या बात है।
1: वास्तव में मैं आपके साथ देता हूँ रविवार के सुबह 6 बजे से। हर रविवार को सुबह 6 से 7 बजे तक आपके लिए हम पेश करते हैं अपने व्यक्तिगत प्लेलिस्ट से निकाली हुई चुने हुए डिवोशनल संगीत। सो इफ यू आर वन ऑफ दोस अर्ली राइजर्स, व्हाई डोंट यू जॉइन मी, स्टार्ट योर संडे मॉर्निंग विद डिवोशनल संगीत फ्रॉम 6 to 7, स्पेशली सिलेक्टेड डिवोशनल संगीत फ्रॉम माई प्लेलिस्ट। उसके बाद 7 से लेकर 8 बजे तक आपके लिए हम पेश करते हैं हमारा साप्ताहिक इस्लामिक प्रोग्राम सवाल और जवाब हजरत मौलाना फजल दाद के साथ, और फिर बहुत ही लोकप्रिय प्रोग्राम वेद वाणी आप सुन सकते हैं 8 से लेकर 9 बजे तक। और फिर मैं आपका साथ देता हूं 10 से लेकर 12:30 बजे तक संगीत की जानकार, जिसका शुरुआत हम करते हैं चुने हुए लोकप्रिय संगीत 40s, 50s, 60s और 70s से निकाली हुई। उसके बाद करीबन 11:30 से लेकर 12:30 बजे तक आपके लिए हम पेश करते हैं हिट्स ऑफ 90s और रिसेंट पास्ट हिट। और हाँ, आपको याद दिला दूं कि 12:30 से 5 बजे तक 3279 रेडियो 79.1 के हॉटलाइन 3279 इज ओपन। Roy Singh and Sue are there to receive your call and dedicate songs, your fromages, or say hello to your friends. Why don't you join them? Give them a call, 3279-1701 from 12:30 to 5 p.m. So why don't you make it a date every Sunday morning from 6 to 5 p.m. here on Radio 1701. Ji haan, yaadon mein is baar saal 1949, film Barsaat, RK Production. नरगिस, प्रेमनाथ, कैन सिंह, कुकू और निम्मी पर्दे पर, डायरेक्टेड बाय राज कपूर, संगीतकार शंकर जयकिशन, आवाज लता मंगेशकर, हजरत जयपुरी गीतकार। जी हाँ, साल 1949, वर यू व्हेन यू फर्स्ट हर्ड दिस सॉन्ग।

संगीत की झनकार पर ये है यादें। गुलाबी झाड़ों की खुनकी, सावन की घनघोर घटाएं, गर्मी की तपती दोपहर, हक्स के खुशबूदार पर्दे और फिजाओं में गूंजता सन्नाटा। अब जिंदगी में यादों की सिवा बचा भी क्या है, सिर्फ यादें। और ये है यादों का सफर।

यादें जो खुशबू बनकर मन आंगन महकाती हैं, तो कभी कभी यही यादें कांटों की सेज भी बन जाती हैं।

0: यादें सजा है,
1: यादें गुनाह है,
0: यादें मुस्कुराहट है,
1: यादें ख्वाब है।
0: यादों के सहारे ही व्यक्ति आज से कल में कदम रखता है और पीछे मुड़कर बीते कल को निहारता है।
1: ये है यादों का सफर।

0: रेडियो वो हो जिसमें महबूब का दम हो, रेडियो वो जिसमें महबूबा की सांसें हो, रेडियो वो जिसमें समाज सेवा हो।
1: यह संगीत की जानकार आपके साथ फिरोज खान हमारे स्टूडियो में ठीक 11:30 बजना चाहते हैं।

0: दिलों को झंकृत करे,
1: हवाओं में फिजाओं में दिलकश संगीत के रंग बिखेरे।
0: ये है संगीत की झनकार और मैं हूँ आपके साथी फिरोज खान।

0: अभी थोड़ी देर में आपके लिए हम पेश करेंगे हिट्स ऑफ 90s, लेकिन उससे पहले छोटी सी ब्रेक, कमर्शियल ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं हिट्स ऑफ 90s अंटिल 12:30।
1: भाई मम्मी पापा की तबीयत की बहुत टेंशन रहती है यार, हम यहाँ ब्रिस्बेन में और वो इंडिया में अकेले हैं।
2: तो उमसॉग से बात कर, इंडिया में एल्डर्स और दिव्यांगनों के लिए इन होम केयर देते हैं एकदम प्रोफेशनल तरीके से।
1: हाँ लेकिन भरोसा कैसे करूं?
2: अरे उमसॉग एक ऑस्ट्रेलियन कंपनी मैपल केयर की सब्सिडियरी है और मैपल केयर NDIS का रजिस्टर्ड प्रोवाइडर है।
1: अच्छा मतलब स्टैंडर्ड और रिस्क मैनेजमेंट भी ऑस्ट्रेलिया जैसा?
2: बिल्कुल, खाना दवाई हेल्थ चेक सब कुछ जैसे आप खुद देख रहे हो।
1: फिर तो आज ही वेबसाइट देखनी पड़ेगी।
2: उनकी वेबसाइट www.omsorg.co.in है। भारत में नंबर +91 8448 381 360 है और ऑस्ट्रेलिया में 0470 631 801। प्यार और देखभाल की कोई दूरी नहीं होती भाई।
3: ओमसॉग, केयरिंग विद डिग्निटी।
4: रेडियो वो हो जिसमें महबूब का दम हो, रेडियो वो जिसमें महबूबा की सांसें हो, रेडियो वो जिसमें समाज सेवा हो।
5: 24 घंटा आपका साथ देता है रेडियो ब्रिजवानी, द इंडियन रिदम फ्रॉम डाउन अंडर।
6: कभी तो रुलाए, कभी कभी चैन दे तो सताए, कभी हमें करते बेखबर
5: रेडियो ब्रिजवानी।

0: जी हाँ, छोटे से कमर्शियल ब्रेक के बाद वापस आकर एक बार फिर हम आप सबका स्वागत करते हैं संगीत की झनकार पर, जिसको हम पेश करते हैं स्टेशन पर हर रविवार के सुबह 10 से लेकर 12:30 बजे तक। प्रोग्राम का शुरुआत करते हैं यादों का सफर के साथ, हिट्स ऑफ 40s, 50s, 60s, 70s से निकाली हुई चुने हुए संगीत। उसके बाद आप सुनते हैं आखिर में संगीत की झनकार पर आप सुनते हैं हिट्स ऑफ 90s, द अदर गोल्डन एज ऑफ बॉलीवुड, हिट्स ऑफ 90s, चुने हुए लोकप्रिय संगीत 90s से निकाली हुई। फिलहाल मैं हूं आपके साथ ही फिरोज खान और ये है संगीत की झनकार और आपका रेडियो स्टेशन 1701 ब्रिस्बेन पर।
1: संगीत संसार में हर सप्ते नई एल्बम्स जारी होते रहते हैं, ऐसे में क्या नया और क्या सुनने के काबिल है इसकी पकड़ रखना जरा मुश्किल है ना। हर एल्बम को सुनने के बाद हम चुन चुन कर बेहतरीन गाने

8790 का शुरुआत कर रहे हैं फिल्म कर्तूस, अनमिस्टेकेबल वॉइस ऑफ उदित नारायण, फिल्म कर्तूस।

ये है 1701। आप सुन रहे हैं हिट्स ऑफ 90s और रिसेंट पास्ट हिट, ऐसे गीत जो हिट ब्रेक में अपनी छाप छोड़ चुके हैं। ऐसे ही गीत से हम अपने कार्यक्रम का शुरुआत करते हैं, रिसेंट पास्ट हिट्स और हिट्स ऑफ 90s, ऐसे गीत जिसको एक बार सुनकर बार बार सुनने को जी चाहता है।

ये है हिट्स ऑफ 90s और ये है संगीत की जानकार, बातों की जानकार नहीं, मोर म्यूजिक लेस टॉक, संगीत की जानकार रविवार को 79.1 ब्रिस्बेन पर।

संगीत की झिंकार पर आपके साथ फिरोज खान, एंटरटेनिंग ब्रिस्बेन ऑडियंस फॉर द लास्ट 4 decades. संगीत की झिंकार पर हिट्स ऑफ 90s, यानी कि चुने हुए लोकप्रिय संगीत, द अदर गोल्डन ईयर्स ऑफ बॉलीवुड.

तू प्यार है किसी और का, तुझे चाहता कोई और है। वन हैज योर हार्ट द अदर योर नेम। यह है संगीत के जनकार और आप सुन रहे हिट्स ऑफ 90s। संगीत के जनकार का शुरुआत करते हैं यादों के सफर के साथ, हिट्स ऑफ 40s, 50s, 60s और 70s, और संगीत के जानकार को खत्म करते हैं हिट्स ऑफ 90s, द अदर गोल्डन ईयर ऑफ बॉलीवुड से। और हिट्स ऑफ 90s के आखिरी नगमा आपके लिए हम छोड़ रहे हैं, और जाते जाते आपको ये बात बता दें, ठीक 12:30 बजे से रॉय और सू और रॉय विल बी हियर एंड द टेलीफोन लाइंस ऑफ 1701-2379-1701 विल बी ओपन। सो इफ यू हैव अ सॉन्ग टू डेडिकेट और सॉन्ग टू listen to or make a request, jo bhi ho, if you just want to say hello to Sue, why don't you give him a call at 12:30. Roy and Sue starting at 12:30 right up to 5 o'clock. So remember, Sue and Roy will listen to you for your request because you listen to them. Filhal main hu aapke saath Firoz Khan, aur hamara aur aapka saath hoga agle revue ko 10 baje se.

0: अनुज, कोई अच्छा सा लॉयर सजेस्ट करो ना, ऐसा जो मेरी सारी बात ढंग से सुने, समझे और फिर मेरे तरीके से मुझे समझाए।
1: अर्शाद लॉयर्स है तुम्हारी प्रॉब्लम का सलूशन। कमर्शियल मैटर हो, जैसे लीज का मामला, बिजनेस हो या फिर घरों की बाइंग सेलिंग का मामला, और डिवोर्स जैसे फैमिली मैटर्स भी, वो सब में मदद कर सकती हैं। और फिक्र करने की जरूरत नहीं है, अदालत तक तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे। अभी फोन करो 0420-933-171 पर और 15 मिनट का फ्री फोन कंसल्टेशन ले लो।
0: अरे वाह, इनका पता बताना।
1: अर्शाद लॉयर्स, माउंट ग्रेविट शो ग्राउंड्स, ऑफिस 5, 1644 लोगन रोड, माउंट ग्रेविट, एम्पल पार्किंग। कॉल अर्शाद फ्रॉम अर्शाद लॉयर्स नाउ ऑन 0420-933-171। वेबसाइट www.arshadlawyers.com। We pride ourselves in providing excellent service.
2: हनी, ये तुम कहाँ ले जा रही हो? ये ग्रोसरी पास वाले शॉप से ले सकते हैं ना?
3: Yes baby, but no compromise with quality and health. हम जाएंगे सिर्फ MC's Indian and Island Food.
2: ऐसा क्या खास है वहाँ?
3: सब कुछ, quality spices, lentils, rice, flour और frozen sabzi from Fiji and India. Brisbane के best Indian butcher supplying farm fresh goat, lamb, chicken and duck और fresh local produce भी रखते हैं. साथ ही kitchenware and disposable plates की large range किसी भी function के लिए.
2: अरे वाह, इंटेलिजेंट हो गई हो।
3: MC's Indian and Island Food, serving Brisbane since 1999. Open 7 days. Find us on Facebook or visit website mcsfoods.com.au. 1/268 Kingston Road, Slacks Creek, phone number 3804-3818. That's 3804-3818.
4: ओए राहुल, विरे तेरे केस दा की होया?
5: ओ यारा, मैं बहुत वरीड़ा। I actually want an experienced lawyer to handle my case.
4: Go for the best, Vire. Atul Bhardwaj ji nu ajji contact karo. Ona de kol vast experience a. Te law di entry cases nu handle karan ji o expert han. Criminal law, domestic violence, traffic drug offense vich 12 saal to vadh da rich experience. Te conveyance, family law, immigration laws vich vi Bhardwaj and Associates de lawyers da vast experience a. And the best point, they understand the stress that you go through and work effectively to minimize it.
5: Thanks a ton, Vire. I'm so relaxed to hear that.
4: Don't risk your life. Talk to Atul before you talk to police. Ajji contact karo Atul Jino on 0400-234-235. That is 0400-234-235.
6: Earn money from your empty drink containers with Containers for Change. Your empty eligible cans, bottles and cartons receive a 10 cents refund each. We call it Bincoin. Save, spend or donate your Bincoin to a cause you support. There's a Containers for Change near you. Bank it, don't bin it. Visit the website to find your nearest refund point and start trading for 10 cents today.

है रेडियो 79 जिसके द्वारा आप हर रोज हमारे हिंदुस्तानी कार्यक्रम को सुनते हैं। याद रहे हमारा टेलीफोन नंबर है 3279-1701। अगर आप सूचनाएं या एडवर्टीजमेंट्स भेजना चाहते हैं तो आप कृपया हमारे पास फैक्स करें। हमारा फैक्स नंबर है 3279-2506।

Good afternoon and welcome back to Radio Brizwani. नमस्कार केमचो सासिकाल अस्सलाम वालेकुम और बुला कहते हुए एक बार फिर आप सभी का हार्दिक स्वागत है रेडियो ब्रिजवानी पर। बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी का हार्दिक स्वागत हम करना चाहेंगे रेडियो ब्रिजवानी पर। और धन्यवाद इसलिए कि ठीक अभी से लेकर ढाई बजे तक आपका हमारा साथ रहेगा रेडियो ब्रिजवानी पर।

आपका और हमारा साथ रहेगा। ठीक अभी से लेकर 2:30 बजे तक रेडियो ब्रिजवानी पर शाम का सफर में आपने अपना रेडियो अभी खोला, आप सभी का हार्दिक स्वागत हम करना चाहेंगे रेडियो ब्रिजवानी पर। साथ दीजिएगा। ठीक अभी से लेकर 2:30 बजे तक आपका और हमारा साथ है रेडियो ब्रिजवानी पर। रेडियो ब्रिजवानी आपकी पहचान। याद कीजिएगा 2 घंटे के लिए खूबसूरत सा कार्यक्रम मिली जुली संगीत लेकर अपने स्टूडियोज में एक बार फिर हम उपस्थित हो चुके हैं। याद कीजिएगा रोहित सिंह साथ देगा। ठीक अभी से लेकर 2:30 बजे तक आपने अपना रेडियो भी खोला, सभी का हार्दिक स्वागत हम करना चाहेंगे। ठीक 12:30 बज चुका है। ठीक अभी से लेकर 2:30 बजे तक आपका हमारा साथ है। देश विदेश में एक कार्यक्रम आप सुन रहे हैं, आपसे का हार्दिक स्वागत है। ऑस्ट्रेलिया में आप ये कार्यक्रम सुन रहे हैं, इंटर स्टेट में है और ब्रिस्बेन में अगर आप है, आप सभी का हार्दिक स्वागत है रेडियो ब्रिजवानी पर। 1700 किलोहर्ट्ज पे कार्यक्रम आपके लिए प्रसारित कर रहे हैं। याद कीजिएगा रेडियो ब्रिजवानी आपकी पहचान। याद कीजिएगा कार्यक्रम लाइव आपके लिए पेश कर रहे अपने स्टूडियो से। याद कीजिएगा रोहित सिंह के साथ है। ठीक अभी से लेकर 2:30 बजे तक आपका हमारा साथ है रेडियो ब्रिजवानी पर। बदले कैसे कैसे तेवर फजाने, बदले साथ दीजिएगा खूबसूरत सा कार्यक्रम लेकर हम उपस्थित हैं स्टूडियोज में। 2 घंटे का कार्यक्रम साथ जरूर दीजिएगा दोस्त साथी रोहित सिंह आप सभी के सेवा में। ठीक अभी से लेकर 2 घंटे तक शाम का सफर में।

और आपने अपना रेडियो अभी खोला, सभी का हार्दिक स्वागत है रेडियो ब्रिजवानी पर। मैं हूं रोहित सिंह, ठीक अभी से लेकर टाइम दे तक आपका हमारा साथ है रेडियो ब्रिजवानी पर। दो घंटा का खूब सा कार्यक्रम, और हमेशा की तरह कार्यक्रम को आगे बढ़ाने से पहले हमारे स्थानीय कलाकार और स्थानीय कलाकार फिजी के, और आज के हमारे स्थानीय कलाकार सिमसा की आवाज में बहुत ही खूबसूरत गीत आप सभी के लिए।

0: Beyond what you see, Q11700, the master number of Vedic tradition, a heritage Queensland plate, first issued in 1922, a piece of Queensland history with full provenance, owned outright, transfer ready. For the buyer who understands that the number you carry is a statement of who you are, Q Plate Sales. Inquire at qplatesales.com.au. It's not just a number, it's a statement.
1: Earn money from your empty drink containers with Containers for Change. Your empty eligible cans, bottles and cartons receive a 10 cents refund each. We call it Bincoin. Save, spend or donate your Bincoin to a cause you support. There's a Containers for Change near you. Bank it, don't bin it. Visit the website to find your nearest refund point and start trading for 10 cents today.
2: हनी ये तुम कहाँ ले जा रही हो ये ग्रोसरी पास वाली शॉप से ले सकते हैं ना
3: यस बेबी बट नो कॉम्प्रोमाइज विद क्वालिटी एंड हेल्थ हम जाएंगे सिर्फ MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड
2: ऐसा क्या खास है वहाँ
3: सब कुछ क्वालिटी स्पाइसेस लेंटिल्स राइस फ्लावर और फ्रोजन सब्जी फ्रॉम फिजी एंड इंडिया ब्रिस्बेन के बेस्ट इंडियन बुचर सप्लाइंग फार्म फ्रेश गोट लैम्ब चिकन एंड डक और फ्रेश लोकल प्रोड्यूस भी रखते हैं साथ ही किचनवेयर एंड डिस्पोजेबल प्लेट्स की लार्ज रेंज किसी भी फंक्शन के लिए
2: अरे वाह इंटेलिजेंट हो गई हो
3: MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड सर्विंग ब्रिस्बेन सिंस 1999 ओपन 7 डेज फाइंड अस ऑन फेसबुक और विजिट वेबसाइट mcsfoods.com.au 1/268 किंगस्टन रोड स्लैक्स क्रीक फोन नंबर 3804-3818 दैट्स 3804-3818

तो साथियों क्यों जगह रोहित के साथ ही कार्यक्रम आप सभी रेडियो ब्रिस्वानी पर सुन रहे हैं। ठीक अभी से लेकर ढाई बजे तक आपका हमारा साथ है और हमारे स्टूडियो के हरीश सर ठीक 5 मिनट रहना चाहते हैं एक बजने में। क्या कर रहे हैं आप सभी? शायद भोजन कर रहे होंगे या घर पर विश्राम कर रहे हैं। शायद थोड़ी देर में बारिश फिर से एक बार होगा, सावधानी पर रखिएगा। और खूब ठंड भी हो रहा है दोस्त साथियों। क्या आज भोजन में है? लंच के लिए आज क्या है? दाल चावल है, ढोकला खा रहे हैं, इडली सांभर खा रहे हैं, क्या खा रहे हैं आप सभी? हम तो स्टूडियो में अकेले बैठे हुए हैं आप सभी का मनोरंजन कराने के लिए। साथ दीजिएगा, चलते हैं लता मंगेशकर की आवाज में बहुत ही खूबसूरत संगीत आप सभी के लिए। रेडियो ब्रिस्वानी पर याद कीजिएगा, मैं हूं रोहित सिंह, साथ दूंगा ठीक अभी से लेकर 2:30 बजे तक।

अंदर साथी याद कीजिएगा रोशनी के साथ है रेडियो ब्रिस्बेन पर ठीक अभी से लेकर 2:30 बजे तक साथ जरूर दीजिएगा और आप हमें टेक्स्ट मैसेज भी कर सकते हैं 04110226 पर।

0: यार साग में कुछ दम नहीं है, बिल्कुल मजा नहीं आया।
1: किसी दिन घर आना, असली देसी घी में साग बनाकर खिलाऊंगा तुम्हें।
0: कहाँ यार, आजकल असली देसी घी मिलते कहाँ है?
1: किस दुनिया में हो भाई, क्वालिटी फूड सर्विस में ट्रिपल रिफाइंड प्योर देसी घी मिलते हैं। ऑस्ट्रेलिया में ही बनते हैं 100% प्योर क्रीम से, 99.9% प्योर मिल्क फैट से। और तो और हर मौसम में उपलब्ध रहने के साथ साथ हाई क्वालिटी पैकेजिंग में भी आते हैं।
0: मुझे तो पता ही नहीं था। अच्छा ये बताओ मैं कहाँ से खरीद सकता हूँ?
1: लगभग सभी इंडियन आउटलेट से तुम पीवा देसी घी ले सकते हो।
2: पीवा देसी घी सिंह डेयरी द्वारा मैन्युफैक्चर किया जाता है, बिल्कुल ओरिजिनल और कलरलेस। और इन्फो के लिए आज ही कॉल करें मोबाइल नंबर 0400664435 पर। याद रहे 0400664435 पर, या फिर ईमेल करें singdairy@gmail.com पर।
3: मेरी पत्नी सभी घी ट्राई कर चुकी है और जब से वो पीवा देसी घी इस्तेमाल करने लगी है सारे घर में घी की खुशबू फैल जाती है।
4: बिजली का बिल देखकर हर महीने शॉक लगता है क्या? तो अब स्विच करो सोलर पर। ब्रे सोलर पावर के साथ आपके लोकल CEC अप्रूव्ड सोलर एक्सपर्ट्स। घर हो या बिजनेस, हम सब के लिए सोलर पैनल्स, बैटरीज और कमर्शियल सिस्टम्स को सप्लाई और इंस्टॉल करते हैं, ताकि आप बचा सके पैसे और क्लीन एंड रिन्यूएबल एनर्जी से एनवायरनमेंट को भी। आपकी लोकल टीम पर भरोसा रखे, ब्रे सोलर पावर का प्रॉमिस है क्वालिटी प्रोडक्ट्स, प्रोफेशनल इंस्टॉलेशन और रियल सेविंग्स। तो अब बिजली का बिल नहीं, सिर्फ सनशाइन मिलेगा। रे सोलर पावर, पावरिंग होम्स, पावरिंग बिजनेसेस, पावरिंग द फ्यूचर। आज ही कॉल करें 0430-525-896, दैट इज 0430-525-896। हमारा ईमेल आईडी है ray@raysolarpower.com.au और वेबसाइट www.raysolarpower.com.au।
5: इंडियन फैशन का जब भी जिक्र होता है तो लोग रानी क्रिएशंस को याद करते हैं, क्योंकि रानी क्रिएशन में सभी कुछ उपलब्ध है। यू गेट मेंस एंड लेडीज वेडिंग सूट्स एंड एक्सेसरीज, टॉप क्वालिटी डिजाइनर साड़ीज, लहंगा, सलवार कमीज, पार्टी वेयर एंड मेन शर्ट्स एंड सूट्स। यू कैन ऑल्सो ऑर्डर टेलर मेड सूट्स फ्रॉम रानी क्रिएशंस। इतना ही नहीं, ओरिजिनल DVDs, CDs, फोन कार्ड्स, प्रीपेड चार्ज कार्ड्स, फैंसी ज्वेलरी, बैंगल्स, गिफ्ट वेयर भी उपलब्ध है। फॉर टॉप क्वालिटी बॉलीवुड फैशंस विजिट रानी क्रिएशंस एट 33 बलक्लावा स्ट्रीट, वुलन गैबा। ओपन daily from 9 AM. Telephone Rani Creations on 3391-0622 or visit their webpage ranicreations.com. The one-stop Bollywood fashion and entertainment store, well known for its quality service and reasonable prices.

भी होगा, ग्रुप भी होगा और फीजी का फ्लेवर भी फुल ऑन होगा। ब्रिस्बेन तैयार हो जाओ। क्यूब ऑफ 2026 सॉकर टूर्नामेंट प्रेजेंटेड बाय क्वींसलैंड फीजी फुटबॉल एसोसिएशन। टूर्नामेंट होगा संडे 31 मई और थर्सडे 4 जून से संडे 7 जून तक एट अकाशिया रिज सॉकर क्लब, 174 मॉर्टिमर रोड, अकाशिया रिज 4110। ग्राउंड पे चलेगा फुल सॉकर कटाशन, ओपन्स, मास्टर्स एंड लेजेंड्स। हर मैच में एनर्जी, एक्साइटमेंट और क्राउड का शोर। और भाई खाने का सीन तो और भी डेंजरस है। फिजी स्टाइल बारबेक्यू, स्पाइसी डक करी, यम्मी पुलाव और ठंडी ठंडी फिजी आइस ब्लॉक। तो इन डेट्स पर घर पे मत बैठना, फैमिली फ्रेंड्स के साथ आ जाना क्यूबॉन्ग सॉकर टूर्नामेंट 2026 में। ज्यादा जानकारी के लिए कॉल करें अब्दुल रहीम 0423-342-272 या फिर सेक्रेटरी

रोशन के साथ ये कार्यक्रम आप सभी रेडियो ब्रिजवानी पर सुन रहे हैं। चलते कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए जितने भी नोट संघ के श्रोता है आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं, आप भी अपना नाम इस गीत में शामिल कर सकते हैं। याद कीजिएगा मैं हूँ रोहित सिंह रेडियो ब्रिजवानी पर 10 मिनट होना चाहते हैं 2:30 कार्यक्रम समाप्त हो जाएगा।

यात्री जी, हम आपके लिए पेश रहे हिट्स ऑफ शम्मी कपूर। और 10 मिनट में कार्यक्रम समाप्त हो जाएगा, ठीक 2:30 बजे से 5 बजे तक आप सू के साथ कार्यक्रम सुन सकेंगे।

और इसी गीत के साथ साथ हम अपने कार्यक्रम की समाप्ति पर पहुंच गए। उम्मीद करता हूं कि आज का कार्यक्रम आप सभी को बहुत ही अच्छा लगा होगा। हमारी और आपकी मुलाकात अगले रविवार की शाम ठीक 12:30 बजे से फिर एक बार होगा। रेडियो मन मत कीजिए, थोड़ी देर में आप सुख के साथ कार्यक्रम सुन सकेंगे। साथ देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और हैव अ प्लेजेंट आफ्टरनून एंड अ ब्यूटीफुल वीक नेक्स्ट वीक। साथ में साथ देने के लिए बहुत बहुत एक बार फिर धन्यवाद। नमस्ते, गुड आफ्टरनून, शब खैर और बुला विनाका।

0: है रेडियो 79 जिसके द्वारा आप हर रोज हमारे हिंदुस्तानी कार्यक्रम को सुनते हैं। याद रहे हमारा टेलीफोन नंबर है 3279-1701। अगर आप सूचनाएं या एडवर्टीजमेंट भेजना चाहते हैं तो आप कृपया हमारे पास फैक्स करें। हमारा फैक्स नंबर है 3279-2506, 3279-2506।
1: गुड आफ्टरनून एंड वेलकम बैक। आप सुन रहे हैं आपकी अपनी पहचान रेडियो विश्वानी 1701 239 स्टूडियोज राइट नाउ।

कहिए दोस्तों, आप सभी की वीकेंड कैसे बीत रही है? तो आपको पता है कि आज रविवार है ब्रिस्बेन में, ऑस्ट्रेलिया में, और आप तो रविवार में भी कुछ तो मिलावट हो गई है। छुट्टी तो दिखाई पड़ती है, लेकिन सुकून का पल नजर नहीं आते।

ये कहना चाहते हैं दोस्तों कि आपकी नई सुबह इतनी सुहानी हो जाए, आपके दुखों के सारी बातें पुरानी हो जाए, दे जाए इतनी खुशियां दिन आपको कि खुशी भी आपकी मुस्कुराहट के दीवानी बन जाए। हैप्पी वीकेंड। सभी सुनने वालों को हमारा प्यार भरा नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। आप सुन रहे हैं आपकी अपनी पहचान रेडियो विस्वानी 17.1 किलोहर्ट्ज पर, हमारे स्टूडियो 17 माइल्स रॉक्स ब्रिस्बेन से। इसके साथ हम आप सभी को आज विश करना चाहते हैं। सबसे पहले, अगर आज आपकी जन्मदिन है, शादी की सालगिरह है, कुछ भी खुशियां आप सेलिब्रेट कर रहे हैं, हमारी तरफ से आपको बहुत सारी सी बधाइयां। आप हमारे साथ शेयर भी कर सकते हैं रेडियो विस्वान के साथ कुछ डेडिकेशन है या आपकी कोई पसंद कुछ सुनना चाहते हैं। 3279-1701 हमारा स्टूडियो लाइन नंबर है, और नहीं तो आप हमें मोबाइल पर भी SMS कर सकते हैं आपके साथ। सो ये संडे शाम से पर

आज इस सफर पर दोस्तों बहुत सारे से बहुत कुछ लेकर हम आपके लिए लेकर आए हैं, प्यारे प्यारे से गीत आपके एंटरटेनमेंट के लिए। एक खास प्रोग्राम है, अपने गिरमिटियों को आज हम याद करेंगे थोड़ी देर के लिए। अगर आप भी कुछ कहना चाहते हैं, कुछ डेडिकेट करना चाहते हैं गिरमिटियों पर, तो जरूर कॉल कर सकते हैं 3279-1701 पर। का पहला गीत आप सभी के नाम जा रही है, जो आज रेडियो विश्वानी

0: बॉबी सिलेवा गीत आपने सुना, इस गीत को आपने सुना झनकार बीच पर। आप सुन रहे हैं रेडियो विस्वानी, आपकी अपनी पहचान। अगर आपने अभी चुन किया है, स्वागत है आप सभी का रेडियो विस्वानी एम पर। तो चलते हैं आगे बढ़ते हुए, अगला गीत सुनते हैं शमी कपूर आशा पारेख की फिल्म सिलेवा गीत, मोहम्मद रफी आशा भोसले की आवाज में।
1: रूठो रूठो ना रूठो ना,
0: आप सुन रहे हैं रेडियो विस्वानी।

आपने सुना रफी साहब की आवाज का बहुत प्यारा संगीत। दोस्तों इसी के साथ साथ हमारे स्टूडियोज में 2:45 ही बज चुके हैं। आप सुन रहे हैं आपकी अपनी पहचान रेडियो विजवानी 1701। बहुत समय नहीं लेते हुए, जबकि आज हमारे पास थोड़ी सी ज्यादा लंबी लिस्ट है, हम चलते हैं पहली फरमाइश पर पहुंचते हैं। लेकर आए हैं शहरुल की ओर से, शहरुल एंड अनवर फ्रॉम आचफिल। आप सुनना चाहते हैं आज का पहला फरमाइश।

0: स्किट को फरमाइश करने वाले थे शायरुल एंड अरवर फ्रॉम आचा फेल।
1: सम नंबर्स कैरी वेट बियॉन्ड व्हाट यू सी। Q11700, the master number of Vedic tradition, a heritage Queensland plate, first issued in 1922, a piece of Queensland history with full provenance, owned outright, transfer ready. For the buyer who understands that the number you carry is a statement of who you are, Q Plate Sales. Inquire at qplatesales.com.au. It's not just a number, it's a statement.
2: यार राहुल, तेरे केस का क्या हुआ?
3: यार I'm so worried. Actually want an experienced lawyer to handle my case.
2: मेरी advice है go for the best. अतुल भारद्वाज जी है ना, उनके पास 12 साल से ज्यादा का vast experience है और law की entry cases को handle करने में उनकी expertise है. Criminal law, domestic offence, traffic drug offence में 12 साल से ज्यादा का rich experience. और तो और conveyance, family law, immigration laws में भी भारद्वाज एंड associates के lawyers का vast experience है. And the best point, they understand the stress that you go through and work effectively to minimize it.
3: Thanks Atanya, I'm so relaxed to hear that.
2: Don't risk your life. Talk to Atul before you talk to police. Contact Atul now on 0400-234-235. That is 0400-234-235. Oye Rahul, vire tere case da ki hoya?
3: Oh yara, main bahut worried haan. I actually want an experienced lawyer to handle my case.
2: Go for the best vire. Atul Bhardwaj ji nu ajji contact karo. Ona de kol vast experience aa. Te law di entry cases nu handle karan ch vi o expert han. Criminal law, domestic violence, traffic drug offence vich 12 saal to vadh da rich experience. Te conveyance, family law, immigration laws vich vi Bhardwaj and associates de lawyers da vast experience aa. And the best point, they understand the stress that you go through and work effectively to minimize it.
3: Thanks, Tanvire. I'm so relaxed to hear that.
2: Don't risk your life. Talk to Atul before you talk to police. Ajji contact karo Atul Jino on 0400-234-235. That is 0400-234-235.
0: और इस वक्त दोस्तों 10 मिनट रह गए हैं हमारे स्टूडियोज में 3:30 से हम आपके लिए एक खास गिरमिट पर प्रोग्राम अबाउट हाफ एन आवर के लिए लेकर आएंगे। तो इसमें अगर आप पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, कुछ डेडिकेट करना चाहते हैं किसी को, तो आप जरूर हमें कॉल कर सकते हैं 3279-1701 पर। फिलहाल फरमाइश है हमारे पास दक्षा सोलंकी की ओर से फ्रॉम लास वेगास।

0: नहीं सुना राज कपूर की फिल्म 420 से लिया हुआ गीत मेरा जूता है जापानी। हमारा प्रोग्राम सुन रही दक्षा सोलंकी फ्रॉम लेस वेगस। हम चलते हैं केड्रोन पार्क की ओर दोस्तों, और कोशिश करें दोस्तों, आई एम सो सॉरी टू टेल यू, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर बहुत लंबी लिस्ट हो जाती है। कोशिश करें आप मुझे बहुत लंबी गीत ना दे, क्योंकि आई कैन फिट इन एवरीबॉडी। तो चलते अगला गीत जो है इसे फरमाइश करने वाले है केड्रोन पार्क से जोनी और सविता। अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो,
1: गरीबी से बुरा हाल धर्म पत्नी के बार बार कहने पर सुदामा ना चाहते हुए अपने बचपन के मित्र कृष्ण से मिलने चला। द्वारकाधीश के महलों के अंदर जाने का प्रयास किया तो द्वारपालों ने रोका, हे किधर जाता है। सुदामा ने प्रार्थना की,

0: Watch what happens when a 50-year-old man blocks DHT naturally.
1: तेरे केस का क्या हुआ
2: यार, आई एम सो वरीड। एक्चुअली वांट एन एक्सपीरियंस लॉयर टू हैंडल माय केस।
3: मेरी एडवाइस है, गो फॉर द बेस्ट। अतुल भारद्वाज जी है ना, उनके पास 12 साल से ज्यादा का वास्ट एक्सपीरियंस है और लॉ की एंट्री केसेस को हैंडल करने में उनकी एक्सपर्टीज है। क्रिमिनल लॉ, डोमेस्टिक ऑफेंस, ट्रैफिक ड्रग ऑफेंस में 12 साल से ज्यादा का रिच एक्सपीरियंस, और तो और कन्वेयंस, फैमिली लॉ, इमिग्रेशन लॉज में भी भारद्वाज एंड एसोसिएट्स के लॉयर्स का वास्ट एक्सपीरियंस है। एंड द बेस्ट पॉइंट, दे अंडरस्टैंड द stress that you go through and work effectively to minimize it.
2: Thanks, Atanya. I'm so relaxed to hear that.
3: Don't risk your life. Talk to Atul before you talk to police. Contact Atul now on 0400-234-235. That is 0400-234-235.

इस गीत को फरमाइश किया था जोनी और सविता फ्रॉम कैडरन पार्क। और दोस्तों इसी के साथ साथ हमारे स्टूडियोज के घड़ी में 4 मिनट हो गए हैं 3 बजकर। आप सुन रहे हैं रेडियो विस्वानी, आपकी अपनी पहचान। फरमाइश है हमारे पास वहां सैक्रामेंटो यूएसए से ललिता गौतम की ओर से आपके लिए एक ऐसा गीत जो आप रफी साहब की आवाज में हमेशा सुनते हैं, और आज आप एक फीमेल सिंगर की आवाज में इस गीत को सुनने जा रहे हैं बिल्कुल ही न्यू वाइब्स पर।

0: फुल सॉन्ग ललिता गौतम ने इस गीत को फरमाइश किया, यानी कि हमारे साथ इस गीत में शामिल हुए। थैंक्स फॉर लविंग द सॉन्ग। आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिस्बानी, आपकी अपनी पहचान। 11 मिनट हो गए हैं ब्रिस्बेन टाइम, हमारे स्टूडियोज में 3 बजकर।
1: प्रिया, नेक्स्ट मंथ मामा का बर्थडे है, सोच रही हूँ उनको फॉरेन एक्सचेंज के थ्रू न्यूजीलैंड मनी भेज दूँ, जिससे वो अपनी पसंद का गिफ्ट ले लेंगे।
2: ये तो बहुत अच्छा आइडिया है, मेरे पास एक अच्छा ऑप्शन भी है मनी ट्रांसफर करने का।
1: अच्छा, वो क्या?
2: अब तुम घर बैठे न्यूजीलैंड या फिजी में भी मनी भेज सकती हो लोटस फॉरेन एक्सचेंज की हेल्प से ऑनलाइन, और वो भी फ्री में।
1: लेकिन मामा के लिए मनी लेने कहीं दूर जाना पॉसिबल नहीं होगा।
2: अरे, रिसीवर्स अब कैश पिकअप, बैंक ट्रांसफर या मोबाइल वॉलेट में भी ले सकते हैं मनी। डाउनलोड कीजिए लोटस फॉरेन एक्सचेंज ऑनलाइन au.lotusfx.com ऐप आज ही विजिट करें।

गोल भी होगा, ग्रूव भी होगा और फीजी का फ्लेवर भी फुल ऑन होगा। ब्रिस्बेन तैयार हो जाओ। क्यूबॉल 2026 सॉकर टूर्नामेंट प्रेजेंटेड बाय क्वींसलैंड फीजी फुटबॉल एसोसिएशन। टूर्नामेंट होगा संडे 31 मई और थर्सडे 4 जून से संडे 7 जून तक एट अकाशिया रिज सॉकर क्लब, 174 मॉर्टिमर रोड, अकाशिया रिज 4110। ग्राउंड पे चलेगा फुल सॉकर कटेशन, ओपन्स, मास्टर्स एंड लेजेंड्स। हर मैच में एनर्जी, एक्साइटमेंट और क्राउड का शोर। और भाई खाने का सीन तो और भी डेंजरस है। फीजी स्टाइल बारबेक्यू, स्पाइसी डक करी, यम्मी पुलाव और ठंडी ठंडी फीजी आइस ब्लॉक। तो इन डेट्स पर घर पे मत बैठना, फैमिली फ्रेंड्स के साथ आ जाना क्यूबॉन्ग सॉकर टूर्नामेंट 2026 में। ज्यादा जानकारी के लिए कॉल करें अब्दुल रहीम 0423-342-272 या फिर सेक्रेटरी रे अली 0413-868-240 और विजिट करो briswani.com के इवेंट सेक्शन में। क्यूबॉन्ग 2026 आपका इंतजार रहेगा।

मैनली वेस्ट की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। लक्ष्मी हमारे साथ शामिल हो गई हैं, तो आपके लिए जो अगला गीत है कजरा मोहब्बत वाला, इस गीत को मैंने लिया है रिमिक्स पर।

गीत में हमारे साथ शामिल हो गए थे लक्ष्मी जो हमें सुन रहे मेल्ली वेस्ट में। और दोस्तों अगले गीत की फरमाइश है वहाँ सिडनी से, बैंकस्टाउन सिडनी से सनी और रमीजा इस वक्त हमारे साथ सफर कर रहे हैं। हैव अ नाइस ड्राइव इन सिडनी सनी एंड रमीजा, थैंक्स फॉर जॉइनिंग मी। चलते हैं आपकी फरमाइश पर, सुनते हैं अगला गीत। हम कुर्बानी से लगा गीत, क्या देखते हो सूरत तुम्हारी, क्या चाहते हो चाहत तुम्हारी।

0: आपने सुना बहुत प्यारा संगीत, क्या देखते हो सूरत तुम्हारी। इसे फरमाइश करने वाले थे सनी और रमीजा, जो इस वक्त हमारे साथ सफर पर है, गाड़ी में सफर करे बैंकटाउन सिडनी में।
1: मम्मी पापा की तबीयत की बहुत टेंशन रहती है यार, हम यहाँ ब्रिस्बेन में और वो इंडिया में अकेले हैं।
2: तो उमसोग से बात कर, इंडिया में एल्डर्स और दिव्यांगनों के लिए इन होम केयर देते हैं एकदम प्रोफेशनल तरीके से।
1: हाँ, लेकिन भरोसा कैसे करूं?
2: अरे उमसोग एक ऑस्ट्रेलियन कंपनी मैपल केयर की सब्सिडियरी है और मैपल केयर NDIS का रजिस्टर्ड प्रोवाइडर है।
1: अच्छा, मतलब स्टैंडर्ड और रिस्क मैनेजमेंट भी ऑस्ट्रेलिया जैसा।
2: बिल्कुल, खाना, दवाई, हेल्थ चेक, सब कुछ जैसे आप खुद देख रहे हो।
1: फिर तो आज ही वेबसाइट देखनी पड़ेगी।
2: उनकी वेबसाइट www.omsorg.co.in है। भारत में नंबर +91 8448 381 360 है और ऑस्ट्रेलिया में 0470 631 801। प्यार और देखभाल की कोई दूरी नहीं होती भाई।
3: ओमसॉक, केयरिंग विद डिग्निटी।
0: तो चलते हैं हमारे स्टूडियोस में, बस 3:30 ही बजने वाले हैं। वादे के मुताबिक हम लेकर आ रहे हैं, जैसे मैंने पहले कहा, हाफ एन आवर के लिए हम अपने गिरमिटियोस को आज याद कर रहे हैं। आज फिजी में इस सप्ताह गिरमिट फेस्टिवल बड़ी धूमधाम से सेलिब्रेट किया जा रहा है। ब्रिस्बेन में भी हुआ, सिडनी में भी हुआ और जगह जगह पर है। तो चलते हैं, सबसे पहले एक प्यारा सा गिरमिट पर गीत सुनते हैं, उसके बाद हम और कुछ लेकर आ रहे वाले हैं।

एंड वेलकम टू गिरमिट प्रोग्राम. दोस्तों, हाफ एन आवर के लिए हम आपको ले चलते हैं गिरमिटियों उसकी कहानी पर, फिजी देश. तो फिजी हमारी एक बहुत प्यारी सी देश है, प्रशांत की लहरें में, जहाँ टूरिस्ट बहुत जाने में खुश होते हैं. दे लव गोइंग टू फिजी, दे लव द बीचेस. इट्स अ ब्यूटीफुल प्लेस. और इसे किसने बनाया? इसने बनाया हमारे गिरमिटियोस ने अपने खून पसीने से. तो बात कुछ ऐसी है कि 1879 टिल 1960 से एक साथ एक जहाज में महिला और मर्द बिना हिचकिचाहट के सभी एक साथ गिरमिटियो सब साथ गिरमिट कमाने के लिए एक जहाज में निकल पड़े. और उन्हें सभी को ले गया गया वहां पर कलकत्ता, और वहां से फिर उनको पटना ले गया गया. वहां पर एक जहाज में उसे बैठाया गया, इकट्ठा किया गया. तो फिर जगह जगह पर टास्क उन्हें पूरा करना पड़ा. और उन्हें इतना मारा पीटा गया, सब कुछ कहा गया. उन्हें अपना टास्क अपने खो दिए, और अगर वो काम नहीं करते तो उन्हें पीटा जाता था, और उनको जेल में भी जाना पड़ता था. उनकी टास्क कोई और नहीं, उन्हें खुद ही अपने टास्क को करना पड़ता था. तो बात कुछ ऐसी है कि ऐसे उनका जीवन था, और उनका यही निर्णय था कि उन्हें खुद ही अपना जो जीवन है अपने खुद ही अपने ऊपर लेना पड़े, किसी के ऊपर नहीं उनके डिपेंड करना पड़े. जो मैरिड लोग थे, उन्होंने जो इंडिया से आए थे, जो मैरिड थे, अपने बच्चे छोड़कर, अपने हस्बैंड छोड़कर फिजी में दूसरी बार शादी करके उन्होंने अपने घर बसाया. और साथ साथ में जब वहाँ पर गए तो बहुत ही दुख सहे, बहुत चाबुक सहे, बहुत मार सहे, और उन्होंने पूरा खेतों में मर्दों का साथ दिया काम करने के लिए. और साथ साथ में अपनी रक्षा उन्हें खुद ही करना पड़ा, और जरूरत पड़ने पर उन्होंने एक दूसरे की भी रक्षा किया. और फिर साथ में गिरमिटियों की रक्षा उन्होंने एक दूसरे के साथ मिलजुल के सभी खुशी से निभाया. और ऐसा खामोशी आया कि उन्हें 3 महीने तक के लिए कहा गया था कि फिजी पैसे कमाने के लिए शुगर कैन फार्म पर जाना है, और 3 महीने बाद जो उनको ज़्यादा पैसे मिल जाएंगे तो अपने फैमिली को पैसे लेकर खुश करने के लिए, लुक आफ्टर करने के लिए दे विल गो बैक टू इंडिया. 3 महीने गुजर गए, सिर्फ काला पानी में उन्होंने सैर किया, पाल की बोट में जहाँ ना कोई डायरेक्शन था, कुछ भी नहीं था. काला पानी में सैर करते करते कुछ भी, ना भोजन, ना पानी, ना कुछ. कुछ लोग मर गए, कुछ लोग अपनी जान दे दिए गिर के. और इसी तरह एक दूसरे के साथ मिलकर वो फिजी आ पहुंचे, जहां पर उन्हें कुछ भी नहीं मिला. एक सिर्फ ब्लैक टी, लाल चाय, और थोड़ी सी ब्रेड मेरे से थोड़ी सी बिस्किट उन्हें मिला. और रात दिन उन्हें मार पीट कर काम करा गया. और जो 3 महीने बीत गए तो उन्होंने इतना आसरा लगाया था कि हाँ, रोज दे वे लुकिंग फॉर द डेज टू गो बैक होम. 3 महीने जो बीत गए तो रास्ते ताकते ताकते आंखों में आंसू लिए हुए कि अब जहाज जाएगी, अब जहाज जाएगी, और अब हम अपने घर को अपने वालों के लिए मिलने के लिए चले जाएंगे. खुश होकर ये आंखों में आंसू लेकर राह देख रहे थे, लेकिन ना जहाज आया और ना वो अपने देश पहुंचे. तो उन्होंने सोचा कि अच्छा, अब क्या करें. जो लोग सब वहां पर गिरमिटियर्स थे, उनमें से एक आदमी था जो बैठकर भजन गाया करता था, जोर से आवाज लगाकर भजन गाया कि अगर हाँ सुनने वाले कोई और गिरमिटिया यहाँ पर सुन ले तो साथ आए. उनकी भजन सुन के जितने भी और कुछ गिरमिटियर्स थे आगे सब दौड़ दौड़ के आगे कि कौन एक गीत गा रहा है. सब एक दूसरे के साथ बैठ गए, और फिर उन्होंने अपनी एक ग्रुप बनाई. दे स्टार्टेड परफॉर्मिंग एक मंडली, पूजा, रामायण, जो भी है, सभी को एक साथ में मिलाकर. और ऐसा हुआ कि कभी कभी ऐसा हुआ कि एक आदमी के साथ, दो आदमी के साथ एक महिला को शादी करना पड़ा, क्योंकि उनमें महिला ज्यादा थी, और सॉरी उनमें
मेन वेर मोर और लेडीज कम थे, तो इसीलिए उनकी एक कहानी थोड़ी सी है दोस्तों। और अभी मैं आपको बताऊंगी कि कौन कौन सी जिला से वे लोग आए थे। तो चलते हैं एक और गीत सुनते हैं गिरमिट पर।

ब्यूटीफुल सॉन्ग दोस्तों ओफी जी पर आप गिरमिट पर एक खास प्रोग्राम हमारे साथ सुन रहे हैं। आप सुन रहे हैं रेडियो विजवाणी आपकी अपनी पहचान। तो देखें कि फिजी का जो पहला बाउट था हमें यही बताया गया है कि फिजी का जो पहला बाउट था लियोनी दास जो पहले बाउट आकर लेवुका में लगी। और सबसे खास बात हम ये आपको बताना चाहते हैं कि ऑन 13th of March बाउट सीरिया Left Calcutta for Fiji. It carried 479 endangered leaders. साथ साथ में बच्चे भी थे, इन्फेंट भी थे, क्रूज भी थे और इंडियन सीमैन भी थे। On that night, 11th May, the ship was wrecked on Nasalai Reef. और वहाँ पर ये जो जहाज है डूब गई और बहुत सारे से लोग इस जहाज में डूबने से मर गए। तो बात कुछ ऐसी 59 पीपल डाइड इन द ट्रेजेडी एंड 56 इमिग्रेंट्स एंड रेस्क्यूअर्स देयर बॉडीज वर बरीड नियर द विलेज ऑफ नाबिसकाला यहाँ नसलाई के पास जहाँ पर है। और फिर द सर्वाइवर्स वर टेकन टू नुक्लाउडी पोर्ट 2 weeks आफ्टर इंसिडेंट्स वेयर दे वर लोकेटेड ऑन वेरियस प्लांटेशंस। तो जो हमारे जो लियोनी दास वाले थे उन्हें प्लांटेशन वहाँ लेवुका सेवसावु में रखा गया। और बहुत दुख की बात है कि जब हमने बहुत दिनों तक जो बाउट सीरिया बाउट जो सेंक हो गई थी डूब गई थी उसकी जो कॉर्नर थी हमने बहुत दिनों तक अभी हाल में ही फिजी में देखी थी। तो चलते हैं एक और बहुत प्यारा सा गीत सुनते हैं।

0: हम चले लिवुका, फिजी की पुरानी राजधानी।
1: यही जगह है वही तो यहाँ जो लियोनिदास
0: कलकत्ता बंदरगाह पोर्ट ऑफ कलकत्ता से चला जहाज पर हैजा और चेचक, कोलरा और स्मॉल पॉक्स फैल गया। कई प्लांटर्स उन्हें काम पर रखने को तैयार नहीं थे और अगले 37 वर्ष

0: पिछले हफ्ते मैंने लेलुवे आइलैंड जाने का फैसला किया। सुबह से बाउलेनिंग कार में और वहां से रिजोर्ट की नाव में बैठ हम चले लेलुविया की ओर। 45 मिनट का सफर। समुद्र शांत था जैसे शीशे के ऊपर नाव चल रही हो। लेलुविया की खूबसूरती देखिए। अगले दिन वही नाव से हम चले लेबुका। 40-45 मिनट का सफर। सामने आप देख रहे हैं मोतुरिकी। मोतुरिकी के बाद यह है यनुदा लेबू यानी बड़ा यनुदा, और इसके बाद है यनुदा लाई यानी छोटा यनुदा। इसे लॉस्ट आइलैंड भी कहते हैं। यह टापू आज भी निर्जन है लेकिन इसका ऐतिहासिक महत्व गहरा है। यही वह टापू था जहां लियोनिदास से आए भारतीयों का पहला क्वारंटीन स्टेशन स्थापित किया गया था, और यहीं भारतीयों ने सबसे पहले अपना कदम रखा था। सौभाग्य से हाई टाइड था, ज्वार चढ़ा हुआ था, जिससे हमारा कैप्टन हमें यनुदा लाई के और पास ले जा सका। क्या आप कभी यनुदा लाई गए हैं? अगर हाँ तो अपने अनुभव कमेंट्स में शेयर करिएगा। ज्यादातर लोग केवल नुकुलाऊ द्वीप के बारे में जानते हैं, जो गिरमिट के पूरे समय तक क्वारंटीन स्टेशन था, और इसे हम सुबह से साफ देख सकते हैं। फिजियन परंपरा के अनुसार किसी भी टापू पर उतरने से पहले या गांव में जाने से पहले सेवु सेवु करके उनकी अनुमति, उनका परमिशन लेना जरूरी होता है। हम इसका इंतजाम नहीं कर सके, इसलिए हमने नाव से ही इस आइलैंड को देखा। यहाँ आज भी कोई नहीं रहता, केवल मोतुरिकी और ओवलाऊ के कुछ स्थानीय लोग यहाँ कभी कभी खेती करने आते हैं। मैप में देखेंगे तो सिर्फ यही एक स्ट्रक्चर आपको दिखेगी।
1: चलते हैं दोस्तों, अगला गीत जो है हमारे कुछ लोकल सिंगर्स है यहाँ ब्रिस्बेन के, इमरान और उनके कजन्स यहाँ फॉरेस्ट लेक से हमारे पास एक गीत की वीडियो आई है, तो चलते सुनते हैं। एक रैप गीत है, उन्होंने फिजी गिरमिट पर बनाया है। थैंक यू।
2: हाँ यार, अच्छा चलाता
3: है। तुम थोड़ा बताओ हमें कैंसे के ऊपर कौन सी
2: बात है।
3: हाँ यार, तू को कुछ

0: तक नगोना नहीं चलाया।
1: अच्छा नगोना नगोना, अच्छा हम चलाए चलाए
0: आली चला, बिकॉज हम लोग के बाद इमरान है तो यू नो वो भी मांगे पी के अपन गटे थोड़ा भिजाई ले।
1: साला इमरान का परे यार।
0: अरे यार इमरान आ गए, देखो कम ऑन इमरान, शो हिम हाउ इट्स डन।

0: दोस्तों, इस गीत को आपने सुना इमरान और उनके साथियों के आवाज में, रैप सॉन्ग जो ब्रिस्बेन के रहने वाले हैं यहाँ फॉरेस्ट लेक से। नादिया, थैंक यू फॉर द वीडियो। और चलते हैं दोस्तों, एक फिजी जोक हम लेकर आए हैं, फिजी प्रैंक आप सुनने जा रहे हैं बॉबी डार्लिंग की आवाज में।
1: हेलो
2: हेलो,
1: यो
2: एडवाइजरी काउंसलर
1: जी? नहीं
2: सर,
1: हम काउंसलर नहीं है भैया।
2: पहले आप रहा?
1: पहले रहा हाँ।
2: कल कुछ आइडिया मिल जाए ना
1: जी।
2: कौन सी भाई समार कुत्ता रहा रोकी?
1: हाँ।
2: बस यहाँ पे एक मोटर आई।
1: हाँ।
2: बस मोटर में एक लड़का लोन गांजा पियत रहा।
1: हाँ।
2: बस गांजा भाई रे पीक दिस।
1: हाँ।
2: बस हमार कुत्ता जाए कैसे मुंह भर के जनाए, पता नहीं कौन चीज़ पे बस एकदम नशा मोए को लूट गए।
1: तो कहाँ रिंग करा?
2: हम यहाँ पे, यहाँ बाहर टाउन के लाए।
1: तो अब रिंग करो, टाउन पुलिस में रिंग करो।
2: नहीं तो हम बोला एडवाइस ले लेना।
1: नहीं नहीं, आप पुलिस में रिंग करो। हाँ
2: आप बताओ कौन सी करी?
1: आप पुलिस में रिंग करो।
2: और कोई रास्ता?
1: और कोई रास्ता नहीं हुई,
2: बिकॉज एकदम ऐसे सबके ऊपर अब भूखे लगा है।
1: हाँ, कुत्ता का लाइसेंस है?
2: नहीं मोटर वोटर नहीं चलाए।
1: नहीं नहीं नहीं, कुत्ता तो, कुत्ता का लाइसेंस है?
2: नहीं मोटर वोटर नहीं चलाए।
1: हेलो
2: हेलो।
1: हाँ
2: लाइन कट गया।
1: अरे भैया हम कुछ नहीं सकता करे, अच्छा अपने तुम रिंग करना है। ओके
2: कोई मदद कर दो प्लीज।
3: हेलो
2: हेलो।
3: हाँ
2: अंकल कैसे?
3: अच्छा है।
2: अच्छा थोड़ा प्रॉब्लम हुई है, वही हम बोला आपसे एडवाइस ले ले।
3: कौन बात कर रही
2: है? हम बॉबी है। हाँ बट जैसे आप एडवाइजरी काउंसिल आए ना।
3: हाँ हाँ
2: वही थोड़ा राय सलाह ले मांगा था।
3: बोलो।
2: वो हमारा छोटा कुत्ता रोकी ना।
3: हाँ।
2: बस यहाँ पे रहा, कुछ लड़का लोग मोटर में जाता रहा।
3: हाँ।
2: बस मोटर में से गांजा बिक दी।
3: हाँ।
2: बस हमारे कुत्ता पी ली जनाए।
3: नशा होएगी।
2: हम सोच में है, तुम हंसते अंकल।
3: हम कौन सी बताए, किसकी रिपोर्ट करेगा?
2: कोई उपाय बताओ कौन सी करी हम। एक अंकल के लग रिंग कराओ, बोले लाइसेंस है, हमारा मोटर तू चलाएगा।
3: रिपोर्ट करो भैया, जाओ कहा बोले पुलिस।
2: अंकल आप कुछ उपाय बताओ कौन सी करी।
3: हम कौन सी बताई हमने के गाया के, रिपोर्ट करो यार, मान दो पकड़ के।
2: गाते मांगे एकदम ऐसे फूल के।
3: पानी पी के ऊपर?
2: नहीं तुम तो हमारे कुत्ता मरवा गई हो।
3: नहीं मारे
2: वो लड़का लोग बिग दिस गांजा, बस कुत्ता जना खींच लीज।
3: और चोरी के
2: अंकल कभी तुम गांजा खींचा?
3: ना कब, जिंदगी में देखा नहीं पत्ती।
2: तो तुम कैसे जाने पत्ती है?
3: नहीं देखे मैंने, बताया जय नहीं, जैनी कैसे देख मैंने क्या रिपोर्ट करो पुलिस में, बताया होगी बीत गए, कोई काट ले बीमारी नहीं है ना।
2: तो कुत्ता पढ़ा लिखा थ्रो पुलिस लोग कहाँ समझाए पाई?
3: अंदर मार के बंद रस्सी से।
2: तो तुम बहुत उल्टा पुल्टा एडवाइस दे, मर जाए तब।
3: नहीं मरी यार। अच्छा बोलो पूजा हुआ तैयारी हो यार?
2: कुछ पूजा करी कुत्ता का गे?
3: नहीं घर पूजा हुआ यार।
2: पूजा करी?
3: ए भैया आगे पूजा जब थोड़ा बिजी है
2: तो कुत्ता हुआ लेके आई।
3: यहाँ क्या कुत्ता है, हम डॉक्टर कुत्ता के।
2: तो तुम बोला पूजा में क्या पूजा हुई?
3: बेकार बात तुम्हारे यहाँ, हमें टाइम नहीं, हमसे पूजा करे हमें टाइम नहीं, बताया कौन जी करे, बताया नहीं सोचाना कुछ यार।
2: तो तुम पूजा करके वहाँ से राइट करेगा?
3: हाँ
2: तुम वहाँ से पूजा करके राइट करे?
3: नहीं पर फिर पूजा बिजी लोग बैठा करे, मेहमान लोग यार।
2: तो वो लेके हुई सबको लग गया देखे।

आप सुन रहे हैं रेडियो मिस्पानी, आपकी अपनी पहचान गिरमिट पर एक खास प्रोग्राम आप सुन रहे हैं हमारे साथ बासा के करवाड़ो।

चलते हैं, अब हम आपको बताते हैं कि कौन कौन जगह से हमारे जो ग्रेमेटर्स थे इंडिया से कौन कौन जगह से फिजी आए थे। जी हाँ, कुछ नाम हमें दिया गया है। नखलाऊ से गोंडा, फैजियाबाद, बस्ती, गोरखपुर, आजमगढ़, जौनपुर, सुल्तानपुर, करियोगराज, वाराणसी से, मिर्ज़ारपुर से, बांडा से, रायबरेली से, और कुछ मथुरा से, भरतपुर से, भरतपुर जो है राजस्थान में, और इनके अलावा कुछ नेपाल से भी लोगों को भी फिजी लाया गया। बहुत कम दिखाई दिए पटना और दिया के लोग, मेजोरिटी वहाँ पर उत्तर प्रदेश के थे भारत के, और फिर आगे तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश से लाए गए, और इन्हीं के साथ इन्हें और वहाँ से एक ट्रेन में कलकत्ता लाया गया, और फिर एक पाल की जहाज में बिठाकर उन्हें फिजी लाया गया। आप सुन रहे हैं ग्रमिट पर एक खास प्रोग्राम।

लहंगा फोबिया से लिया गीत आपने सुना। अब फिजी का नेशनल ड्रिंक आपको पता है नगोना। तो चलते हैं एक विदेशिया सुनते हैं और स्टूडेंट्स की आवाज में आप सुनने जा रहे हैं फिजी विदेशिया और इसे गाने वाले हैं वहां सिडनी वैली गर्ल प्राइमरी हिंदी स्कूल के कुछ स्टूडेंट्स।

0: दोस्तों, इस विदेशिया को आपने सुना वहाँ सिडनी के ग्रीन वैली हिंदी स्कूल के स्टूडेंट्स की आवाज़ में, और मेन सिंगर थी टेनिया ओल मुस्कान। आप सुन रहे हैं रेडियो विस्वानी। हम चलते हैं फिजी में बनाया गया मूवी हाईवे सुबह से लिया गीत सुनते हैं। जावेद अली की आवाज़ में
1: यहाँ पर बहुत कुछ हो रहा है।

तो दोस्तों आज हमारी छोटी सी गिरमिट पर कहानी हम लेकर आए थे और जितना मुझे पता था उतना हम आपके साथ हमने शेयर किया। हमने सोचा कि हर साल मैं गिरमिट पर प्रोग्राम लेकर आती हूँ, ऐसे सैटरडे को आई शुड हैव डन इट क्योंकि आई वाजंट प्रिपेयर्ड। तो आई होप एवरीवन एंजॉय। वैसे भी हमारे पास यहाँ पर बहुत सारे से फीडबैक ऑलरेडी आ गए हैं। थैंक यू सो मच एवरीवन, आई रियली अप्रिशिएट दैट। अगर शायद हमने कुछ मिस्टेक में कुछ रॉन्ग ही कहा तो मुझे माफ कर देना क्योंकि मुझे जितना पता था उतना ही हमने आपको बताया। आप सुन रहे रेडियो विश्वानी, आपकी अपनी पहचान।

0: may I? Some matches are made in heaven and some are made at weddings. Every wedding is special. Think weddings, think Roy Singh. From the grand ballroom to your childhood backyard to a faraway beach, the big day comes in all sizes and styles, and that is why I'm proud that you have trusted me with your civil wedding, and I cannot wait to help you create yours. Contact me, Roy Singh, today on 0411-022-602, 0411-022-602, or email me at roylindrasingh@gmail.com. Think weddings, think Roy Singh.
1: चलते हैं इस वक्त समय की ओर देखा जाए तो ब्रिस्बेन टाइम हमारे स्टूडियोज में 25 मिनट हो गए हैं 4 बजकर, और साथ ही हमारा आपका ठीक 5 बजे तक, 5 बजे से आपके साथ हो जाएगी शशि चौखन, साथ उनका भी जरूर दीजिएगा दोस्तों। चलते हैं शिकागो की ओर, फरमाइश है हमारे पास शिकागो से अमला सिंह की ओर से।

वाह क्या बात है अमला जी, ब्यूटीफुल सॉन्ग महेंद्र कपूर और आशा भोसले की आवाज में सुना फिल्म वत्सल्या वाला गीत जिसे फरमाइश करने वाली थी अमला सिंह फ्रॉम शिकागो। हम चलते हैं अगले गीत की ओर बढ़ते हैं दोस्तों, ग्रीन एकर सिडनी की ओर चलते हैं। रजिन और मालती आप दोनों के लिए अगला गीत।

अभिनेता सिडनी के रचिन और मालती प्रसाद ने इस गीत में हमारे साथ शामिल हुए। हम चलते हैं मेलबर्न की ओर। मेलबर्न से रिक्वेस्ट है, फरमाइश हमारे पास है अल्फ्रेड एंड किरण प्रसाद की ओर से। थैंक यू वेरी मच फॉर योर फीडबैक आउट देयर। चलते हैं आपके लिए अगला गीत।

इस गीत में हमारे साथ शामिल हो गए थे अल्फ्रेडो किरण प्रसाद फ्रॉम मेलबर्न. हम चलते हैं 8 Miles Plains की ओर. दोस्तों हमारे पास अगला गीत के लिए फरमाइश है मीना फ्रॉम 8 Miles Plains. चलते हैं आपकी फरमाइश पर, सुनते हैं लता जी की आवाज़.

ब्यूटीफुल सॉन्ग लता जी की आवाज का, ब्यूटीफुल गोल्डन वॉइस का ब्यूटीफुल सॉन्ग जिससे फरमाइश किया था वहाँ 8 मार्च प्लेन्स के मीना, बहुत देर से अपना गीत सुनने के लिए इंतजार है, किसकी कौन इंतजार कर रहा है, कैलिफोर्निया यूएसए में मैक्स प्रसाद, हाय मैक्स, चलते हैं आपके गीत सुनते हैं। इस गीत को हमने लिया रिमिक्स पर, पर्दे पर शशि कपूर के लिए किशोर कुमार की आवाज।

जो थम गए तो कुछ नहीं, बहुत बरस गीत। और इस गीत में हमारे साथ शामिल हो गए थे मैक्स प्रसाद फ्रॉम कैलिफोर्निया यूएसए। हम चलते हैं यहाँ जिर्मिया की ओर, माला विजय। चलते हैं आपके लिए अगला गीत पेश करते हैं।

तेरे जैसा यार कहाँ, फिल्म याराना सिलवागे किशोर कुमार की आवाज का गीत और पर्दे पर अमिताभ बच्चन के लिए फरमाइश किया था जिल्मिया से माला और विजय। चलते हैं जी बंग की ओर, फरमाइश है हमारे पास जी बंग से और टॉम मनीराम हमें सुन रहे हैं दोस्तों। इसी के साथ साथ हमारे स्टूडियोज में बस 5 ही बजने वाले हैं। हमारा आपका साथ आज यहीं तक था। आई एम रियली सॉरी अगर आज आपकी किसी की भी फरमाइश आज मिस हो गई है, क्योंकि आज हमारे पास थोड़ा सा आज डिफरेंट प्रोग्राम फॉर्मेट पर मैं लेकर आई थी गिरमिट पर, क्योंकि दैट वाज वेरी इम्पोर्टेंट। तो चलते हैं आज का आखिरी गीत सुनते हैं जिसे फरमाइश किया है टॉम मनीराम फ्रॉम जीवंग टॉन्ग। थैंक यू सो मच फॉर योर ब्यूटिफुल फीडबैक आउट दिया। और हमारी अगली मुलाकात है नेक्स्ट सैटरडे को 1 PM से शनिवार मसी म्यूजिक पर, लेकिन सुना मत भूलिएगा ठीक 5 बजे से आपके साथ हो जाएंगे शशि जोखन, साथ उनका जरूर दीजिएगा। और चलते चलते वे कहते हैं नमस्ते, खुदा हाफिज, टेक केयर, लव यू ऑल, गुड बाय।

जी मेरे आवाज की दुनिया के दोस्तों, मैं शशि जोखन एक बार फिर आपका साथ हो चुकी हूँ। हाँ जी, मुझे पता है आप सोच ही रहे होंगे कि पिछले सप्ताह मैं थी कहाँ, प्रोग्राम क्यों नहीं हुए, मगर देखिए समय समय से कुछ भी हो सकता है, सो इसीलिए यहाँ कुछ गड़बड़ी हो गई थी, सो मैं आप तक नहीं पहुंच पाई। मगर आज मैं कहना चाहती हूँ नमस्कार, कैमचो, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, सभी को मैं याद कर रही हूँ और आज इस कार्यक्रम में शामिल कर रही हूँ। हाँ जी, तो कैसा है मूड आपका? कहते हैं ना कि जैसा मूड हो वैसा ही मंजर होता है, मौसम तो इंसान के अंदर होता है। सो चलो शुरू करते हैं आज का ये कार्यक्रम। दो घंटों का सफर, एक रंगीन शाम आपके नाम के साथ, मैं शशि जोखन।

वाह, व्हाट अ स्टार्ट. हाँ, एंड आई होप कि आप खुश होंगे और मेरी आवाज को सुनकर खास तौर से. मगर एनीवे, आज खास तौर से मैं बहुत ही खुश हूँ. एंड आई एम वेरी वेरी प्राउड टू से कि आई एम अ फिजी इंडियन. ठीक है, एंड गिरमिट का माहौल छाया हुआ है सभी तरफ. एंड मैं आज यहाँ से सभी फिजी इंडियंस को याद कर रही हूँ और आपको कह रही हूँ, बस हम कितने खुशनसीब हैं कि हम फिजी में पैदा हुए हैं. हमारे एंसेस्टर्स भारत से है, मगर हम फिजी में रहकर भी अब विदेश में रहते हैं. हम हाउ फॉर्चुनेट आर वी, हम फिजी में थे तो हमारे पास हमारी जो नेचर है, हमारी जो पर्सनालिटी है, बहुत ही अमेजिंग है. क्योंकि हमारे अंदर ब्रिटिश लोगों की कुछ आदतें हैं, प्लस उसके साथ हमारे काइवीती लोगों की, जो नेटिव लोग हैं उनके, और भारत से आवा भारत. ठीक है, सो वी आर वेरी वेरी लकी टू हैव ऑल थ्री इन अस. इसीलिए हमारी नेचर जो है वो भी थोड़ा सा अलग ही है ना? बिल्कुल है. सो हम सभी गिरमिट वासियों को याद कर रहे हैं. वैसे तो मुझे पता है कि बहुत बातें हुई होगी आज गिरमिट के बारे में, मैं कुछ कम ही बोलूंगी, मगर बोलूंगी.

हाँ जी, आप सभी को मुबारक हो आज की ये बहुत ही सुनहरी सी शाम, और आपका साथ देने के लिए मैं आ गई हूँ। एंड ऑफ कोर्स बहुत सारे गाने हैं हमारे पास जो वन बाय वन मैं आपके लिए पेश करूँगी, मगर अभी तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि देखिए, मुझे उम्मीद है कि आप जितने भी लोग हैं, फिजी इंडियंस हैं, आप लोग कहीं ना कहीं गिनपिट दिवस पर गए हुए होंगे किसी इवेंट पर। एंड इट्स रियली रियली अ टाइम फॉर अस टू रिफ्लेक्ट बैक जो हमारे एंसेस्टर्स हैं किस तरह से अपने जीवन को व्यतीत किए, ताकि आज हम जिस मकाम पर बैठे हुए हैं, हम इस तरह अपने जीवन को जी रहे हैं, उनके द्वारा कड़ी मेहनत, कड़ी त्याग जो उन्होंने त्याग की है हमारे लिए, ये बहुत ही स्पेशल है। मगर चलो अगला

हाँ जी, रेडियो भिवानी 1701 पर आप सुन रहे हैं एक रंगीन शाम आपके नाम, और मैं शशि जोखन आपका तहे दिल से स्वागत कर रही हूँ। अगर अभी अभी आप ट्यून इन किए हैं, हमारे साथ हो लिए हैं, तो आपका स्वागत है। तो अभी आप सुन रहे थे एक मेडली सॉन्ग, माय गॉड व्हाट अ कॉम्बिनेशन ऑफ सॉन्ग्स है ना, फिल्म मुझसे दोस्ती करो से मैंने आज खास तौर से आपके लिए चुन कर लाई है। और देखिए, गिरमिट की बातें, हमारे पूर्वजों की मेहनत, उनकी कुर्बानी, उनकी त्याग, उनकी सहनशीलता को हम याद करते हैं, और ऐसे समय पर जरूर याद करना चाहिए, क्योंकि नहीं करेंगे आप तो ये गुस्ताखी होगी। ठीक है, सो ऐसे आपको तो पता ही है ना, वैसे तो कहानी आपको बहुत कुछ मिल भी गई होगी, मगर अगर मेरे कुछ लिसनर्स ऐसे भी हैं जो फिजी से नहीं हैं और पहली बार सुन रहे हैं गिरमिट के बारे में, तो ये उनके लिए है। और अगर कुछ लोग ऐसे हैं जिनको पता नहीं है कि फिजी है ही कहाँ, तो ये उनके लिए भी है, और ये हमारे फिजी के लोगों के लिए भी है जिनको शायद हमारी हिस्ट्री के बारे में कुछ जानकारी ना हो। ठीक है, तो देखिए, फिजी के बारे में पहले जानकारी देती हूँ। वो तो फिजी एक द्वीप समूह है, एंड जो 300 से ज्यादा टापुओं से मिलकर बना हुआ है, यानी 300 से ज्यादा डिफरेंट स्मॉल स्मॉल आइलैंड्स मिलाकर फिजी है। ठीक है, तो इन इन सब में दो बड़े हैं, एक वितिलेवु और दूसरा वनुआलेवु। तो जो वितिलेवु है उसका जो क्षेत्र है वो है 4053 वर्ग मील, और जो वनुआलेवु है लगभग 2127 वर्ग मील में ये फैला हुआ है। तो समस्त फिजी की राजधानी सुवा शहर है। फिजी का कुल क्षेत्रफल अबाउट 7040 वर्ग मील है, और फिजी द्वीप समूह प्रशांत महासागर में स्थित है, जो न्यूजीलैंड से लगभग 1240 मील और ऑस्ट्रेलिया से 1743 मील की दूरी पर स्थित है। और भारत से कितनी दूर है, तो भारत वर्ष में मुंबई, भारत जो है वहां मुंबई शहर से फिजी लगभग 7000 मील पूर्व दिशा में ये स्थित है। ठीक है, और फिजी में सबसे पहले लियोनिदास नामक जहाज के जरिए लगभग 463 भारतीय 14 तारीख में 1879 में मजदूर के तौर पर फिजी आए थे, और उसके बाद 1916 तक हर साल हजारों भारतीय मर्द और औरत उसी तरह जहाजों में भर भर कर आते रहे, और ये ब्रिटिश के वजह से हुआ, वो लोगों को लेकर आए और यहाँ पर फिजी में छोड़ दिए। तो देखिए, लगभग 60,553 भारतीय 87 जहाजों के अंदर भर भर कर फिजी लाए गए थे। तो सबसे पहला जहाज लियोनिदास लेवुका में आकर लगा था, जो पहला फिजी का राजधानी था, यानी कैपिटल। ठीक है, तो और तो बातें आपको शायद पता ही होगा। तो फिजी के जो आदिवासी हैं, जिन्हें आदिवासी मीन्स जो नेटिव्स हैं, उन्हें काइविति कहा जाता है, और वैसे अभी हाल ही में कोशिश की जा रही थी और की भी थी कि सभी लोगों को जिनका जन्म वहां हुआ है उनको बस आदिवासी की तरह काइविति ही कहा जाए, यानी फिजियन ही कहा जाए। एनीवे, खेतों में काम करने के काबिल नहीं थे लोग, जो कुछ भारतीयों को लाने से पहले ये अन्य जगहों से भी लोगों को लाए थे। खास तौर से सोलोमन टापू से मजदूर को लाए गए थे, पर इनका भर्ती करना खर्चीला और बहुत ही खतरनाक था फिजी में, और उनके अंदर मलेरिया की बीमारी भी फैल गई थी, और उनमें काम नहीं, उनसे जो काम है वो नहीं करवाया जा सका था उन लोगों को, तो स्टेट का काम चलना तो बिल्कुल मुश्किल हो गया था। और तब मजदूरों से भरा एक जहाज जापान से लाया गया। ठीक है, और राह में इन मजदूरों में बेरी बेरी नामक एक बीमारी फैल गई, और वे फिजी बहुत ही बुरी दशा से पहुंचे, और फिजी में रहना भी उनको पसंद नहीं आया।
और नतीजा ये हुआ कि उन्हें जापान वापस ले जाया गया। और कैसे पसंद आएगा आप खुद ही सोचिए, फिजी एक इतना भयानक रूप था फिजी का उस समय, वहां पर जंगल झाड़ी बहुत ज्यादा, और वहां के जो आदिवासी थे, अगर भारतीय कभी ऐसे लोगों को नहीं देखे हैं तो बहुत ही भयानक उनको लगा था और डर का माहौल तो बहुत ज्यादा था। वैसे तो ब्रिटिश लोग थे मगर फिर भी ये आप अनुमान ही लगाइए किस तरह से हमारे लोग वहां पर जाकर बसे होंगे। ये बहुत ही भयानक माहौल था उनके लिए। और जब से भारतीय फिजी आने लगे तब से चीनी का जो व्यापार है उसमें फायदा होने लगा और फिजी आज जो है, मैं कहना चाहती हूं कि फिजी आज जो है वो भारतीयों की कड़ी मेहनत का फल है। ठीक है, जो भी अन्य लोग कहना चाहे कह सकते हैं, मगर मैं ये कहना चाहती हूं कि आज जो फिजी है वो हमारे भारतीयों की कड़ी मेहनत का फल है, हमारे पूर्वजों की कड़ी मेहनत और खून पसीने से ही फिजी आबाद हुआ है और वहां बहुत से जाति के लोग अब रहने लगे हैं, मगर फिजी हम भारतीयों की कड़ी मेहनत का फल है। तो चलो आज मैं आपको एक गिरमिट गीत सुनाती हूं, ठीक है। सिडनी ऑस्ट्रेलिया से एक दीपक चंद जी है जिन्होंने इस गीत के लिरिक्स को लिखे हैं।

हाँ जी, गिरमिट पर ये नगमा। और एक बार फिर मैं अपने जितने पूर्वज हैं जो फिजी में आए भारत से, उनको याद करना चाहती हूँ। और यही उम्मीद कर रही हूँ कि आप भी अपने पूर्वजों को ज़रूर याद रखेंगे एंड उनके बलिदान को याद रखेंगे। और जी हाँ, तो चलो आगे बढ़ते हैं और यहाँ से अब कार्यक्रम को और आगे बढ़ाते हैं। और आप सुन रहे हैं एक रंगीन शाम आपके नाम, और मैं शशि जोखन आपका साथ पूरे 7 बजे तक दूंगी।

हाँ जी, अभिजीत के आवाज में आप ये बहुत ही बढ़िया सा गोल्डन एरा ऑफ मेलोडीज के गीत सुन रहे थे. एंड हाँ जी, आज हम अपने जो सेगमेंट है छोटी छोटी बातें अपनों की जो सेगमेंट है, उसमें आज हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं पेरेंट्स के लिए और बच्चों के लिए एक ऐसे टॉपिक, खास तौर से बच्चे और पेरेंट्स के बीच में जो कम्युनिकेशन गैप को हम ज्यादातर जेनरेशन गैप कहकर टाल देते हैं. क्या आपको ऐसा कभी लगता है कि जब आप अपने बच्चों से बातें करते हैं तो आपको ऐसा लगता है कि वो सुन नहीं रहे या समझ नहीं रहे, तो आप ऐसे कहते हो कि भाई बस जेनरेशन गैप है इसीलिए ऐसा है. तो इसको समझने के लिए आज यही टॉपिक हम लेकर आए हैं, छोटी छोटी बातें अपनों की सेगमेंट में, जिसको हम थोड़ी ही देर में आपके लिए पेश करेंगे.

0: हाँ जी, बहुत ही बढ़िया सा नगमा आप सुन रहे थे, और अब हम आपको लेकर चलते हैं अपनी छोटी छोटी बातें अपनों की सेगमेंट में।
1: जरा एक लम्हे के लिए रुकिए, अभी इस वक्त आपके घर में मुमकिन है ऐसा कोई लम्हा मौजूद हो जब बाप बोल रहा है, माँ समझा रही है और सामने बैठा बच्चा खामोशी से सर हिला रहा है। हमें लगता यूं है कि ये तरबियत हो रही है, हमें लगता है वो सुन रहा है, मान रहा है, मगर सच तो ये है कि वो सिर्फ इंतजार कर रहा है कि वक्त किसी तरह गुजर जाए। नफ्सियात की दुनिया में एक बहुत नरम मगर बहुत ही गहरी बात कहती है कि जब बच्चा बोलना बंद कर दे तो वो नाफरमान नहीं होता, वो बस दूर चला जाता है। हम उसे जनरेशन गैप कहकर टाल देते हैं, मगर ये वक्त का फासला नहीं है, ये समझ का फासला है, ये एहसास का फासला है। आज की इस गुफ्तगू में हम इसी नरम सी दीवार की बात करेंगे जो ना किसी लड़ाई से बनती है, ना किसी बड़े वाके से बनती है, वो बस जाने अनजाने में रोज थोड़ी थोड़ी ऊंची होती जाती है। और हम जानेंगे कि कैसे एक छोटा सा कदम इस खामोश बच्चे को वापस आपका करीब तरीन दोस्त बना सकता है। दोस्तों, वालदेन बहुत मोहब्बत करते हैं, इसमें कोई शक नहीं, मगर हमारी यही मोहब्बत हमें मजबूर करती है कि जैसे ही बच्चा कोई मसला हमारे पास लेके आए हम उसे फौरन हल कर दें। हमारे तजर्बे से, हमारी अकल से, हमारी समझ से, और हम समझते हैं कि यही तो मोहब्बत है, मगर बच्चे के मासूम दिल को क्या लगता है? उसे ये लगता है कि मेरी बात मुकम्मल होने से पहले ही जवाब आ गया तो क्या मेरे एहसास इतने अहम नहीं थे? वो आपसे हल नहीं मांग रहा होता, वो सिर्फ ये जानना चाहता था कि क्या आप उसकी उलझन महसूस कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगली बार जब वो कुछ बताने के लिए आए तो चंद लम्हों के लिए अपने अंदर के रहनुमा को आराम दे दें, बस मुस्कुराकर सुने, उसे ये एहसास दिलाएं कि उसके टूटे फूटे अधूरे अल्फाज आपके लिए दुनिया की सबसे कीमती बातें हैं, क्योंकि वो हैं। दोस्तों, जब बच्चा घर में अपनी बात कहने से हिचकिचाता है तो वो आवाज खत्म नहीं होती, वो बस अपना रुख बदल लेती है, वो बाहर निकलता है किसी ऐसे शख्स की तलाश में जो उसे अहमियत दे, जो उसकी मामूली सी बात पर भी मुस्कुराए, जो उसे सुने बगैर फैसले के, बगैर नसीहत के। और यहाँ सबसे दिल हिला देने वाली बात यह है कि वो किसी गलत दोस्त के पास इसलिए नहीं जाता कि वो बुरा बनना चाहता है, वो इसलिए जाता है क्योंकि वहां उसे कोई सुनता है। आपका बच्चा आपकी शफकत का भूखा है, वो आपकी जायदाद नहीं मांगता, वो आपका वक्त मांगता है। और अगर घर में उसकी आम सी बात पर भी आपकी आंखों में दिलचस्पी हो तो वो बाहर किसी झूठी तवज्जो का मोहताज कभी नहीं बनेगा, कभी नहीं। और दोस्तों, एक और बात, हम सोचते हैं कि वालदेन को हमेशा मजबूत नजर आना चाहिए, मगर सच तो ये है कि आपके बच्चे को आपके रोब की जरूरत नहीं है, उसे आपके नरमी की जरूरत है। आज अभी बस एक कदम उठाएं, अपने बच्चे के पास जाएं, पढ़ाई की बात ना करें, मुस्तकबिल की बात बिल्कुल ना करें, बस उसका हाथ पकड़ें और पूछें, क्या तुम अंदर से खुश हो? क्या कभी मेरी किसी बात ने तुम्हें उदास किया? आज का तुम्हारा दिन कैसे गुजरा? अब ये छोटे छोटे अल्फाज ये कोई बड़े नहीं लगते, लेकिन जब एक बाप या माँ इतनी नरमी से बच्चे के दिल पर दस्तक देते हैं तो वो सारी खामोश दीवारें जो बरसों से बनी होती हैं, वो आंसुओं के रास्ते बह जाती हैं, वो जज्बात के रास्ते निकल आती हैं, और वो फासला एक ही लम्हे में एक गहरी मोहब्बत में बदल जाता है। और दोस्तों, एक वक्त वो भी आएगा जब आपके बाल सफेद होंगे, कदमों की रफ्तार थोड़ी सी धीमी हो जाएगी और शाम के वक्त घर में खामोशी होगी, उस वक्त आप चाहेंगे कि आपका बेटा या आपकी बेटी आपके पास बैठे, अपने दिन की बातें करे, अपनी हंसी, अपनी परेशानियां, अपनी कहानियां आपके साथ बांटे। वो लम्हा आपके आज से बनता है। अगर आज आप उनकी बात मुकम्मल होने दें, अगर आज आप उनके अल्फाज की कदर करें, अगर आज आप उनका दिल जीत लें, तो कल वो आपके पास भाग भाग कर आएंगे। ये बच्चे आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा और खूबसूरत सरमाया है। इनके साथ बहस जीतने की कोशिश हरगिज न करें, बस उनका दिल जीत लें। रिश्ते रोब से नहीं, मोहब्बत और एहसास से फलते फूलते हैं। अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। जरा ये,
0: हाँ जी, बहुत ही बढ़िया ये चंद लव्ज़ इन्होंने हमें बताए हैं, एंड डॉक्टर आसाद जी ने, और बहुत ही बढ़िया ढंग से उन्होंने समझाने की भी कोशिश की है। और ये अब हमारे ऊपर होता है कि हम किस तरह से अपने बच्चों के साथ पेश आए, अपने बच्चों को किस तरह से समझाए, और ताकि वो हमारे साथ हिल मिलकर अच्छी तरह और सही रास्ता अपनाए। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है कि जिस तरह हम बच्चों को मोल्ड करते हैं छोटे से ना, उसी तरह वो बच्चा बड़ा होकर बनता है। तो हम अपनी तरह अपने बच्चों को बनाने की कोशिश करने से ज़्यादा अच्छा है कि आप उन्हें एक अच्छा इंसान बनाएं, एक पढ़ा लिखा इंसान बनाए, ताकि वो अपने जीवन में कुछ कर सके, जीवन में आगे बढ़ सके और अपने परिवार की देखरेख कर सके, अपने शहर में जहाँ है वहाँ अच्छी तरक्की कर सके और अपने देश की रक्षा कर सके। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। सो चलो आगे बढ़ते हैं एंड जुबिन नौटियाल की आवाज़ में एक बहुत ही प्यारा सा गीत। एक हरा भरा कार्यक्रम लाने की कोशिश करती हूँ, उम्मीद है कि आप साथ दे रहे हो। और अगर आज आपका जन्मदिन है तो खास तौर से आपको याद कर रही हूँ और कार्यक्रम में शामिल कर रही हूँ।

हाँ जी, आप सुन रहे हैं एक रंगीन शाम आपके नाम, और नए और पुराने गीतों का संगम। और खास तौर से आज जो बच्चों के लिए जो अंग्रेजी शब्द मैं लेकर आई हूँ वो है एक्चुअली एग्रीमेंट। आप उनके जो हिंदी शब्द है, खास तौर से फिजी में जो यूज करते थे एग्रीमेंट के जो हिंदी वर्ड है वो आप मेरे लिए ढूंढ कर रखिए। एंड कार्यक्रम खत्म होने से पहले मैं आपको सही आंसर बताऊंगी, मगर मैं चाहती हूं कि आप भी इसे ढूंढ कर देखिए कि आपको सही जवाब मिले या ना मिले, ठीक है। एंड सो एनीवे, बहुत सारे प्रोग्राम्स है ऐसे है होते हैं जो सभी अनाउंसर्स अपने अपने तरह से प्रोग्राम करते हैं। और मैं जैसे पहले कही कि मैं लास्ट वीकेंड प्रोग्राम नहीं कर पाई थी, तो हमारे जितने स्पेशल प्रोग्राम थी मदर्स डे के लिए, तो सभी मदर्स को मैं आज कहती हूँ हैप्पी हैप्पी बिलेटेड मदर्स डे, ठीक है। सो चलो अब हम पुराने गीतों की दुनिया में चलते हैं। और ये जो गीत मैं लेकर आई हूँ ये एक दर्द भरे गीत है, बॉलीवुड की 1970s की ओल्ड हिट।

हाँ जी, बहुत ही प्यारा सा नगमा, खुशियों भरा है समा, और इन दो घंटों में आपका आपको एंटरटेन करूं, आपके लिए अच्छी अच्छी बातें लेकर आऊं, और यही हमारी कोशिश रहती है। मगर कैसा बीता आपका वीकेंड? मुझे पता है आप बिजी होंगे, तैयारी कर रहे होंगे काम पे जाने के लिए, कल फिर बच्चों के स्कूल वगैरह है, सो बहुत कुछ हो रहा है, एंड फिर भी आप हमारा साथ दे रहे हैं, इसके लिए हम आपके बहुत ही शुक्रगुजार हैं। और ऐसे समय निकालकर हम भी आते हैं और आप भी अपने समय को निकालकर हमारे साथ जुड़ जाते हैं। सो एक और पुराने गीतों का संगम है, पुराने और नए गीतों का, सो एक और नगमा हम सुनते हैं। कश्मीर की कली से एक बार फिर हमने इसे इस फिल्म के नगमे मुझे बेहद पसंद है। आप शायद सोच रहे होंगे ये बार बार क्यों प्ले करते हैं।

0: इस गीत को मोहम्मद रफीज ने गाया और शर्मिला टैगोर और शमी कपूर पर फिल्माई गई। बहुत ही बढ़िया नगमा ये है एंड 1960s की ये गाना है, मगर आज हम इसे सुनते हैं तो ऐसा लगता है कि जैसे अभी अभी किसी ने इसे गाया है ना।
1: एक रंगीन शाम आपके नाम, सुनते रहिए।
0: हाँ जी, आप सुन रहे हैं एक रंगीन शाम और आपके नाम, और ये है रेडियो ब्रिजवानी पर, सिर्फ रेडियो ब्रिजवानी पर आप सुन सकते हैं इस कार्यक्रम को। और आगे बढ़ते हैं एंड अगला गीत एक बार फिर मोहम्मद रफी जी की आवाज में है, उनके साथ आशा भोसले, और इसे बहुत ही बढ़िया पर्दे पर आशा पारेख पर और जॉय मुखर्जी पर फिल्माई गई है।

फिर ये भी एक एवरग्रीन सॉन्ग ही है और जिसे लोग भूलना भी चाहे तो ना भूल सकते हैं। हाँ जी, 6:10 हो गए, 6:00, और देखिए वक्त का पता नहीं चलता ना अपनों के साथ, वक्त का पता नहीं चलता अपनों के साथ, पर अपनों का पता जरूर चलता है वक्त के साथ। तो वक्त नहीं बदलता अपनों के साथ, पर अपने जरूर बदल जाते हैं वक्त के साथ। सही कहा? हाँ जी, तो जिंदगी पल पल ढलती है, जिंदगी तो पल पल ढलती ही है, जैसे रेत मुट्ठी से फिसलते ही जा रहे हैं। शिकवे कितने भी हो हर पल, फिर भी हंसते रहना, क्योंकि ये जिंदगी जैसी भी है बस एक ही बार मिलती है। क्योंकि अगर आप सही ढंग से इसे नहीं बिताएंगे तो फिर पछताओगे जरूर।

0: हाँ जी, याद रखिए मैंने जो शब्द आपको दी ना वो है एग्रीमेंट। तो उसको हिंदी में क्या कहते हैं, खासतौर से जो फिजी में लोग जाकर बसे हुए थे वे लोग एग्रीमेंट को हिंदी में क्या कहते थे। सो एक और नगमा।
1: हूँ यारो ना घर है ना ठिकाना,
0: किशोरदा की आवाज में दर्द भरे गीतों में ये भी एक नगमा शामिल है।
1: मुसाफिर
0: 1972 की फिल्म परिचय से ली गई।

हाँ जी, किशोर दा के आवाज में, और इसे बड़े पर्दे पर दिखाई गई, जितेंद्र पर फिल्म आई गई। और देखिए, हरिवंश राय बच्चन जी बहुत ही बढ़िया लेखक थे। वो पोएम्स लिखते थे, स्टोरीज लिखते थे। उन्हीं के लिखित मैं ये आपके लिए पढ़ रही हूँ। कहते हैं, रब ने नवाजा हमें जिंदगी देकर, रब ने नवाजा हमें जिंदगी देकर, और हम शोहरत मांगते ही रह गए। रब ने नवाजा हमें जिंदगी देकर, और हम शोहरत मांगते रह गए। जिंदगी गुजार दी शोहरत के पीछे, फिर जीने की मोहलत मांगते रह गए। ये कफन, ये जनाजे, ये कब्र सिर्फ बातें हैं मेरे दोस्त, वरना मर तो इंसान तभी जाता है जब याद करने वाला कोई न हो। ये समंदर भी तेरी तरह खुद गर्ज निकला, ये समंदर भी तेरी तरह खुद गर्ज निकला। जिंदा थे तो तैरने ना दिया, और मर गए तो डूबने ना दिया। क्या बात करे इस दुनिया की, क्या बात करे इस दुनिया की, हर शख्स के अपने अफसाने हैं। जो सामने है उसे लोग बुरा कहते हैं, जिसको देखा नहीं उसे सब खुदा कहते हैं।

0: सुबह से शाम तक
1: व्हाट आई विल डांस माय डांस शैल स्पीक फॉर मी
0: शाम से रात्रि तक
1: सुपर्ब सुपर्ब फैबुलस आउटस्टैंडिंग
2: नहीं ऐसे नहीं खुल के बोलिए कैसा लगा लगा कैसा
0: और फिर उसके बाद आपका साथ देता रेडियो ब्रिजवानी आपकी पहचान
1: हिल मत चिल
2: अरे बगैर हिल चिल कैसे होगा
1: या
2: ओके सॉफ्ट
1: सॉफ्ट अब लाउड या
3: हाँ जी आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिजवानी का ये कार्यक्रम एक रंगीन शाम आपके नाम और ये रेडियो ब्रिजवानी का कार्यक्रम है और रेडियो स्टेशन है एंड ये कार्यक्रम हम आप तक लेकर आते हैं मगर याद रखिए अगर आप अपने बिजनेस को आगे बढ़ाना चाहते हैं तो बेशक आप एंजेला पूरन को कांटेक्ट कीजिए ताकि आपका एडवर्टाइजमेंट भी हमारे माध्यम से हमारे लोगों तक पहुंच सके
4: मैं चाहती हूँ इस बार फंक्शन में बेस्ट ज्वेलरी मैं ही पहनूं पर कहाँ से खरीदूं पता ही नहीं आई एम सो कंफ्यूज्ड
5: अरे इसमें कंफ्यूजन क्या प्रिंस ज्वेलर्स ब्रिस्बेन क्वींसलैंड में जो गोल्ड और डायमंड ज्वेलरी के स्पेशलिस्ट हैं दे आर इन बिजनेस सिंस 1992 यहाँ अवेलेबल हैं डायमंड नेकलेसेस बैंगल्स रिंग्स इयररिंग्स गोल्ड एंड सिल्वर कॉइंस साथ ही ज्वेलरी और वॉच रिपेयर भी होती है
4: Wow, तो मेरी प्रॉब्लम सॉल्व पर एड्रेस
5: एट शॉप 9B सनी बैंक हिल्स शॉपिंग टाउन कॉर्नर ऑफ कर्लम एंड 661 क्रॉम्पटन रोड सनी बैंक हिल्स क्वींसलैंड 4109 फॉर ऑल योर ज्वेलरी नीड्स कॉन्टैक्ट 3273-7365 दैट्स 3273-7365 और ईमेल princejewelers@bigpond.com फैमिली बिजनेस बिल्ट ऑन ट्रस्ट
3: हाँ जी ट्रस्ट तो है ही रेडियो ब्रिजवानी के साथ आप सिर्फ कदम तो उठाइए एंड आगे बढ़िए
6: बिजली का बिल देखकर हर महीने शॉक लगता है क्या तो अब स्विच करो सोलर पर रे सोलर पावर के साथ आपके लोकल CEC अप्रूव्ड सोलर एक्सपर्ट्स घर हो या बिजनेस हम सब के लिए सोलर पैनल्स बैटरीज और कमर्शियल सिस्टम्स को सप्लाई और इंस्टॉल करते हैं ताकि आप बचा सके पैसे और क्लीन एंड रिन्यूएबल एनर्जी से एनवायरनमेंट को भी आपकी लोकल टीम पर भरोसा रखे रे सोलर पावर का प्रॉमिस है क्वालिटी प्रोडक्ट्स प्रोफेशनल इंस्टॉलेशन और रियल सेविंग्स तो अब बिजली का बिल नहीं सिर्फ सनशाइन मिलेगा रे सोलर पावर Powering homes, powering businesses, powering the future. Aaj hi call kare 0430-525-896. That is 0430-525-896. Hamara email ID hai ray@raysolarpower.com.au aur website www.raysolarpower.com.au.
3: हाँ जी इसी तरह आपके बिजनेस को भी हम आगे बढ़ा सकते हैं आप फोन कीजिए जैसे हमने पहले कहा एंजेला पूरन को
7: सेंडिंग अ डिजिटल टॉप अप टू लव्ड वंस इन फिजी इज सुपर इजी केवल अपने नियरेस्ट डेयरी सुपरमार्केट और पेट्रोल स्टेशन पहुंचिए और खरीदिए 10, 20, 30 या $50 टॉप अप आप वेबसाइट www.digicelinternational.com विजिट भी कर सकते हैं डिजिटल टॉप अप अपने फैमिली को फिजी देने के लिए पैसा भेजने के लिए आवर पार्टनर क्लिक एक्सप्रेस पिक इज द इजिएस्ट वे टू सेंड मनी टू डिजिसेल फिजी केवल आपको रजिस्टर होना है एट www.clickexpresspic.com पर डिजिसेल वी आर बेटर टुगेदर
3: यस वी आर बेटर टुगेदर हम आपके बिजनेस को आगे बढ़ाएंगे
4: प्रिया नेक्स्ट मंथ मामा का बर्थडे है सोच रही हूँ उनको फॉरेन एक्सचेंज के थ्रू न्यूजीलैंड मनी भेज दूँ जिससे वो अपनी पसंद का गिफ्ट ले लेंगे ये तो बहुत अच्छा आइडिया है मेरे पास एक अच्छा ऑप्शन भी है मनी ट्रांसफर करने का
8: अच्छा वो क्या
4: अब तुम घर बैठे न्यूजीलैंड या फिजी में भी मनी भेज सकती हो लोटस फॉरेन एक्सचेंज की हेल्प से ऑनलाइन और वो भी फ्री में
8: लेकिन मामा के लिए मनी लेने कहीं दूर जाना पॉसिबल नहीं होगा
4: अरे रिसीवर्स अब कैश पिकअप बैंक ट्रांसफर या मोबाइल वॉलेट में भी ले सकते हैं मनी डाउनलोड कीजिए लोटस फॉरेन एक्सचेंज ऑनलाइन au.lotusfx.com ऐप आज ही विजिट करें
3: जी यही मैं कहना चाहती हूँ अगर अभी भी आप हमारे साथ जुड़े हुए हो तो आपका हम तहे दिल से स्वागत कर रहे हैं एंड बस कुछ ही देर तक और हमारा साथ रहेगा 7 बजे हमारा कार्यक्रम यहाँ समाप्त होगा और फिर सताक्षी आ जाएगी कार्यक्रम को संभालने के लिए और हाँ जी आज एक बहुत ही स्पेशल दिन इसलिए भी है क्योंकि आज मशहूर गायक गजल गायक पंकज उधास जी जो आज हमारे बीच नहीं है उनका जन्मदिन आज ही था। एंड पंकज जी कुछ ऐसे गायकों में गिने जाते हैं जिन्होंने आम लोगों के बीच गजल को पॉपुलर बनाया। तो केवल ऑफ बीट गजल ही नहीं बल्कि पंकज जी के कई रोमांटिक गाने भी हुआ करते हैं थे जो युवा वर्ग के बीच में बेहद पसंद किए जाते हैं अभी भी। तो चलिए पंकज जी उदास का एक गजल सुनते हैं।

0: बाकी सब कंगा।
1: अगर हमारे जीवन में ऐसे ऐसे गीतकार नहीं होते, ऐसे ऐसे गाने नहीं लिखने वाले होते और ऐसे गीत सिंगर्स नहीं होते, तो आप बताइए हमारा जीवन कैसा होता। आप अनुमान भी लगा सकते हो कैसा होता। सो एनीवे, देखिए कई फिल्में बनाई जाती हैं, कई गाने भी लिखे जाते हैं और कई मूवीज की जो थीम होती है, जो मूवी बनाते हैं, स्टोरी लाइन होती है, वो किसी न किसी कल्चर पर बेस्ड होती है। खास तौर से जैसे कई ऐसे खास मूवीज हैं जो बहुत से लोगों को पसंद आई, जैसे कि रामलीला हो, देवदास हो, बैजीराव मस्तानी हो, पद्मावत हो, तो ये सभी डिफरेंट कल्चर्स पर इन फिल्म्स को बनाई गई, इनकी जो स्टोरी लाइन, इनकी जो सॉन्ग्स है। तो चलो आज मैं ऐसे ही चंद गीत आपके लिए पेश करूंगी। और फर्स्ट वन इज जो गीत मैं आपके लिए लाई हूँ, ये फिल्म रामलीला से हमने ली है और रामलीला गुजराती कल्चर पर बेस्ड थी ये फिल्म। तो ये गीत आप एंजॉय कीजिए।

हाँ जी, रामलीला एक ऐसी फिल्म थी जो बेहद सक्सेसफुल साबित हुई, खास तौर से दीपिका के लिए. एंड बहुत ही अच्छी तरह से उन्होंने अपने किरदार को निभाई. और जैसे हमने पहले आपसे कहा, तो ये एक गुजराती पर बेस्ड थी ये फिल्म. और दूसरा गीत जो मैं आपके लिए लेकर आई हूँ, वो फिल्म पद्मावत से है. और पद्मावत एक्चुअली ये एक राजस्थान पर बेस्ड ये फिल्म थी. एंड उसे भी बहुत ही बढ़िया ढंग से इस फिल्म को किरदार को निभाई दीपिका ने. रणवीर सिंह के साथ शाहिद कपूर भी इस फिल्म में दिखे थे. श्रेया घोषाल और स्वरूप खान के आवाजों में ये बहुत ही प्यारे से नगमा.

बहुत ही बढ़िया सा नगमा, एक बार फिर दीपिका पादुकोण। सो ऐसे कई फिल्में उनके झोली में आ गिरी जो उन्हें बेहद सक्सेसफुल बनाए, और उनके साथ साथ रणवीर सिंह भी। खैर एनीवे, अब तो वो एक दंपति हो चुके हैं, एक माता पिता भी बन चुके हैं, सो दे आर हैविंग अ वेरी वेरी गुड लाइफ, लीडिंग अ गुड लाइफ टुगेदर। तो देखिए, जीवन में हमें हर बार कुछ ना कुछ सीखने का मौका मिलता है, ठीक है, ये तो आप मानते ही होंगे ना। कहते हैं ना कि चिड़िया जब जीवित रहती है, एक चिड़िया बर्ड जब जीवित रहती है तब वो चींटी को खाती है, एंट्स को, ठीक है, तब वो चींटी को खाती है, और चिड़िया जब मर जाती है तब चींटियां उसको खा जाती है। गॉट इट? और इसलिए इस बात का ध्यान रखिए कि समय और स्थिति कभी भी बदल सकते हैं, समय और स्थिति कभी भी बदल सकते हैं, इसलिए कभी किसी का अपमान मत कीजिए, कभी किसी को कम मत समझो। तुम शक्तिशाली हो सकते हो, पर समय तुमसे भी शक्तिशाली हो सकता है। मैं इसे रिपीट करती हूँ क्योंकि इट्स अ वेरी गुड वन। चिड़िया जब जीवित रहती है, बर्ड्स व्हेन द बर्ड्स आर फ्लाइंग एंड दे आर ऑल लाइफ, तब वो चींटी को खाती है नीचे, तो और चिड़िया जब मर जाती है, वही चिड़िया जब मर जाती है तो चींटियां उसको खा जाती है। इसलिए इस बात का ध्यान जरूर रखिए कि समय और स्थिति कभी भी बदल सकते हैं, इसलिए कभी किसी का अपमान मत कीजिए, कभी किसी को कम मत समझिए। तुम शक्तिशाली हो सकते हो, पर समय तुमसे भी शक्तिशाली हो सकता है। तो चलो, जिंदगी को जीने के लिए एक छोटा सा वसूल भी बनाते हैं, रोज कुछ अच्छा याद रखते हैं और कुछ बुरा भूल जाते हैं, हो सकता है ना। तो चलो, अब मैं आपको लेकर चलती हूँ फिल्म बाजीराव मस्तानी का एक नगमा लेकर आई हूँ आपके लिए, और ये बाजीराव मस्तानी मराठी पर मनाई गई, उन कल्चा पर ये फिल्म बनाई गई।

जी, इसको हम यहीं पर इस गीत को छोड़ रहे हैं। और हाँ जी, एक्चुअली मैंने अभी तक आपको वो नहीं बताई जो वर्ड हम लेकर आए थे आपके लिए ना, तो उस वर्ड को हम अपने हिंदी में कुछ लोग गिरमिट कहते हैं और अग्रीमेंट को, और बस इसे तो मैं इतना ही कहूंगी आज के लिए, क्योंकि अब हमारा समय हो गया है जाने के लिए और हम यहाँ से रुखसत ले रहे हैं। और जब तक अगले सप्ताह मैं एक बार फिर ना मिल लूँ आपसे, आप अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए और औरों को खुश रहने का मौका ज़रूर दीजिए। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होती है ना, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि हम खुद तो खुश रहना चाहते हैं मगर औरों को नहीं खुशी रख पाते हैं। सो ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट है बात। और हाँ जी, तो ये अग्रीमेंट वाला जो वर्ड है ना, मैंने कहा इसको समझौता भी कहते हैं, सहमति भी कहते हैं, कॉन्सेंसस भी आप कह सकते हो। सो इसको अगर एक सेंटेंस के रूप में आप देखें तो कई तरह से आप इसको सेंटेंस में बना सकते हैं, मगर आज मैं ये नहीं बताऊंगी आपको, आप इसे खुद ही ढूंढिए, सेंटेंस बनाइए और तैयार रहिए। और इस आखिरी गीत को मैं आपके लिए छोड़े जा रही हूँ, और याद रखिए अपने दुआओं में, अपने प्रेयर्स में जरूर मुझे याद रखिए।

रेडियो ब्रिस्वानी 1701 एम पर आपकी फरमाइशों के साथ सताक्षी एक बार फिर से हाजिर है फरमाइशी गीत। जी हाँ, इसी सफर को लेकर आ गई हूँ मैं और मेरे साथ बहुत ही प्यारे और बेहतरीन गाने बिल्कुल आपके लिए रेडी हैं, तैयार हैं। लेकिन ये गाने भाई मैंने नहीं चूज किए हैं। देखिए, पूरे हफ्ते किसी न किसी शो में मैं आपके लिए अपने पसंद के गाने लेकर आती हूँ और आपको सुनवाती हूँ, लेकिन फरमाइशी गीत भाई ये सफर आपका है, इस सफर के गाने आपके हैं, चॉइस आपकी है। तो आपको कौन से गाने सुनने हैं आप हमें लिख कर भेज सकते हैं हमारे रेडियो ब्रिस्वानी के फेसबुक पेज और वेबसाइट पर। फिलहाल चलिए शुरू करते हैं शो और इस अगले ट्रैक के साथ बढ़ते हैं आगे। के प्लस टू रेडियो ब्रिस्वानी, मेरे साथ सुनते रहिए फरमाइशी गीत।

तो फरमाइशी गीतों में आज हमारी पहली रिक्वेस्ट किसकी है, आइए सुनते हैं। और ये पहली रिक्वेस्ट आज हमें की है उद्धव प्रकाश ने, और आपने हमें लिखा है डेल्टा बीसी से। उद्धव कह रहे हैं कि सताक्षी, इंडिया से हूँ मैं बेसिकली, और यहाँ डेल्टा बीसी में मैं अभी कुछ वक्त पहले ही आया हूँ। सब कुछ नया लग रहा है, सब कुछ अलग लग रहा है, लेकिन जब भी गजलें सुनता हूँ ना तो वो अलग नहीं लगती, वो बस अपनी सी लगती है। इसलिए प्लीज मेरी पसंद का एक गाना मेरे लिए प्ले कर दीजिएगा। वक्त ने किया क्या हंसी सितम आई है, बहुत ही प्यारा गाना है, मतलब बहुत ही प्यारी गजल है कहना चाहिए। और जरूर प्ले करेंगे भाई हम इस गजल को, और आपकी फरमाइश हो और हम पूरी ना करें तो वैसे भी पॉसिबल नहीं है। तो चलिए इसी गजल के साथ शुरू करते हैं आज की फरमाइशों की शुरुआत करते हैं, और आज की पहली फरमाइश यही लेते हैं। इंजॉय कीजिए हमारे साथ वक्त ने किया क्या हंसी सितम, तुम रहे ना तुम, हम रहे ना हम, और सुनते रहिए रेडियो पर फरमाइशी गीत आपकी सताक्षी के साथ।

0: भाई मम्मी पापा की तबीयत की बहुत टेंशन रहती है यार। हम यहाँ ब्रिस्बेन में और वो इंडिया में अकेले हैं।
1: तो उमसोग से बात कर, इंडिया में एल्डर्स और दिव्यांगनों के लिए इन होम केयर देते हैं एकदम प्रोफेशनल तरीके से।
0: हाँ, लेकिन भरोसा कैसे करूं?
1: अरे उमसोग एक ऑस्ट्रेलियन कंपनी मैपल केयर की सब्सिडियरी है और मैपल केयर NDIS का रजिस्टर्ड प्रोवाइडर है।
0: अच्छा, मतलब स्टैंडर्ड और रिस्क मैनेजमेंट भी ऑस्ट्रेलिया जैसा?
1: बिल्कुल, खाना, दवाई, हेल्थ चेक, सब कुछ जैसे आप खुद देख रहे हो।
0: फिर तो आज ही वेबसाइट देखनी पड़ेगी।
1: उनकी वेबसाइट www.omsog.co.in है। भारत में नंबर +91 8448 381 360 है और ऑस्ट्रेलिया में 0470 631 801। प्यार और देखभाल की कोई दूरी नहीं होती भाई। ओमसॉक, केयरिंग विद डिग्निटी।
2: फरमाइशी गीत, इसी सफर को आप सुन रहे हैं रेडियो प्रस्वानी 1701 AM पर, और आपके साथ इस सफर में आपकी हम सफर सताक्षी है। वैसे भाई बहुत सारे लोगों के मेल्स हम तक पहुंचे हैं, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि हमें मेल करना चाहिए कि नहीं। तो भाई देखिए, ये सोचते रहेंगे तो फिर काम कैसे बनेगा, है ना? तो फटाफट से बताइए कि कौन से हैं वो गाने जो हैं आपको बेहद पसंद, और कौन सी हैं वो बातें जो उन गानों के साथ जुड़ी हैं और उन गानों को आपके लिए स्पेशल बनाती हैं। हमें लिख भेजिए अपनी पसंद हमारे रेडियो प्रस्वानी के फेसबुक पेज और वेबसाइट पर। फिलहाल चलिए एक और गाने के साथ आपको आगे लेकर चलते हैं। एंजॉय कीजिए एंड स्टे ट्यून्ड रेडियो प्रस्वानी 1701।

मेरे पास अभी आ गया है आज का अगला मेल दोस्तों, और ये है रोहित नंदन। रोहित ने हमें किया है मेलबर्न से आज का अगला मेल, और रोहित कह रहे हैं कि सताक्षी रेडियो प्रस्वानी पर फरमाइशी गीतों में आज मैं अपना एक मेल कर रहा हूँ, और उम्मीद करता हूँ कि भाई मेरा ये मेल शामिल होगा। इसके पहले भी मैंने 2 बार मेल किया है और मेरे सभी मेल्स लकली शामिल हुए हैं। मुझे उम्मीद है कि आज भी आप मेरा लेटर जरूर पढ़ेंगी। तो भाई लीजिए आपका जो लेटर है, आपका जो मेल है भाई, बेसिकली ये मैं पढ़ रही हूँ। और रोहित आगे कह रहे हैं कि सताक्षी मुझे 90s के गाने बहुत पसंद हैं, और मेरी 90s में जब मैं किड था तो मेरी एक फेवरेट फिल्म थी हमें राही प्यार के। इस फिल्म में एक गाना था मुझसे मोहब्बत का इजहार करती, ये गाना जो है ये मुझे बचपन से पसंद है। मुझे याद है कि मैं उस वक्त छोटा था और मैंने इस गाने को याद कर लिया था। सो प्लीज़ अगर ये गाना आपके पास हो तो हमारे लिए ज़रूर प्ले कर दीजिए आज। तो भाई मुझसे मोहब्बत का इजहार करती, जी हाँ, ये गाना जूही चावला और आमिर खान पर फिल्माया गया है रोहित साहब, और 1993 की ये सुपरहिट फिल्म थी हमें राही प्यार के। इस गाने को अपनी आवाज़ दी है उस दौर के खूबसूरत गायक कुमार सानू साहब और अलका याग्निक जी ने। नदीम श्रवण ने दिया है इसका म्यूजिक और समीर ने लिखे हैं इस गाने के बोल। तो चलिए मुझसे मोहब्बत का इजहार करती आपके लिए गाना अभी हम आपके रेडियो सेट्स पर, एंजॉय कीजिए और हमारे साथ सुनते रहिए फरमाइशी गीत ओनली ऑन रेडियो ब्रिस्वानी 1701 AM।

0: Hi, this is Amitabh Bachchan.
1: और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी.
2: Hi guys, I'm Manmeet, one of the Meet Brothers. आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी.
3: Hi, this is Salman Khan.
4: और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी.
5: Hi, this is Deepika Padukone. और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी.
6: To everyone tuning into Radio Brisbane, this is Alia.
7: Hi, मैं हूँ तुलसी कुमार और आप मुझे सुन रहे हैं Radio Brisbane से.
8: To everyone tuning into Radio Brisbane, this is Shahrukh Khan.
9: Hi, this is Ajay Devgan और आप सुन रहे हैं Radio Brisbane.
10: आपकी फरमाइशों को इस वक्त साक्षी आपके लिए पूरा कर रही है. जी हाँ, वो गाने जो आपने हमें रिक्वेस्ट किए हैं, हमें लिख भेजे हैं, इस वक्त हम आपके लिए प्ले कर रहे हैं. एंड वी रियली होप कि आपको भी ये गाने बहुत अच्छे लग रहे होंगे. तो चलिए एक अगले ट्रैक के साथ फिलहाल आपको आगे लेकर चल रही हूँ, इसे भी इंजॉय कीजिए. इसके उस पार देखते हैं कि अगला मेल किसका है. स्टे ट्यून्ड, रेडियो ब्रिसवानी, हमारे साथ सुनते रहिए फरमाइशी गीत.

फरमाइशी की तुम्हें मेरे पास बिल्कुल इस वक्त मेरे सामने है ब्रिस्बेन से आज का अगला मेल, और ये है स्वाति। स्वाति कह रही है, सताक्षी मैं रिजो ब्रिस्वानी पर आज अपना पहला मेल भेज रही हूँ और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप इस गाने को ज़रूर शामिल करेंगी। मेरी रिक्वेस्ट आज आप ज़रूर शामिल करेंगी। बेसिकली आतिफ असलम ने बॉलीवुड के लिए बहुत कम गाने गाए हैं सताक्षी, लेकिन उनका गाया एक गाना बहुत ही खूबसूरत है। इनफैक्ट मैं आतिफ असलम के सभी गानों की बहुत बड़ी फ़ैन हूँ, बट एक गाना जिसने बॉलीवुड को बहुत ही खूबसूरत गाना दिया वो है अजब प्रेम की गजब कहानी का गाना तू जाने ना। सो प्लीज़ अगर ये गाना आपके पास हो और आप मेरे लिए प्ले कर दें तो बहुत मज़ा आएगा। ये गाना मैं डेडिकेट करना चाहती हूँ अपने फियांसे को, और मैं उन्हें भी बताना चाहती हूँ कि ये गाना मेरा फेवरेट है। तो प्लीज़ मेरे लिए ये गाना जब मैं नाराज़ हो जाऊँ तो खासकर ज़रूर गा दिया करिएगा। भाई बहुत ही खूबसूरत बात, मैं कहती हूँ कि लड़कियों को ना यही करना चाहिए कि उन्हें जब नाराज हो तो क्या दिया जाए या क्या उनसे कहा जाए ये पहले बता देना चाहिए। और ना लड़के बेसिकली ज्यादा कंफ्यूज होते हैं कि भाई ये नाराज हो गई है, इसे मनाए कैसे, कुछ को गिफ्ट्स पसंद है कुछ को नहीं है। तो स्वाति ने ये बात बिल्कुल क्लियर कर दी कि भाई उन्हें मनाया जाए इस गाने के जरिए तू जाने ना। तो चलिए फिर आपके लिए ये गाना हम भी प्ले करते हैं और उम्मीद करते हैं कि आप हमसे नाराज तो नहीं है ना। तो नाराजगी में मत सुनिएगा भाई। आतिफ असलम साहब का गाया ये गाना जिसे म्यूजिक दिया है प्रीतम ने और इसे लिखा है इरशाद कामिल ने। जी हाँ, अजब प्रेम की गजब कहानी, ये फिल्म रिलीज हुई थी 2009 में और ये गाना फिल्माया गया है रणबीर कपूर और कटरीना कैफ पर। तो ये गाना अभी स्वाति आपके लिए और आपके फियांसे को ये बताने के लिए कि आपको यही गाना शादी के बाद सुनाते रहना है। इंजॉय कीजिए और सुनते रहिए हमारे साथ रेडियो ब्रिस्तानी पर फरमाइशी गीत।

0: यार राहुल, तेरे केस का क्या हुआ?
1: यार I'm so worried. I actually want an experienced lawyer to handle my case.
0: मेरी एडवाइस है, go for the best. अतुल भारद्वाज जी है ना, उनके पास 12 साल से ज्यादा का वास्ट एक्सपीरियंस है और लॉ की एंट्री केसेस को हैंडल करने में उनकी एक्सपर्टीज है. क्रिमिनल लॉ, डोमेस्टिक ऑफेंस, ट्रैफिक ड्रग ऑफेंस में 12 साल से ज्यादा का रिच एक्सपीरियंस, और तो और कन्वेयंस, फैमिली लॉ, इमिग्रेशन लॉज में भी भारद्वाज एंड एसोसिएट्स के लॉयर्स का वास्ट एक्सपीरियंस है. एंड द बेस्ट पॉइंट, दे अंडरस्टैंड द स्ट्रेस दैट यू गो थ्रू एंड वर्क इफेक्टिवली टू मिनिमाइज इट.
1: थैंक्स अटनियर, आई एम सो रिलैक्स्ड टू हियर दैट.
0: Don't risk your life. Talk to Atul before you talk to police. Contact Atul now on 0400-234-235. That is 0400-234-235.
2: जी, आपकी फरमाइशों को सताक्षी के साथ आप सुन रहे हैं रेडियो प्रिस्वानी पर. आपकी फरमाइशों के साथ कुछ बहुत ही प्यारे और खूबसूरत गाने हम आपके लिए इस वक्त प्ले कर रहे हैं. एंड आई रियली होप कि आपको भी ये गाने जरूर पसंद आ रहे होंगे और जरूर अच्छे लग रहे होंगे. तो चलिए, जब आपको ये गाने अच्छे लग रहे हैं, हमें प्ले करने में मजा आ रहा है, तो भाई क्यों रुकना और थमना है. एक और गाना हमारे साथ सुनिए और सुनते रहिए रेडियो प्रिस्वानी पर फरमाइशी गीत, सिर्फ और सिर्फ आपकी पसंद के गाने इस वक्त हमारे जरिए आप सुन रहे हैं.

फरमाइशी की तो मैं आइए देखते हैं, चेक करते हैं कि अगला मेल हमें किसने किया है। और आप हैं इस वक्त हमारे साथ हिंदुस्तान से। जी हाँ, अगला मेल मेरे पास इंडिया से पहुंचा है और आप डॉक्टर ऋषभ हैं। और डॉक्टर ऋषभ कह रहे हैं कि सताक्षी, प्यार करना बड़ा आसान होता है लेकिन प्यार मिलना बहुत ही मुश्किल होता है। और मेरा जो मामला है वो अभी तक वन साइड लव में अटका हुआ है और मैं तो भाई शिद्दत से सामने वाले को चाहता हूँ लेकिन उधर से कुछ खास रिस्पांस नहीं आ रहा है। और जब भी ये सिचुएशन अपनी सिचुएशन में याद करता हूँ तो मुझे एक गाना याद आता है और उसी के जरिए आज मैं अपनी सिचुएशन जो है वो उन तक पहुंचाना चाहता हूँ जिनसे मैं बहुत प्यार करता हूँ। और आप ये गाना प्ले कीजिए, मैं आज उनको ये गाना सुनवा के मानूंगा कैसे भी। तो ऋषभ, आप का गाना जो है वो बहुत ही खास है भाई, खुदा करे कि मोहब्बत में वो मकाम आए। ये गाना बहुत ही प्यारा है, फिल्म सनम का गाना है ये। और भाई रोहित की कंडीशन भी बड़ी प्यारी है, मतलब वो सामने वाले को, मतलब अपनी गर्लफ्रेंड को जिनको वो मोहब्बत करते हैं, जिनसे उनको वो बहुत प्यार करते हैं, लेकिन कुछ खास रिस्पांस आ नहीं रहा। और मैं बताऊं, जब ये कुछ खास रिस्पांस वाली कंडीशन होती है ना ऋषभ, तो भाई कंडीशन पॉजिटिव ही मान के चलिए। हो सकता है कि भाई बात बनी बनाई हो, बस एक इजहार की ज़रूरत है ना। तो बिल्कुल ये गाना आप उन्हें सुनवाइए। और मैं तो कहती हूँ कि भाई सिचुएशंस जितनी जल्दी क्लियर कर ली जाए उतना अच्छा है। आप जितना जल्दी इस बात को क्लियर कर लें कि भाई कुछ उधर से है कि नहीं है, उतनी बढ़िया बात होती है। तो चलिए, खुदा करे कि मोहब्बत में वो मकाम आए, फिल्म सनम का ये गाना जो रिलीज हुई थी 1997 में। ये बेसिकली ऋषभ एक गाना नहीं कहूंगी मैं, ये बेसिकली एक गजल है। गजल फॉर्म में ये गाना पंकज उदास साहब ने गाया है, इसको लिखा है समीर साहब ने और आनंद मिलन ने दिया है इसका म्यूजिक। विवेक मुश्रान और मनीषा कोइराला, इन दोनों पर यह गाना फिल्माया गया है और इस गाने को भी हम प्ले करेंगे आपके लिए यहाँ पर। एंजॉय कीजिए और हमारे साथ सुनते रहिए रेडियो ब्रिस्वानी पर फरमाइशी गीत।

0: यार साग में कुछ दम नहीं है, बिल्कुल मजा नहीं आया।
1: किसी दिन घर आना, असली देसी घी में साग बनाकर खिलाऊंगा तुम्हें।
0: कहाँ यार, आजकल असली देसी घी मिलते कहाँ है?
1: किस दुनिया में हो भाई, क्वालिटी फूड सर्विस में ट्रिपल रिफाइंड प्योर देसी घी मिलते हैं। ऑस्ट्रेलिया में ही बनते हैं, 100% प्योर क्रीम से, 99.9% प्योर मिल्क फैट से। और तो और हर मौसम में उपलब्ध रहने के साथ साथ हाई क्वालिटी पैकेजिंग में भी आते हैं।
0: मुझे तो पता ही नहीं था। अच्छा ये बताओ मैं कहाँ से खरीद सकता हूँ?
1: लगभग सभी इंडियन आउटलेट से तुम पीवा देसी घी ले सकते हो।
2: पीवा देसी घी सिंह डेयरी द्वारा मैन्युफैक्चर किया जाता है, बिल्कुल ओरिजिनल और कलरलेस। और इन्फो के लिए आज ही कॉल करें मोबाइल नंबर 0400664435 पर। याद रहे 0400664435 पर, या फिर ईमेल करें singdairy@gmail.com पर।
3: मेरी पत्नी सभी घी ट्राई कर चुकी है और जब से वो पीवा देसी घी इस्तेमाल करने लगी है सारे घर में घी की खुशबू फैल जाती है।
4: जी आपकी कुछ खास फरमाइशें इस वक्त साक्षी आपके लिए प्ले कर रही है रेडियो ब्रिस्वानी 1701 AM पर। फरमाइशी गीतों का ये सफर जो है ये हमारा आपका है, और अगर अभी तक आपने हमें नहीं लिखा है कि कौन से गाने हैं जो आप हमारे साथ सुनना चाहते हैं तो बिल्कुल लिख भेजिए। तो हमें फटाफट से लिख भेजिए रेडियो ब्रिस्वानी की वेबसाइट पर या फिर रेडियो ब्रिस्वानी के फेसबुक पेज पर। एक और ट्रैक हमारे साथ सुनिए और इसके उस पार देखते हैं अगली फरमाइश किसकी है। कीप लिसनिंग टू रेडियो ब्रिस्वानी, आपके साथ है सताक्षी।

सो फरमाइशी गीतों में कौन है अभी हमारे साथ? और आप हैं सुनिधि। और सुनिधि कह रही हैं कि सताक्षी, मैं आज रेडियो प्रस्वानी पर पहली

नमस्कार, आदाब, आप सभी का इस्तकबाल। मैं हूँ निलय। पल दो पल की महफिल में आपको फिर से मिलने चला आया हूँ। आपके इंतजार के लम्हे खत्म करने आया हूँ। आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिस्वानी, और ये पल दो पल का खूबसूरत सफर मैं शुरू करूंगा इससे कि अरमान तो बहुत तेजी से आते हैं दिल में, मगर आप सबके लिए ये और मेरे लिए तो है खास तौर से कि अरमान तो बहुत तेजी से आते हैं दिल में, मगर फर फर तो गुजरती नहीं है घड़ियां। खास करके चाल में थोड़ी सी मोहब्बत की नजाकत होती है। रंग गुलाबी नहीं होता, थोड़ा सा धानी और पीला, तब न सर्द मौसम न गर्म, न दर्द मौसम न बेदर्द मौसम, मोहब्बत होती है इंतजार। ऐसे में तुम न आए एक दिन का वादा कर दो दिन तलक, जब इतना खूबसूरत इंतजार हो रहा है तो ऐसे में तुम न आए एक दिन का वादा कर दो दिन तलक, हम पड़े तड़पा किए दो दो पहर दो दिन तलक। आहा क्या बात है, तड़प का दर्द भी बेहद मीठा सा होता है। वक्त बहुत ही मध्यम गति से चलता रहता है, पर फिलहाल तो आप निलय के साथ अपने मिलन के लम्हे महसूस कीजिए। ये घड़ियां साथ ही गुजरने वाली हैं, पल दो पल ही सही। कुछ गाने शो की शुरुआत में आपको सुना रहा हूं और उसके बाद भी सुनाता रहूंगा, और जब हम लौट कर आएंगे तो फिर बिताएंगे, गुजारेंगे पल दो पल मिलजुल कर।

वेलकम बैक। जैसा कि मैंने कहा, आगाज हो चुका है इस महफिल का, जिसे आप कहते हैं पल दो पल। रेडियो ब्रिस्वानी पर आपके साथ आपका हम सफर, आपका हमदम, आपका निलय है। और यहाँ पल दो पल ठहर कर आप सुकून महसूस कर लेते हैं। मैं कुछ सुकून महसूस करवा पाता हूँ इतने बेहतरीन नगमे और कुछ बेहद खूबसूरत बातें। ऐसा मुझे लगता है कि मैं खूबसूरत बातें करता हूँ। अगर आपको लगता है कि मैं सही कह रहा हूँ तो मुझे बताइएगा, हौसला अफजाई तो किया कीजिए ना भाई थोड़ी बात। तो आज किया आपके लिए कि देखते हैं ख्वाब में जिस दिन किसकी चश्मे मस्त।

देखते हैं ख्वाब में जिस दिन किसकी चश्मे मस्त, रहते हैं हम दो जहां से बेखबर दो दिन तलक। दिल का बदरंग लिबास भी बेहद खूबसूरत होता है जिसमें इश्क की ताबिश होती है। सूरज की चाहे फीकी या तेज धूप मिले सबसे ज्यादा चमक होती है उसमें, होती है कि नहीं होती। और इस मौसम में मैं तो कहता हूं कि ये जो मन का मौसम होता है ये कुछ ऊपर नीचे रहता है, कभी उदास तो कभी बहुत दूर तक उदास ही उदास, खुश तो संसार से परे तक खुश। इसीलिए तो कहता हूं कि ना उम्मीदगी हो या उम्मीद, यही है हर्फ आखिर। गर यकीन हो ये हमें आएगा तू दो दिन के बाद, तो जिए हम और इस उम्मीद पर दो दिन तलक। वैसे मैं आपको इंतजार तो कराता हूं पर वापस लौट आने के वादे के साथ, तो पल दो पल आप सुनते रहिए। इन पल दो पलों के बाद फिर से हाजिर हो जाएगा आपका निलय। आप हैं रेडियो ब्रिजवानी पर पल दो पल सुनते हुए मेरे साथ।

खुशामदीद, बहुत बहुत स्वागत आप सुन रहे हैं पल दो पल। इश्क की गलियां हैं यहाँ पर जहाँ हम घूम रहे हैं, हालांकि काफी संकरी होती हैं ये गलियां। जैसा कि कबीरदास जी ने भी कहा है कि प्रेम गली अति सांकरी, तामे दो न समाए। लेकिन आपके इस प्रेम की गली में मैं आपके साथ हमेशा आ जाऊंगा, फिट हो जाऊंगा। निलय मेरा नाम, बहुत सारे संगीत के साथ लौट आया हूँ रेडियो ब्रिस्वानी पर। वक्त की नामालूम सी छुअन के साथ लौटा हूं मैं, वो दुखाती है कि सहलाती है समझ ही नहीं आता। कभी किसी ने मुझसे कहा था कि संगीत हमेशा सुरूर में सुनना चाहिए, सुरूर जिसमें देह खुद एक ध्वनि यंत्र बन जाए, सारे साजों की झनकार भीतर से मीठे झरने सी फूट पड़े, राग कस्तूरी बन जाए और हम मृग, संगीत बन जाए एक बड़ा समंदर जिसमें हम मछली से तैरते फिरें। लेकिन अगर इश्क हो तो क्या ही बात हो, क्या बात हो जनाब। अभी तो और भी बातें होंगी, मुलाकातें होंगी, लेकिन एक ब्रेक तो यहां पर बनता है। तो ये एक छोटा सा म्यूजिकल ब्रेक आ रहा है, लुत्फ उठाइए इस ब्रेक का, इन बेहतरीन नगमों का, और वापस मेरी बातों का भी अगर लुत्फ उठाना है तो लौट कर आइएगा पल दो पल के बाद, पल दो पल में ही।

यूं हुआ मुझे पहला इश्क, यूं हुआ मुझे पहला इश्क संगीत से और संगीत सुनना सिखाने वालों से। लेकिन उसने ये नहीं कहा था कि इश्क की स्मृतियों से भी पैदा हो जाता है एक गहरा सुरूर। ये मैंने खुद जान लिया था विरह में संगीत सुनते हुए। संगीत की बात लेकर लौट आया हूं मैं पल दो पल के लिए आपके पास। नाम है मेरा निलय, आप सुन रहे हैं रेडियो बरसवानी। संगीत की बात इसलिए है क्योंकि संगीत ही है जो हमको आपसे जोड़ता है कि नहीं, कनेक्ट करता है। वैसे मैंने नोटिस किया और आपने भी किया होगा कि जब भी विरह वेदना में होते हैं हम, मतलब हम जब अपने प्यार से दूर होते हैं, जुदा होते हैं, तब संगीत सुनते हुए हम ज्यादा संगीत में डूबने लगते हैं, उसके शब्दों के अर्थों को समझने लगते हैं, म्यूजिक के हर नोट में अपने दर्द की धड़कन को महसूस करते हैं। करते हैं ना, संगीत से बहुत ज्यादा कनेक्ट होते हैं हम। मोहब्बत और संगीत का बहुत गहरा नाता होता है, इसलिए हमारे इस दीवाने शो में संगीत रहता ही है। आप हैं पल दो पल पर निलय के साथ। कुछ कहना चाहें तो जरूर हमें बताएगा रेडियो ब्रिसवानी के इसी प्रोग्राम के दौरान। मैं इंतजार करूंगा।

फरियाद की कोई लय नहीं है, नाला पाबंदे नय नहीं है, हर चंद एक शय में तू है, पर तुझसी कोई शय नहीं है। समझ गए आप? मैं निलय आपसे किसकी बात कर रहा हूं ये समझे कि नहीं आप? इस दुनिया का सबसे बड़ा शायर जिसने मोहब्बत के चिराग जलाए, जिसने कहा सजदे में न गए तो शिकवा भी न किया कोई। जी हाँ, दीवानगी का हमनाम महबूब शायर मिर्जा गालिब। आज उसी इश्क परस्त के नाम मैं आपको सुनाता हूं। अब जब उनकी बात होती है तो इश्क जो है वो खुद ब खुद चला आता है। मैं कुछ अर्ज कर दूं। कहते हो न देंगे हम दिल अगर पड़ा पाया, गालिब साहब ने लिखा है कि कहते हो न देंगे हम दिल अगर पड़ा पाया, दिल कहां के गुम कीजिए, हमने मुद्दा पाया। इश्क से तबीयत ने जीस्त का मजा पाया, दर्द की दवा पाई, दर्द बेदवा पाया। मिर्जा गालिब थे। उन्होंने इश्क को हर लम्हा जिया, दर्द को हर लम्हा जिया। आज उन्हीं के जरिए इश्क और दर्द बांट रहे हैं हम आपके साथ।

होगा, ग्रुप भी होगा और फीजी का फ्लेवर भी फुल ऑन होगा। ब्रिस्बेन तैयार हो जाओ। क्यूब ऑफ 2026 सॉकर टूर्नामेंट प्रेजेंटेड बाय क्वींसलैंड फीजी फुटबॉल एसोसिएशन। टूर्नामेंट होगा संडे 31 मई और थर्सडे 4 जून से संडे 7 जून तक एट अकाशिया रिज सॉकर क्लब, 174 मॉर्टिमर रोड, अकाशिया रिज 4110। ग्राउंड पे चलेगा फुल सॉकर कटेशन, ओपन्स, मास्टर्स एंड लेजेंड्स। हर मैच में एनर्जी, एक्साइटमेंट और क्राउड का शोर। और भाई खाने का सीन तो और भी डेंजरस है। फीजी स्टाइल बारबेक्यू, स्पाइसी डक करी, यम्मी पुलाव और ठंडी ठंडी फीजी आइस ब्लॉक। तो इन डेट्स पर घर पे मत बैठना, फैमिली फ्रेंड्स के साथ आ जाना क्यूबॉन्ग सॉकर टूर्नामेंट 2026 में। ज्यादा जानकारी के लिए कॉल करें अब्दुल रहीम 0423-342-272 या फिर सेक्रेटरी रे अली 0413-868-240 और विजिट करो brisbane.com के इवेंट सेक्शन में। क्यूबॉन्ग 2026 आपका इंतजार रहेगा।

वो सजदा ही क्या जिसमें सर उठाने का होश रहे। इजहारे इश्क का मजा तो तब है जब मैं खामोश रहूं तू बेचैन रहे। पल दो पल आप सुन रहे हैं निलय के साथ रेडियो ब्रिस्वानी पर, वेलकम बैक। और हमारे मिर्जा हमारे साथ हैं, मिर्जा गालिब साहब। इश्क में सजदे का जितना असर होता है ना, अक्सर हम मन्नतों के लिए किसी न किसी पीर की मजार टटोलते हैं, दरवेश का दर खटखटाते हैं। हर एक शहर में ऐसी कोई मीनार या मंदिर तो होता ही है हिंदुस्तान में, जो किसी प्रेमी के लिए खास होता है। कहते हैं कि वहां अगर आप अपने दिल की मुरादें मांगें, आप अपना प्यार मांगें, तो वो आपको मिलता ही है, मिल जाता है। ऐसा हिंदुस्तान के ऑलमोस्ट हर कस्बे में, हर शहर में कोई ना कोई जगह है ही। तो इसी बात पर अर्ज कर देता हूं कि गर मोहब्बत एक इबादत है, मुलाहिजा फरमाइएगा, गर मोहब्बत एक इबादत है तो मोहब्बत के लिए भी इबादत है। अभी एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपसे जब मिलेंगे तो आपसे बहुत सारी और भी बातें करेंगे जो मोहब्बत की हैं, सुरीली सी हैं। मैं उन्हें ले आपके साथ रेडियो ब्रिस्वानी पर, कीप लिसनिंग, कीप एंजॉयिंग।

मेरा गलियों गलियों चर्चा तो सुना ही होगा आपने। मेरा नाम है निलय। नहीं, प्यार करने वालों का चर्चा होता ही है आजकल। तेरे मेरे प्यार के चर्चे हर जुबान पर। बस ऐसे ही प्यार करने वालों के चर्चे शहर में हर जुबान पर होते हैं, हर गली में होते हैं, हर मोहल्ले में होते हैं। शहर की रगों में बहते हुए मुझे महसूस किया होगा आपने भी। इश्कों में, शहर की धड़कनों में भी मैं हूं। मोहब्बत की बातें, नज़में, तराने, गाने, सब में मैं हूं। मिर्जा गालिब साहब की चंद शेर के साथ मैं फिर से हाजिर हूं रेडियो ब्रिजवानी पर। अरे पापा, आपको लग रहा होगा यार निलय खुद की तारीफ में कसीदे पढ़ रहे हैं पर मुझको इतना यकीन है कि आप मुझे महसूस कर ही रहे होंगे। करें ना, ये बहुत जरूरी है। आप मुझे महसूस कर रहे हैं तो मैं आप ही हूं, मैं अलग नहीं हूं, बस आप ही की फीलिंग हूं। तो जो आप सुन रहे हैं अपनी फीलिंग को सुन रहे हैं, तो जो मैं हूं वो आप हैं थोड़ा सा पेचीदा हो गया लेकिन कोई बात नहीं। कुछ अर्ज कर देता हूं इस बात पर कि तुम ना आए तो क्या सहर ना हुई, तुम ना आए तो क्या सहर ना हुई, हां मगर चैन से बसर ना हुई। मेरा नाला सुना जमाने ने, एक तुम हो जिसे खबर ना हुई। मिर्जा गालिब साहब के शेर के साथ आपको छोड़े जा रहा हूं और आपको कुछ और गीत सुनाने जा रहा हूं। आप उन्हें एंजॉय कीजिए। ब्रेक के बाद लौटेंगे, फिर मोहब्बत की कुछ और बातों को आगे बढ़ाएंगे। यह पल दो पल रेडियो ब्रिजवानी पर।

निलय के साथ आप सुन रहे हैं पल दो पल। वेलकम बैक। आज इस महफिल में मेरे साथ हैं मिर्जा गालिब साहब और बहुत ही खूबसूरत धुनें, बहुत सारे सुंदर से वादे, मुलाकातों के हसीन लम्हे, वफा बेवफा और इसके साथ ही कुछ अफसाने भी। तो अर्ज किया है कि तेरे वादे पे जिए हम तो ये जान छूट जाना। गालिब साहब का बहुत ही मशहूर शेर है कि तेरे वादे पे जिए हम तो ये जान झूठ जाना कि खुशी से मर न जाते अगर एतबार होता। कहूं किससे कि मैं क्या है कहूं किससे मैं कि क्या है, शबे गम बुरी बला है, मुझे क्या बुरा था मरना अगर एक बार होता। मोहब्बत में यही तो होता है, चाहे कितना भी दर्द हो हम उसे जीते भी हैं पूरा, उस दर्द में भी मजा है। क्या आपको नहीं लगता इश्क का दर्द हमें कितना भी सताए हम उसी में रहना चाहते हैं, कितना ही दिल दुखे हम दुख में दुखना ही चाहते हैं। अभी एक फिलहाल ब्रेक ले लेते हैं और ये मोहब्बत भरी बातें यूं ही जारी रखेंगे। रेडियो ब्रिजवानी पर आप सुन रहे हैं पल दो पल निलय के साथ।

पल दो पल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। रेडियो तरंगों के जरिए स्पीकर या फिर ईयरफोन्स के थ्रू आपके कानों में घुलते जा रहे हैं हम, यानी रेडियो ब्रिजवानी और मैं निलय। महसूस कीजिए हमें और हमनवा गालिब को। कहते हैं वो कि जहर मिलता ही नहीं मुझको सितमगर, वरना क्या कसम है तेरे मिलने की कि खा भी ना सकूं। कोई उम्मीद बर नहीं आती, कोई सूरत नजर नहीं आती, मौत का एक दिन मुअय्यन है, नींद क्यों रात भर नहीं आती। आगे आती थी हाल दिल पे हंसी, अब किसी बात पर नहीं आती। है कुछ ऐसी ही बात जो चुप हूं, वरना क्या बात कर नहीं आती। क्यों ना चीखूं कि याद करते हैं, मेरी आवाज गर नहीं आती। हम वहां हैं जहां से हमको भी कुछ हमारी खबर नहीं आती। मरते हैं आरजू में मरने की, मौत आती है पर नहीं आती। काबा किस मुंह से जाओगे गालिब, काबा किस मुंह से जाओगे गालिब, शर्म तुमको मगर नहीं आती। गालिब मैं हो गया है आज सारा रेडियो ब्रिस्वानी और आप तमाम सुनने वाले भी। गालिब की ये खूबसूरत बातें और मोहब्बत की बातें इन बेहतरीन तरानों के साथ जारी रखेंगे हम रेडियो ब्रिस्वानी पर। आप बने रहेगा, मैं उन्हें लौटता हूँ पल दो पल की इस महफिल में।

वेलकम बैक। रेडियो ब्रिस्वानी पर आप सुन रहे हैं निलय को पल दो पल के जरिए, और मोहब्बत बहुत सारी है यहाँ पर, ढेर सारी मोहब्बत। उसी के साथ मैं एक बार फिर से हाजिर हो गया हूँ और अर्ज कर रहा हूँ आपके लिए कि है बस के हर एक उनके इशारे में निशा, और करते हैं मोहब्बत जो गुजरता है गुमा, और दिल से तेरी निगाह जिगर तक उतर गई, दोनों को एक अदा में रजामंद कर गई। वो बादाए शबाना की सरमस्तियां कहां, उठिए अब बस के लज्जते ख्वाबे सहर गई। देखो तो दिल फरेबी ये अंदाज नक्श पा, देखो तो दिल फरेबी ये अंदाज नक्श पा, मौजे खिराम यार भी क्या गुल कतर गई। नजारे ने भी काम किया वां नकाब का, मस्ती से हर निगाह तेरे रुख पर बिखर गई। मारा जमाने ने असदुल्ला खां तुम्हें, गलब साहब का नाम असदुल्ला खां था, लिखते हैं कि मारा जमाने ने असदुल्ला खां तुम्हें, वो वलवले कहां वो जवानी किधर गई। वाह क्या बात है। इसके बाद एक खूबसूरत म्यूजिकल ब्रेक तो बनता है। गालिब साहब, मैं और आप, ये सब हैं रेडियो ब्रिस्वानी की इस महफिल में जिसका नाम है पल दो पल। लौटता हूं पल दो पल बाद।

लीजिए एक बार फिर से लौट आया हूँ मैं निलय, लौट कर आपका स्वागत कर रहा हूँ। रेडियो प्रेसवाणी के जरिए आप सुन रहे हैं पल दो पल, मगर वक्त के सितम भी बयां करना चाहता हूँ। देखिए ना कैसे कह रहा है, जाना होगा। लेकिन अगले रविवार का वादा करके जा रहा हूँ, लौटूंगा तो और भी कई बातें होंगी जरूर आपसे। आप बस एक काम कीजिएगा, मुझे अपने पयाम अपने पैगाम भेजते रहेगा। चलता हूँ, फिर होगी मुलाकात अगले इतवार। लेकिन जाते जाते कुछ आपके लिए अर्ज कर जाता हूँ कि हमारा दिल सवेरे का सुनहरा जाम हो जाए, चरागों की तरह आंखें जलें जब शाम हो जाए, कभी तो आसमां से चांद उतरे जाम हो जाए, तुम्हारे नाम की एक खूबसूरत शाम हो जाए, उजाले अपनी यादों के हमारे साथ रहने दो, न जाने किस गली में जिंदगी की शाम हो जाए। बाय, नमस्कार, खुदा हाफिज।

0: कंटेनर्स फॉर चेंज के माध्यम से अपने खाली डिब्बे बोतलों से धनराशि कमाएं। आपके प्रत्येक योग्य खाली कैन बोतल और कार्टन पर 10 सेंट का रिफंड प्राप्त होता है। इसे हम बिन कॉइन कहते हैं। अपने बिन कॉइन की बचत करके रखें, खर्च करें या जिस उद्देश्य में आपका विश्वास है उसमें दान करें। आपके नजदीक कहीं एक कंटेनर्स फॉर चेंज मौजूद है, बैंक में डालें ना कि कूड़ेदान में। अपना सबसे नजदीकी रिफंड पॉइंट ढूंढने के लिए वेबसाइट पर जाएं और आज ही 10 सेंट कमाना शुरू करें।
1: अनुज, कोई अच्छा सा लॉयर सजेस्ट करो ना, ऐसा जो मेरी सारी बात ढंग से सुने, समझे और फिर मेरे तरीके से मुझे समझाए।
2: अरशाद लॉयर्स है तुम्हारी प्रॉब्लम का सलूशन। कमर्शियल मैटर हो, जैसे लीज का मामला, बिजनेस हो या फिर घरों की बाइंग सेलिंग का

0: पास वाले शॉप से ले सकते हैं ना?
1: यस बेबी, बट नो कॉम्प्रोमाइज विद क्वालिटी एंड हेल्थ। हम जाएंगे सिर्फ MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड।
0: ऐसा क्या खास है वहाँ?
1: सब कुछ, क्वालिटी स्पाइसेस, लेंटिल्स, राइस, फ्लावर और फ्रोजन सब्जी फ्रॉम फिजी एंड इंडिया। ब्रिस्बेन के बेस्ट इंडियन बुचर सप्लाइंग फार्म फ्रेश गोट, लैम, चिकन एंड डक और फ्रेश लोकल प्रोड्यूस भी रखते हैं। साथ ही किचनवेयर एंड डिस्पोजेबल प्लेट्स की लार्ज रेंज किसी भी फंक्शन के लिए।
0: अरे वाह, इंटेलिजेंट हो गई हो।
1: MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड, serving Brisbane since 1999. Open 7 days. Find us on Facebook or visit website mcsfoods.com.au. 1/268 Kingston Road, Slacks Creek, phone number 3804-3818. That's 3804-3818.
2: ओए राहुल, विरे तेरे केस दा की होया?
3: ओ यारा, मैं बहुत worried हूँ। I actually want an experienced lawyer to handle my case.
2: Go for the best, Vire. Atul Bhardwaj ji nu ajji contact karo. Ona de kol vast experience aa. Te law di intricacies nu handle karan ch vi o expert han. Criminal law, domestic violence, traffic drug offense vich 12 saal to vadh da rich experience. Te conveyance, family law, immigration laws vich vi Bhardwaj and Associates de lawyers da vast experience aa. And the best point, they understand the stress that you go through and work effectively to minimize it.
3: Thanks a ton, Vire. I'm so relaxed to hear that.
2: Don't risk your life. Talk to Atul before you talk to police. Ajji contact karo Atul Jino on 0400-234-235. That is 0400-234-235.
4: Earn money from your empty drink containers with Containers for Change. Your empty eligible cans, bottles and cartons receive a 10 cents refund each. We call it Bincoin. Save, spend or donate your Bincoin to a cause you support. There's a Containers for Change near you. Bank it, don't bin it. Visit the website to find your nearest refund point and start trading for 10 cents today.

0: अनुज, कोई अच्छा सा लॉयर सजेस्ट करो ना, ऐसा जो मेरी सारी बात ढंग से सुने, समझे और फिर मेरे तरीके से मुझे समझाए।
1: अरशाद लॉयर्स है तुम्हारी प्रॉब्लम का सलूशन। कमर्शियल मैटर हो, जैसे लीज का मामला, बिजनेस हो या फिर घरों की बाइंग सेलिंग का मामला, और डिवोर्स जैसे फैमिली मैटर्स भी, वो सब में मदद कर सकती हैं। और फिक्र करने की जरूरत नहीं है, अदालत तक तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे। अभी फोन करो 0420-933-171 पर और 15 मिनट का फ्री फोन कंसल्टेशन ले लो।
0: अरे वाह, इनका पता बताना।
1: अरशाद लॉयर्स, माउंट ग्रेविट शोग्राउंड्स, ऑफिस 5, 1644 लोगन रोड, माउंट ग्रेविट, एम्पल पार्किंग। कॉल अरशाद फ्रॉम अरशाद लॉयर्स नाउ ऑन 0420-933-171। वेबसाइट www.arshadlawyers.com। We pride ourselves in providing excellent service.
2: कंटेनर्स फॉर चेंज के माध्यम से अपने खाली डिब्बे बोतलों से धनराशि कमाएं। आपके प्रत्येक योग्य खाली कैन, बोतल और कार्टन पर 10 सेंट का रिफंड प्राप्त होता है। इसे हम बिन कॉइन कहते हैं। अपने बिन कॉइन की बचत करके रखें, खर्च करें या जिस उद्देश्य में आपका विश्वास है उसमें दान करें। आपके नजदीक कहीं एक कंटेनर्स फॉर चेंज मौजूद है, बैंक में डालें ना कि कूड़ेदान में। अपना सबसे नजदीकी रिफंड पॉइंट ढूंढने के लिए वेबसाइट पर जाएं और आज ही 10 सेंट कमाना शुरू करें।
3: यार राहुल, तेरे केस का क्या हुआ?
4: यार I'm so worried. Actually want an experienced lawyer to handle my case.
3: मेरी एडवाइस है, go for the best. अतुल भारद्वाज जी है ना, उनके पास 12 साल से ज्यादा का वास्ट एक्सपीरियंस है और लॉ की एंट्री केसेस को हैंडल करने में उनकी एक्सपर्टीज है। क्रिमिनल लॉ, डोमेस्टिक ऑफेंस, ट्रैफिक ड्रग ऑफेंस में 12 साल से ज्यादा का रिच एक्सपीरियंस, और तो और कन्वेयंस, फैमिली लॉ, इमिग्रेशन लॉज में भी भारद्वाज एंड एसोसिएट्स के लॉयर्स का वास्ट एक्सपीरियंस है। एंड द बेस्ट पॉइंट, दे अंडरस्टैंड द स्ट्रेस दैट यू गो थ्रू एंड वर्क इफेक्टिवली टू मिनिमाइज इट।
4: थैंक्स अटर्नी यार, आई एम सो रिलैक्स्ड टू हियर दैट।
3: Don't risk your life. Talk to Atul before you talk to police. Contact Atul now on 0400-234-235. That is 0400-234-235.

0: कंटेनर्स फॉर चेंज के माध्यम से अपने खाली डिब्बे बोतलों से धनराशि कमाएं। आपके प्रत्येक योग्य खाली कैन बोतल और कार्टन पर 10 सेंट का रिफंड प्राप्त होता है। इसे हम बिन कॉइन कहते हैं। अपने बिन कॉइन की बचत करके रखें, खर्च करें या जिस उद्देश्य में आपका विश्वास है उसमें दान करें। आपके नजदीक कहीं एक कंटेनर्स फॉर चेंज मौजूद है, बैंक में डालें ना कि कूड़ेदान में। अपना सबसे नजदीकी रिफंड पॉइंट ढूंढने के लिए वेबसाइट पर जाएं और आज ही 10 सेंट कमाना शुरू करें।
1: अनुज, कोई अच्छा सा लॉयर सजेस्ट करो ना, ऐसा जो मेरी सारी बात ढंग से सुने, समझे और फिर मेरे तरीके से मुझे समझाए।
2: अर्शाद लॉयर्स है तुम्हारी प्रॉब्लम का सलूशन। कमर्शियल मैटर हो, जैसे लीज का मामला, बिजनेस हो या फिर घरों की बाइंग सेलिंग का मामला, और डिवोर्स जैसे फैमिली मैटर्स भी, वो सब में मदद कर सकती हैं। और फिक्र करने की जरूरत नहीं है, अदालत तक तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे। अभी फोन करो 0420-933-171 पर और 15 मिनट का फ्री फोन कंसल्टेशन ले लो।
1: अरे वाह, इनका पता बताना।
2: अर्शाद लॉयर्स, माउंट ग्रेविट शोग्राउंड्स, ऑफिस 5, 1644 लोगन रोड, माउंट ग्रेविट, एम्पल पार्किंग। कॉल अर्शाद फ्रॉम अर्शाद लॉयर्स नाउ ऑन 0420-933-171। वेबसाइट www.arshadlawyers.com। We pride ourselves in providing excellent service.
3: Are you ready to stop renting and thinking about owning one? Or maybe an investor looking to invest? Then think no more, and it is time to build your future in upcoming house and land packages available in Oxley, Breckenridge, Morgill and surrounding areas in Brisbane, Queensland. It is the great Australian dream. Homes built strong, smart and built to last. If you are ready to make the move, then don't wait till tomorrow. Call agent John Lawla on 0404-004-899. Yes, it's 0404-004-899. And quote code word Briswani. Your new home waiting for you in Oxley, Breckenridge, Morgill and surrounding areas in Brisbane, Queensland.

0: अनुज, कोई अच्छा सा लॉयर सजेस्ट करो ना, ऐसा जो मेरी सारी बात ढंग से सुने, समझे और फिर मेरे तरीके से मुझे समझाए।
1: अर्शाद लॉयर्स है तुम्हारी प्रॉब्लम का सलूशन। कमर्शियल मैटर हो जैसे लीज का मामला, बिजनेस हो या फिर घरों की बाइंग सेलिंग का मामला, और डिवोर्स जैसे फैमिली मैटर्स भी, वो सब में मदद कर सकती हैं। और फिक्र करने की जरूरत नहीं है, अदालत तक तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे। अभी फोन करो 0420-933-171 पर और 15 मिनट का फ्री फोन कंसल्टेशन ले लो।
0: अरे वाह, इनका पता बताना।
1: अर्शाद लॉयर्स, माउंट ग्रेविट शोग्राउंड्स, ऑफिस 5, 1644 लोगन रोड, माउंट ग्रेविट, एम्पल पार्किंग। कॉल अर्शाद फ्रॉम अर्शाद लॉयर्स नाउ ऑन 0420-933-171। वेबसाइट www.arshadlawyers.com। We pride ourselves in providing excellent service.
2: Containers for Change के माध्यम से अपने खाली डिब्बे बोतलों से धनराशि कमाएं। आपके प्रत्येक योग्य खाली कैन, बोतल और कार्टन पर 10 सेंट का रिफंड प्राप्त होता है। इसे हम बिन कॉइन कहते हैं। अपने बिन कॉइन की बचत करके रखें, खर्च करें या जिस उद्देश्य में आपका विश्वास है उसमें दान करें। आपके नजदीक कहीं एक कंटेनर्स फॉर चेंज मौजूद है। बैंक में डालें, ना कि कूड़ेदान में। अपना सबसे नजदीकी रिफंड पॉइंट ढूंढने के लिए वेबसाइट पर जाएं और आज ही 10 सेंट कमाना शुरू करें।
3: यार राहुल, तेरे केस का क्या हुआ?
4: यार, I'm so worried. Actually, want an experienced lawyer to handle my case.
3: मेरी एडवाइस है, go for the best. अतुल भारद्वाज जी है ना, उनके पास 12 साल से ज्यादा का वास्ट एक्सपीरियंस है और लॉ की एंट्री केसेस को हैंडल करने में उनकी एक्सपर्टीज है। क्रिमिनल लॉ, डोमेस्टिक ऑफेंस, ट्रैफिक ड्रग ऑफेंस में 12 साल से ज्यादा का रिच एक्सपीरियंस, और तो और कन्वेयंस, फैमिली लॉ, इमिग्रेशन लॉज में भी भारद्वाज एंड एसोसिएट्स के लॉयर्स का वास्ट एक्सपीरियंस है। एंड द बेस्ट पॉइंट, दे अंडरस्टैंड द स्ट्रेस दैट यू गो थ्रू एंड वर्क इफेक्टिवली टू मिनिमाइज इट।
4: थैंक्स अटर्नी, आई एम सो रिलैक्स्ड टू हियर दैट।
3: Don't risk your life. Talk to Atul before you talk to police. Contact Atul now on 0400-234-235. That is 0400-234-235.

0: कंटेनर्स फॉर चेंज के माध्यम से अपने खाली डिब्बे बोतलों से धनराशि कमाएं। आपके प्रत्येक योग्य खाली कैन बोतल और कार्टन पर 10 सेंट का रिफंड प्राप्त होता है। इसे हम बिन कॉइन कहते हैं। अपने बिन कॉइन की बचत करके रखें, खर्च करें या जिस उद्देश्य में आपका विश्वास है उसमें दान करें। आपके नजदीक कहीं एक कंटेनर्स फॉर चेंज मौजूद है, बैंक में डालें ना कि कूड़ेदान में। अपना सबसे नजदीकी रिफंड पॉइंट ढूंढने के लिए वेबसाइट पर जाएं और आज ही 10 सेंट कमाना शुरू करें।
1: अनुज, कोई अच्छा सा लॉयर सजेस्ट करो ना, ऐसा जो मेरी सारी बात ढंग से सुने, समझे और फिर मेरे तरीके से मुझे समझाए।
2: अर्शाद लॉयर्स है तुम्हारी प्रॉब्लम का सलूशन। कमर्शियल मैटर हो, जैसे लीज का मामला, बिजनेस हो या फिर घरों की बाइंग सेलिंग का मामला, और डिवोर्स जैसे फैमिली मैटर्स भी, वो सब में मदद कर सकती हैं। और फिक्र करने की जरूरत नहीं है, अदालत तक तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे। अभी फोन करो 0420-933-171 पर और 15 मिनट का फ्री फोन कंसल्टेशन ले लो।
1: अरे वाह, इनका पता बताना।
2: अर्शाद लॉयर्स, माउंट ग्रेविट शोग्राउंड्स, ऑफिस 5, 1644 लोगन रोड, माउंट ग्रेविट, एम्पल पार्किंग। कॉल अर्शाद फ्रॉम अर्शाद लॉयर्स नाउ ऑन 0420-933-171। वेबसाइट www.arshadlawyers.com। We pride ourselves in providing excellent service.
3: Are you ready to stop renting and thinking about owning one? Or maybe an investor looking to invest? Then think no more, and it is time to build your future in upcoming house and land packages available in Oxley, Breckenridge, Moggill and surrounding areas in Brisbane, Queensland. It is the great Australian dream. Homes built strong, smart and built to last. If you are ready to make the move, then don't wait till tomorrow. Call agent John Lawla on 0404-004-899. Yes, it's 0404-004-899. And quote code word Briswani. Your new home waiting for you in Oxley, Breckenridge, Moggill and surrounding areas.

0: तुम कहाँ ले जा रही हो? ये ग्रोसरी पास वाले शॉप से ले सकते हैं ना?
1: Yes baby, but no compromise with quality and health. हम जाएंगे सिर्फ MC's Indian and Island Food.
0: ऐसा क्या खास है वहाँ?
1: सब कुछ, quality spices, lentils, rice, flour और frozen सब्जी from Fiji and India. Brisbane के best Indian butcher supplying farm fresh goat, lamb, chicken and duck और fresh local

0: प्रोड्यूस भी रखते हैं, साथ ही किचनवेयर एंड डिस्पोजेबल प्लेट्स की लार्ज रेंज किसी भी फंक्शन के लिए।
1: अरे वाह, इंटेलिजेंट हो गई हो।
0: MC's Indian and Island Food, serving Brisbane since 1999. Open 7 days. Find us on Facebook or visit website mcsfoods.com.au. 1/268 Kingston Road, Slacks Creek, phone number 3804-3818. That's 3804-3818.
2: ओए राहुल, विरे तेरे केस दा की होया?
3: ओ यारा, मैं बहुत वरीड हां। I actually want an experienced lawyer to handle my case.
2: Go for the best विरे। अतुल भारद्वाज जी नु अज ही कांटेक्ट करो। ओना दे कोल वास्ट एक्सपीरियंस आ ते लॉ दी एंट्री केसेस नु हैंडल करन च भी ओ एक्सपर्ट हन। क्रिमिनल लॉ, डोमेस्टिक वायलेंस, ट्रैफिक ड्रग ऑफेंस विच 12 साल तो वद्दा रिच एक्सपीरियंस ते कन्वेयंस, फैमिली लॉ, इमिग्रेशन लॉज विच भी भारद्वाज एंड एसोसिएट्स दे लॉयर्स दा वास्ट एक्सपीरियंस आ। एंड द बेस्ट पॉइंट, they understand the stress that you go through and work effectively to minimize it.
3: Thanks a ton, Vire. I'm so relaxed to hear that.
2: Don't risk your life. Talk to Atul before you talk to police. Ajji contact karo Atul Jino on 0400-234-235. That is 0400-234-235.
4: Earn money from your empty drink containers with Containers for Change. Your empty eligible cans, bottles and cartons receive a 10 cents refund each. We call it Bincoin. Save, spend or donate your Bincoin to a cause you support. There's a Containers for Change near you. Bank it, don't bin it. Visit the website to find your nearest refund point and start trading for 10 cents today.

0: अनुज कोई अच्छा सा लॉयर सजेस्ट करो ना, ऐसा जो मेरी सारी बात ढंग से सुने समझे और फिर मेरे तरीके से मुझे समझाए।
1: अर्शाद लॉयर्स है तुम्हारी प्रॉब्लम का सलूशन। कमर्शियल मैटर हो जैसे लीज का मामला, बिजनेस हो या फिर घरों की बाइंग सेलिंग का मामला, और डिवोर्स जैसे फैमिली मैटर्स भी, वो सब में मदद कर सकती हैं। और फिक्र करने की जरूरत नहीं है, अदालत तक तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे। अभी फोन करो 0420-933-171 पर और 15 मिनट का फ्री फोन कंसल्टेशन ले लो।
0: अरे वाह, इनका पता बताना।
1: अर्शाद लॉयर्स, माउंट ग्रेविट शो ग्राउंड, ऑफिस 5-1644 लोगन रोड, माउंट ग्रेविट, एम्पल पार्किंग। कॉल अर्शाद फ्रॉम अर्शाद लॉयर्स नाउ ऑन 0420-933-171। वेबसाइट www.arshadlawyers.com। We pride ourselves in providing excellent service.
2: Containers for Change के माध्यम से अपने खाली डिब्बे बोतलों से धनराशि कमाएं। आपके प्रत्येक योग्य खाली कैन, बोतल और कार्टन पर 10 सेंट का रिफंड प्राप्त होता है। इसे हम बिन कॉइन कहते हैं। अपने बिन कॉइन की बचत करके रखें, खर्च करें या जिस उद्देश्य में आपका विश्वास है उसमें दान करें। आपके नजदीक कहीं एक कंटेनर्स फॉर चेंज मौजूद है। बैंक में डालें ना कि कूड़ेदान में। अपना सबसे नजदीकी रिफंड पॉइंट ढूंढने के लिए वेबसाइट पर जाएं और आज ही 10 सेंट कमाना शुरू करें।
3: यार राहुल, तेरे केस का क्या हुआ?
4: यार I'm so worried. Actually want an experienced lawyer to handle my case.
3: मेरी एडवाइस है go for the best. अतुल भारद्वाज जी है ना, उनके पास 12 साल से ज्यादा का वास्ट एक्सपीरियंस है और लॉ की एंट्री केसेस को हैंडल करने में उनकी एक्सपर्टीज है। क्रिमिनल लॉ, डोमेस्टिक ऑफेंस, ट्रैफिक ड्रग ऑफेंस में 12 साल से ज्यादा का रिच एक्सपीरियंस, और तो और कन्वेयंस, फैमिली लॉ, इमिग्रेशन लॉज में भी भारद्वाज एंड एसोसिएट्स के लॉयर्स का वास्ट एक्सपीरियंस है। एंड द बेस्ट पॉइंट, दे अंडरस्टैंड द स्ट्रेस दैट यू गो थ्रू एंड वर्क इफेक्टिवली टू मिनिमाइज इट।
4: थैंक्स अटनियर, आई एम सो रिलैक्स्ड टू हियर दैट।
3: Don't risk your life. Talk to Atul before you talk to police. Contact Atul now on 0400-234-235. That is 0400-234-235.

0: कंटेनर्स फॉर चेंज के माध्यम से अपने खाली डिब्बे बोतलों से धनराशि कमाएं। आपके प्रत्येक योग्य खाली कैन बोतल और कार्टन पर 10 सेंट का रिफंड प्राप्त होता है। इसे हम बिन कॉइन कहते हैं। अपने बिन कॉइन की बचत करके रखें, खर्च करें या जिस उद्देश्य में आपका विश्वास है उसमें दान करें। आपके नजदीक कहीं एक कंटेनर्स फॉर चेंज मौजूद है, बैंक में डालें न कि कूड़ेदान में। अपना सबसे नजदीकी रिफंड पॉइंट ढूंढने के लिए वेबसाइट पर जाएं और आज ही 10 सेंट कमाना शुरू करें।
1: अनुज, कोई अच्छा सा लॉयर सजेस्ट करो ना, ऐसा जो मेरी सारी बात ढंग से सुने, समझे और फिर मेरे तरीके से मुझे समझाए।
2: अरशाद लॉयर्स है तुम्हारी प्रॉब्लम का सलूशन। कमर्शियल मैटर हो, जैसे लीज का मामला, बिजनेस हो या फिर घरों की बाइंग सेलिंग का मामला, और डिवोर्स जैसे फैमिली मैटर्स भी, वो सब में मदद कर सकती हैं। और फिक्र करने की जरूरत नहीं है, अदालत तक तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे। अभी फोन करो 0420-933-171 पर और 15 मिनट का फ्री फोन कंसल्टेशन ले लो।
1: अरे वाह, इनका पता बताना।
2: अरशाद लॉयर्स, माउंट ग्रेविट शोग्राउंड्स, ऑफिस 5, 1644 लोगन रोड, माउंट ग्रेविट, एम्पल पार्किंग। कॉल अरशाद फ्रॉम अरशाद लॉयर्स नाउ ऑन 0420-933-171। वेबसाइट www.arshadlawyers.com। We pride ourselves in providing excellent service.
3: Are you ready to stop renting and thinking about owning one? Or maybe an investor looking to invest? Then think no more, and it is time to build your future in upcoming house and land packages available in Oxlade, Breckenridge, Moggill and surrounding areas in Brisbane, Queensland. It is the great Australian dream. Homes built strong, smart and built to last. If you are ready to make the move, then don't wait till tomorrow. Call agent John Lawla on 0404-004-899. Yes, it's 0404-004-899. And quote code word Briswani. Your new home waiting for you in Oxley, Breckenridge, Moggill and surrounding areas in Brisbane, Queensland.

0: हनी, ये तुम कहाँ ले जा रही हो? ये ग्रोसरी पास वाले शॉप से ले सकते हैं ना?
1: यस बेबी, बट नो कॉम्प्रोमाइज विद क्वालिटी एंड हेल्थ। हम जाएंगे सिर्फ MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड।
0: ऐसा क्या खास है वहाँ?
1: सब कुछ, क्वालिटी स्पाइसेस, लेंटिल्स, राइस, फ्लावर और फ्रोजन सब्जी फ्रॉम फिजी एंड इंडिया। ब्रिस्बेन के बेस्ट इंडियन बुचर सप्लाइंग फार्म फ्रेश गोट, लैम्ब, चिकन एंड डक और फ्रेश लोकल प्रोड्यूस भी रखते हैं। साथ ही किचनवेयर एंड डिस्पोजेबल प्लेट्स की लार्ज रेंज किसी भी फंक्शन के लिए।
0: अरे वाह, इंटेलिजेंट हो गई हो।
1: MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड, सर्विंग ब्रिस्बेन सिंस 1999, ओपन 7 डेज। फाइंड अस ऑन फेसबुक और विजिट वेबसाइट mcsfoods.com.au। 1/268 किंगस्टन रोड, स्लैक्स क्रीक, फोन नंबर 3804-3818। दैट्स 3804-3818।
2: ओए राहुल, वीरे तेरे केस दा की होया?
3: ओ यार, मैं बहुत वरीड हूं। I actually want an experienced lawyer to handle my case.
2: Go for the best, Vire. Atul Bhardwaj ji nu ajji contact karo. Ona de kol vast experience a. Te law di entry cases nu handle karan ji o expert han. Criminal law, domestic violence, traffic drug offense vich 12 saal to vadda rich experience. Te conveyance, family law, immigration laws vich vi Bhardwaj and Associates de lawyers da vast experience a. And the best point, they understand the stress that you go through and work effectively to minimize it.
3: Thanks a ton, Vire. I'm so relaxed to hear that.
2: Don't risk your life. Talk to Atul before you talk to police. Ajji contact karo Atul Jino on 0400-234-235. That is 0400-234-235.
4: Earn money from your empty drink containers with Containers for Change. Your empty eligible cans, bottles and cartons receive a 10 cents refund each. We call it Bincoin. Save, spend or donate your Bincoin to a cause you support. There's a Containers for Change near you. Bank it, don't bin it. Visit the website to find your nearest refund point and start trading for 10 cents today.

0: अनुज, कोई अच्छा सा लॉयर सजेस्ट करो ना, ऐसा जो मेरी सारी बात ढंग से सुने, समझे और फिर मेरे तरीके से मुझे समझाए।
1: अर्शाद लॉयर्स है तुम्हारी प्रॉब्लम का सलूशन। कमर्शियल मैटर हो, जैसे लीज का मामला, बिजनेस हो या फिर घरों की बाइंग सेलिंग का मामला, और डिवोर्स जैसे फैमिली मैटर्स भी, वो सब में मदद कर सकती हैं। और फिक्र करने की जरूरत नहीं है, अदालत तक तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे। अभी फोन करो 0420-933-171 पर और 15 मिनट का फ्री फोन कंसल्टेशन ले लो।
0: अरे वाह, इनका पता बताना।
1: अर्शाद लॉयर्स, माउंट ग्रेविट शोग्राउंड्स, ऑफिस 5, 1644 लोगन रोड, माउंट ग्रेविट, एम्पल पार्किंग। कॉल अर्शाद फ्रॉम अर्शाद लॉयर्स नाउ ऑन 0420-933-171। वेबसाइट www.arshadlawyers.com। We pride ourselves in providing excellent service.
2: कंटेनर्स फॉर चेंज के माध्यम से अपने खाली डिब्बे बोतलों से धनराशि कमाएं। आपके प्रत्येक योग्य खाली कैन, बोतल और कार्टन पर 10 सेंट का रिफंड प्राप्त होता है। इसे हम बिन कॉइन कहते हैं। अपने बिन कॉइन की बचत करके रखें, खर्च करें या जिस उद्देश्य में आपका विश्वास है उसमें दान करें। आपके नजदीक कहीं एक कंटेनर्स फॉर चेंज मौजूद है, बैंक में डालें ना कि कूड़ेदान में। अपना सबसे नजदीकी रिफंड पॉइंट ढूंढने के लिए वेबसाइट पर जाएं और आज ही 10 सेंट कमाना शुरू करें।
3: यार राहुल, तेरे केस का क्या हुआ?
4: यार आई एम सो वरीड, एक्चुअली वांट एन एक्सपीरियंस्ड लॉयर टू हैंडल माय केस।
3: मेरी एडवाइस है, गो फॉर द बेस्ट। अतुल भारद्वाज जी है ना, उनके पास 12 साल से ज्यादा का वास्ट एक्सपीरियंस है और लॉ की एंट्री केसेस को हैंडल करने में उनकी एक्सपर्टीज है। क्रिमिनल लॉ, डोमेस्टिक ऑफेंस, ट्रैफिक ड्रग ऑफेंस में 12 साल से ज्यादा का रिच एक्सपीरियंस, और तो और कन्वेयंस, फैमिली लॉ, इमिग्रेशन लॉज में भी भारद्वाज एंड एसोसिएट्स के लॉयर्स का वास्ट एक्सपीरियंस है। एंड द बेस्ट पॉइंट, दे अंडरस्टैंड द स्ट्रेस दैट यू गो थ्रू एंड वर्क इफेक्टिवली टू मिनिमाइज इट।
4: थैंक्स अटर्नी यार, आई एम सो रिलैक्स्ड टू हियर दैट।
3: Don't risk your life. Talk to Atul before you talk to police. Contact Atul now on 0400-234-235. That is 0400-234-235.

0: कंटेनर्स फॉर चेंज के माध्यम से अपने खाली डिब्बे बोतलों से धनराशि कमाएं। आपके प्रत्येक योग्य खाली कैन बोतल और कार्टन पर 10 सेंट का रिफंड प्राप्त होता है। इसे हम बिन कॉइन कहते हैं। अपने बिन कॉइन की बचत करके रखें, खर्च करें या जिस उद्देश्य में आपका विश्वास है उसमें दान करें। आपके नजदीक कहीं एक कंटेनर्स फॉर चेंज मौजूद है, बैंक में डालें ना कि कूड़ेदान में। अपना सबसे नजदीकी रिफंड पॉइंट ढूंढने के लिए वेबसाइट पर जाएं और आज ही 10 सेंट कमाना शुरू करें।
1: अनुज, कोई अच्छा सा लॉयर सजेस्ट करो ना, ऐसा जो मेरी सारी बात ढंग से सुने, समझे और फिर मेरे तरीके से मुझे समझाए।
2: अर्शाद लॉयर्स है तुम्हारी प्रॉब्लम का सलूशन। कमर्शियल मैटर हो, जैसे लीज का मामला, बिजनेस हो या फिर घरों की बाइंग सेलिंग का मामला, और डिवोर्स जैसे फैमिली मैटर्स भी, वो सब में मदद कर सकती हैं। और फिक्र करने की जरूरत नहीं है, अदालत तक तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे। अभी फोन करो 0420-933-171 पर और 15 मिनट का फ्री फोन कंसल्टेशन ले लो।
1: अरे वाह, इनका पता बताना।
2: अर्शाद लॉयर्स, माउंट ग्रेविट शोग्राउंड्स, ऑफिस 5, 1644 लोगन रोड, माउंट ग्रेविट, एम्पल पार्किंग। कॉल अर्शाद फ्रॉम अर्शाद लॉयर्स नाउ ऑन 0420-933-171। वेबसाइट www.arshadlawyers.com. We pride ourselves in providing excellent service.
3: Are you ready to stop renting and thinking about owning one? Or maybe an investor looking to invest? Then think no more, and it is time to build your future in upcoming house and land packages available in Oxley, Breckenridge, Morgill and surrounding areas in Brisbane, Queensland. It is the great Australian dream. Homes built strong, smart and built to last. If you are ready to make the move, then don't wait till tomorrow. Call agent John Lawla on 0404-004-899. Yes, it's 0404-004-899. And quote code word Briswani. Your new home waiting for you in Oxley, Breckenridge, Morgill and surrounding areas in Brisbane, Queensland.

0: अनुज, कोई अच्छा सा लॉयर सजेस्ट करो ना, ऐसा जो मेरी सारी बात ढंग से सुने, समझे और फिर मेरे तरीके से मुझे समझाए।
1: अर्शाद लॉयर्स है तुम्हारी प्रॉब्लम का सलूशन। कमर्शियल मैटर हो, जैसे लीज का मामला, बिजनेस हो या फिर घरों की बाइंग सेलिंग का मामला, और डिवोर्स जैसे फैमिली मैटर्स भी, वो सब में मदद कर सकती हैं। और फिक्र करने की जरूरत नहीं है, अदालत तक तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे। अभी फोन करो 0420-933-171 पर और 15 मिनट का फ्री फोन कंसल्टेशन ले लो।
0: अरे वाह, इनका पता बताना।
1: अर्शाद लॉयर्स, माउंट ग्रेविट शोग्राउंड्स, ऑफिस 5, 1644 लोगन रोड, माउंट ग्रेविट, एम्पल पार्किंग। कॉल अर्शाद फ्रॉम अर्शाद लॉयर्स नाउ ऑन 0420-933-171। वेबसाइट www.arshadlawyers.com। We pride ourselves in providing excellent service.
2: कंटेनर्स फॉर चेंज के माध्यम से अपने खाली डिब्बे बोतलों से धनराशि कमाएं। आपके प्रत्येक योग्य खाली कैन, बोतल और कार्टन पर 10 सेंट का रिफंड प्राप्त होता है। इसे हम बिन कॉइन कहते हैं। अपने बिन कॉइन की बचत करके रखें, खर्च करें या जिस उद्देश्य में आपका विश्वास है उसमें दान करें। आपके नजदीक कहीं एक कंटेनर्स फॉर चेंज मौजूद है। बैंक में डालें, ना कि कूड़ेदान में। अपना सबसे नजदीकी रिफंड पॉइंट ढूंढने के लिए वेबसाइट पर जाएं और आज ही 10 सेंट कमाना शुरू करें।
3: यार राहुल, तेरे केस का क्या हुआ?
4: यार, I'm so worried. Actually want an experienced lawyer to handle my case.
3: मेरी एडवाइस है, गो फॉर द बेस्ट। अतुल भारद्वाज जी है ना, उनके पास 12 साल से ज्यादा का वास्ट एक्सपीरियंस है और लॉ की एंट्री केसेस को हैंडल करने में उनकी एक्सपर्टीज है। क्रिमिनल लॉ, डोमेस्टिक ऑफेंस, ट्रैफिक ड्रग ऑफेंस में 12 साल से ज्यादा का रिच एक्सपीरियंस, और तो और कन्वेयंस, फैमिली लॉ, इमिग्रेशन लॉज में भी भारद्वाज एंड एसोसिएट्स के लॉयर्स का वास्ट एक्सपीरियंस है। एंड द बेस्ट पॉइंट, दे अंडरस्टैंड द स्ट्रेस दैट यू गो थ्रू एंड वर्क इफेक्टिवली टू मिनिमाइज इट।
4: थैंक्स अटनिया, आई एम सो रिलैक्स्ड टू हियर दैट।
3: Don't risk your life. Talk to Atul before you talk to police. Contact Atul now on 0400-234-235. That is 0400-234-235.

0: कंटेनर्स फॉर चेंज के माध्यम से अपने खाली डिब्बे बोतलों से धनराशि कमाएं। आपके प्रत्येक योग्य खाली कैन बोतल और कार्टन पर 10 सेंट का रिफंड प्राप्त होता है। इसे हम बिन कॉइन कहते हैं। अपने बिन कॉइन की बचत करके रखें, खर्च करें या जिस उद्देश्य में आपका विश्वास है उसमें दान करें। आपके नजदीक कहीं एक कंटेनर्स फॉर चेंज मौजूद है, बैंक में डालें ना कि कूड़ेदान में। अपना सबसे नजदीकी रिफंड पॉइंट ढूंढने के लिए वेबसाइट पर जाएं और आज ही 10 सेंट कमाना शुरू करें।
1: अनुज, कोई अच्छा सा लॉयर सजेस्ट करो ना, ऐसा जो मेरी सारी बात ढंग से सुने समझे और फिर मेरे तरीके से मुझे समझाए।
2: अर्शाद लॉयर्स है तुम्हारी प्रॉब्लम का सलूशन। कमर्शियल मैटर हो जैसे लीज का मामला, बिजनेस हो या फिर घरों की बाइंग सेलिंग का मामला, और डिवोर्स जैसे फैमिली मैटर्स भी, वो सब में मदद कर सकती हैं। और फिक्र करने की जरूरत नहीं है, अदालत तक तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे। अभी फोन करो 0420-933-171 पर और 15 मिनट का फ्री फोन कंसल्टेशन ले लो।
1: अरे वाह, इनका पता बताना।
2: अर्शाद लॉयर्स, माउंट ग्रेविट शो ग्राउंड, ऑफिस 5, 1644 लोगन रोड, माउंट ग्रेविट, एम्पल पार्किंग। कॉल अर्शाद फ्रॉम अर्शाद लॉयर्स नाउ ऑन 04।

0: अनुज, कोई अच्छा सा लॉयर सजेस्ट करो ना, ऐसा जो मेरी सारी बात ढंग से सुने, समझे और फिर मेरे तरीके से मुझे समझाए।
1: अर्शाद लॉयर्स है तुम्हारी प्रॉब्लम का सलूशन। कमर्शियल मैटर हो, जैसे लीज का मामला, बिजनेस हो या फिर घरों की बाइंग सेलिंग का मामला, और डिवोर्स जैसे फैमिली मैटर्स भी, वो सब में मदद कर सकती हैं। और फिक्र करने की जरूरत नहीं है, अदालत तक तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे। अभी फोन करो 0420-933-171 पर और 15 मिनट का फ्री फोन कंसल्टेशन ले लो।
0: अरे वाह, इनका पता बताना।
1: अर्शाद लॉयर्स, माउंट ग्रेविट शोग्राउंड्स, ऑफिस 5, 1644 लोगन रोड, माउंट ग्रेविट, एम्पल पार्किंग। कॉल अर्शाद फ्रॉम अर्शाद लॉयर्स नाउ ऑन 0420-933-171। वेबसाइट www.arshadlawyers.com। We pride ourselves in providing excellent service.
2: कंटेनर्स फॉर चेंज के माध्यम से अपने खाली डिब्बे बोतलों से धनराशि कमाएं। आपके प्रत्येक योग्य खाली कैन, बोतल और कार्टन पर 10 सेंट का रिफंड प्राप्त होता है। इसे हम बिन कॉइन कहते हैं। अपने बिन कॉइन की बचत करके रखें, खर्च करें या जिस उद्देश्य में आपका विश्वास है उसमें दान करें। आपके नजदीक कहीं एक कंटेनर्स फॉर चेंज मौजूद है। बैंक में डालें, ना कि कूड़ेदान में। अपना सबसे नजदीकी रिफंड पॉइंट ढूंढने के लिए वेबसाइट पर जाएं और आज ही 10 सेंट कमाना शुरू करें।
3: यार राहुल, तेरे केस का क्या हुआ?
4: यार, I'm so worried. Actually want an experienced lawyer to handle my case.
3: मेरी एडवाइस है, go for the best. अतुल भारद्वाज जी है ना, उनके पास 12 साल से ज्यादा का वास्ट एक्सपीरियंस है और लॉ की एंट्री केसेस को हैंडल करने में उनकी एक्सपर्टीज है। क्रिमिनल लॉ, डोमेस्टिक ऑफेंस, ट्रैफिक ड्रग ऑफेंस में 12 साल से ज्यादा का रिच एक्सपीरियंस, और तो और कन्वेयंस, फैमिली लॉ, इमिग्रेशन लॉज में भी भारद्वाज एंड एसोसिएट्स के लॉयर्स का वास्ट एक्सपीरियंस है। एंड द बेस्ट पॉइंट, दे अंडरस्टैंड द स्ट्रेस दैट यू गो थ्रू एंड वर्क इफेक्टिवली टू मिनिमाइज इट।
4: थैंक्स अटर्नी, आई एम सो रिलैक्स्ड टू हियर दैट।
3: Don't risk your life. Talk to Atul before you talk to police. Contact Atul now on 0400-234-235. That is 0400-234-235.

0: कंटेनर्स फॉर चेंज के माध्यम से अपने खाली डिब्बे बोतलों से धनराशि कमाएं। आपके प्रत्येक योग्य खाली कैन बोतल और कार्टन पर 10 सेंट का रिफंड प्राप्त होता है। इसे हम बिन कॉइन कहते हैं। अपने बिन कॉइन की बचत करके रखें, खर्च करें या जिस उद्देश्य में आपका विश्वास है उसमें दान करें। आपके नजदीक कहीं एक कंटेनर्स फॉर चेंज मौजूद है, बैंक में डालें ना कि कूड़ेदान में। अपना सबसे नजदीकी रिफंड पॉइंट ढूंढने के लिए वेबसाइट पर जाएं और आज ही 10 सेंट कमाना शुरू करें।
1: अनुज, कोई अच्छा सा लॉयर सजेस्ट करो ना, ऐसा जो मेरी सारी बात ढंग से सुने, समझे और फिर मेरे तरीके से मुझे समझाए।
2: अर्शाद लॉयर्स है तुम्हारी प्रॉब्लम का सलूशन। कमर्शियल मैटर हो, जैसे लीज का मामला, बिजनेस हो या फिर घरों की बाइंग सेलिंग का मामला, और डिवोर्स जैसे फैमिली मैटर्स भी, वो सब में मदद कर सकती हैं। और फिक्र करने की जरूरत नहीं है, अदालत तक तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे। अभी फोन करो 0420-933-171 पर और 15 मिनट का फ्री फोन कंसल्टेशन ले लो।
1: अरे वाह, इनका पता बताना।
2: अर्शाद लॉयर्स, माउंट ग्रेविट शोग्राउंड्स, ऑफिस 5, 1644 लोगन रोड, माउंट ग्रेविट, एम्पल पार्किंग। कॉल अर्शाद फ्रॉम अर्शाद लॉयर्स नाउ ऑन 0420-933-171। वेबसाइट www.arshadlawyers.com। We pride ourselves in providing excellent service.
3: Are you ready to stop renting and thinking about owning one? Or maybe an investor looking to invest? Then think no more, and it is time to build your future in upcoming house and land packages available in Oxley, Breckenridge, Morgill and surrounding areas in Brisbane, Queensland. It is the great Australian dream. Homes built strong, smart and built to last. If you are ready to make the move, then don't wait till tomorrow. Call agent John Lawla on 0404-004-899. Yes, it's 0404-004-899. And quote code word Briswani. Your new home waiting for you in Oxley, Breckenridge, Morgill and surrounding areas in Brisbane, Queensland.

0: हनी, ये तुम कहाँ ले जा रही हो? ये ग्रोसरी पास वाले शॉप से ले सकते हैं ना?
1: यस बेबी, बट नो कॉम्प्रोमाइज विद क्वालिटी एंड हेल्थ। हम जाएंगे सिर्फ MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड।
0: ऐसा क्या खास है वहाँ?
1: सब कुछ, क्वालिटी स्पाइसेस, लेंटिल्स, राइस, फ्लावर और फ्रोजन सब्जी फ्रॉम फिजी एंड इंडिया। ब्रिस्बेन के बेस्ट इंडियन बुचर सप्लाइंग फार्म फ्रेश गोट, लैम्ब, चिकन एंड डक और फ्रेश लोकल प्रोड्यूस भी रखते हैं। साथ ही किचनवेयर एंड डिस्पोजेबल प्लेट्स की लार्ज रेंज किसी भी फंक्शन के लिए।
0: अरे वाह, इंटेलिजेंट हो गई हो।
1: MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड, सर्विंग ब्रिस्बेन सिंस 1999, ओपन 7 डेज। फाइंड अस ऑन फेसबुक और विजिट वेबसाइट mcsfoods.com.au। 1/268 किंगस्टन रोड, स्लैक्स क्रीक, फोन नंबर 3804-3818। दैट्स 3804-3818।
2: ओए राहुल, वीरे तेरे केस दा की होया?
3: ओ यारा, मैं बहुत वरीड हूं। I actually want an experienced lawyer to handle my case.
2: Go for the best, Vire. Atul Bhardwaj ji nu ajji contact karo. Ona de kol vast experience a. Te law di entry cases nu handle karan ch vi o expert han. Criminal law, domestic violence, traffic drug offense vich 12 saal to vadh da rich experience. Te conveyance, family law, immigration laws vich vi Bhardwaj and Associates de lawyers da vast experience a. And the best point, they understand the stress that you go through and work effectively to minimize it.
3: Thanks a ton, Vire. I'm so relaxed to hear that.
2: Don't risk your life. Talk to Atul before you talk to police. Ajji contact karo Atul Jino on 0400-234-235. That is 0400-234-235.
4: Earn money from your empty drink containers with Containers for Change. Your empty eligible cans, bottles and cartons receive a 10 cents refund each. We call it Bincoin. Save, spend or donate your Bincoin to a cause you support. There's a Containers for Change near you. Bank it, don't bin it. Visit the website to find your nearest refund point and start trading for 10 cents today.

0: अनुज, कोई अच्छा सा लॉयर सजेस्ट करो ना, ऐसा जो मेरी सारी बात ढंग से सुने, समझे और फिर मेरे तरीके से मुझे समझाए।
1: अर्शाद लॉयर्स है तुम्हारी प्रॉब्लम का सलूशन। कमर्शियल मैटर हो, जैसे लीज का मामला, बिजनेस हो या फिर घरों की बाइंग सेलिंग का मामला, और डिवोर्स जैसे फैमिली मैटर्स भी, वो सब में मदद कर सकती हैं। और फिक्र करने की जरूरत नहीं है, अदालत तक तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे। अभी फोन करो 0420-933-171 पर और 15 मिनट का फ्री फोन कंसल्टेशन ले लो।
0: अरे वाह, इनका पता बताना।
1: अर्शाद लॉयर्स, माउंट ग्रेविट शोग्राउंड्स, ऑफिस 5, 1644 लोगन रोड, माउंट ग्रेविट, एम्पल पार्किंग। कॉल अर्शाद फ्रॉम अर्शाद लॉयर्स नाउ ऑन 0420-933-171। वेबसाइट www.arshadlawyers.com। We pride ourselves in providing excellent service.
2: कंटेनर्स फॉर चेंज के माध्यम से अपने खाली डिब्बे बोतलों से धनराशि कमाएं। आपके प्रत्येक योग्य खाली कैन, बोतल और कार्टन पर 10 सेंट का रिफंड प्राप्त होता है। इसे हम बिन कॉइन कहते हैं। अपने बिन कॉइन की बचत करके रखें, खर्च करें या जिस उद्देश्य में आपका विश्वास है उसमें दान करें। आपके नजदीक कहीं एक कंटेनर्स फॉर चेंज मौजूद है, बैंक में डालें ना कि कूड़ेदान में। अपना सबसे नजदीकी रिफंड पॉइंट ढूंढने के लिए वेबसाइट पर जाएं और आज ही 10 सेंट कमाना शुरू करें।
3: यार राहुल, तेरे केस का क्या हुआ?
4: यार I'm so worried. Actually want an experienced lawyer to handle my case.
3: मेरी एडवाइस है, go for the best. अतुल भारद्वाज जी है ना, उनके पास 12 साल से ज्यादा का वास्ट एक्सपीरियंस है और लॉ की एंट्री केसेस को हैंडल करने में उनकी एक्सपर्टीज है। क्रिमिनल लॉ, डोमेस्टिक ऑफेंस, ट्रैफिक ड्रग ऑफेंस में 12 साल से ज्यादा का रिच एक्सपीरियंस, और तो और कन्वेयंस, फैमिली लॉ, इमिग्रेशन लॉज में भी भारद्वाज एंड एसोसिएट्स के लॉयर्स का वास्ट एक्सपीरियंस है। एंड द बेस्ट पॉइंट, दे अंडरस्टैंड द स्ट्रेस दैट यू गो थ्रू एंड वर्क इफेक्टिवली टू मिनिमाइज इट।
4: थैंक्स अटनिया, आई एम सो रिलैक्स्ड टू हियर दैट।
3: Don't risk your life. Talk to Atul before you talk to police. Contact Atul now on 0400-234-235. That is 0400-234-235.

कहो वो रहीम कहे, दोनों की गरज भगवान से है। तुम ईसा कहो वो वाहे गुरु, हम सब की अरज अल्लाह से है। कितनी सच बात है ना दोस्तों, हम सब अलग अलग धर्मों में बटे हुए हैं, अलग अलग धर्मों को मानने वाले हैं। लेकिन आप चाहे किसी भी धर्म को मानते हो, उस धर्म को मानने के पीछे है एक ही मकसद, अपनी प्रार्थना को उस शक्ति तक पहुंचाना जो हमारे हिसाब से इस संसार का निर्माण कर रही है, उसे चला रही है। और उसी शक्ति की, उसी सर्वशक्तिमान की हम प्रार्थना करते हैं हर सुबह, अलग अलग धर्मों के हिसाब से, अलग अलग नामों से। लेकिन नाम चाहे कुछ भी दे दीजिए, आपकी प्रार्थना एक ही है, उस शक्ति से है जो ये दुनिया चला रही है, और उसी शक्ति को समर्पित है यह गाना। सुनते रहिए जीवन आधार सताक्षी के साथ।

जीवन आधार रेडियो ब्रिस्वानी पर सताक्षी के साथ आप सुन रहे हैं और इस आधार में, जीवन के आधार में हम अपने ही जीवन को ढूंढने की आज इस नई सुबह एक कोशिश कर रहे हैं। आगे ये कोशिश जारी रहेगी। हमें सुनते रहिए और सुनते रहिए रेडियो ब्रिस्वानी 1701 AM।

जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं ना ही। सब अंधियारा मिट गया जब दीपक देखिया माही। रेडियो प्रसवानी 1701 AM पर श्रोताओं आप सुन रहे हैं जीवन आधार, और इस सफर में आज से हर रोज आपकी हम सफर सताक्षी आपका साथ निभाती रहेगी। जब तक आप उस ईश्वर को मैं के साथ जोड़ते हैं, जब तक आप में मैं जिंदा रहता है, आप कितनी भी कोशिश कर लें उस शक्ति को पा नहीं सकते, और कितना भी आप दुआ मांग लें, आप प्रार्थना कर लें, आप अरदास लगा लें, लेकिन आप अपनी आवाज उस तक पहुंचा नहीं सकते हैं। उसकी आवाज सुनने का और अपनी आवाज उस तक पहुंचाने का सिर्फ और सिर्फ एक ही तरीका है, एक ही माध्यम है, अपने मैं को मिटा देना। तो मिटा दीजिए अपने मैं को और ढूंढ लीजिए उस सर्वशक्तिमान को। सुनते रहिए जीवन आधार सताक्षी के साथ रेडियो प्रसवानी पर।

रेडियो ब्रिस्वानी 107.1 AM पर जीवन का आधार जीवन आधार आप सुन रहे हैं सताक्षी के साथ और हम इस जीवन आधार के माध्यम से जीवन के ही सत्य को जानने की कोशिश कर रहे हैं। आइए गुरुवाणी के साथ बढ़ते हैं हमारे सफर में आगे। सुनते रहिए जीवन आधार और यूं ही रहिए रेडियो ब्रिस्वानी पर हमारे साथ।

एक ओंकार सतनाम करता पुरख अकाल मूरत अजुनी सभम गुरु प्रसाद जप आड़ सच जुगाड़ सच है भी सच नानक होसे भी सच सोचे सोचे ना होवे जो सोची लाख बार छुपे छुप ना होवे यानी एक ही ईश्वर है और उसी का नाम सच है वही सबको बनाने वाला है उसकी कोई मूरत नहीं है वो किसी का दुश्मन नहीं है जन्म मरण से दूर है और अपनी सत्ता कायम रखने वाला है ऐसे ही परमात्मा को गुरु नानक जी ने अकाल पुरख कहा है जिसकी शरण में गुरु के बिना जाना संभव नहीं है आइए उसी ईश्वर को नमन करते हैं और सुनते हैं ये अगला गीत।

तो श्रोताओं, ये था आज हमारा आपका आज की सुबह साथ। कल इसी साथ को लेकर आगे भी साथ साथ चलेंगे। और अपना जो रिश्ता है वो ईश्वर से जोड़े रखिए। उस शक्ति को जिसमें भी आप जिस भी नाम से माने विश्वास करते रहिए, क्योंकि वही है जिसने आपको थामा है, आपके अपनों को थामा है। नमस्कार।

हेलो जी, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल, वेरी गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। आप सभी सुन रहे हैं रेडियो ब्रिस्वानी, आपके अपने दोस्त और होस्ट आरजे जानी जैन के साथ। और आशा करती हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे, हेल्दी होंगे और हमेशा हंसते रहें, यूं ही खुश रहें, यही मेरी प्रार्थना है, यही दुआ है अपने ईश्वर से। तो दोस्तों, आप सभी जुड़ चुके हैं अपने दोस्त जानी जैन के साथ जानी के सफर प्रोग्राम में। और इस सफर में हमेशा की तरह कुछ न कुछ नया आप सभी के लिए लेकर आई हूँ। तो उसे सुनने के लिए, उसे जानने के लिए आप सभी बने रहिए मेरे साथ रेडियो ब्रिस्वानी में। आइए शुरुआत करते हैं इस प्रोग्राम के, इस गीत के साथ।

0: स्वागत है जी एक बार फिर से आप सभी का। आप सभी सुन रहे हैं रेडियो प्रिस्वानी में प्रोग्राम जानने का सफर, और आशा करती हूँ ये गीत आप सभी को ताजा कर गया होगा। जी हाँ, क्योंकि ये इतना फ्रेश वाला गाना मैंने आप लोगों के लिए लगाया था। तो आइए जी इसी के साथ बढ़ते हैं आज आगे, और आज हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसे बेसिक चीजों की जो हम हमेशा घरों में परेशान हो जाते हैं कि अब क्या करें। देखिए, चाहे गर्मी हो या सर्दी हो, जब हम अपने घर पर राशन भरते हैं, दालें भरते हैं, चावल है, आटा है, तो उनमें कभी ना कीड़े लग जाते हैं। अगर हम थोड़ा इकट्ठा करके लेकर आते हैं ना, हम कभी भी देखो एक किलो दो किलो तो लाते नहीं है, हमेशा 5 किलो 10 किलो ऐसा हम भर देते हैं, लेकिन अक्सर उसमें कीड़े लग जाते हैं। तो उन सब चीजों को डिब्बे में डालकर हम ऐसी क्या चीज डाल सकते हैं जिससे ये सारी चीजों से हम बच सकते हैं। कुछ मैं ऐसे आप लोगों को इंग्रेडिएंट्स बताऊंगी जिसे डालकर आप सभी इन सब चीजों में लगने वाले जो कीड़े हैं उनको आप बचा सकते हैं और हमारा राशन जो है वो बच सकता है। जी हाँ दोस्तों, चावल एक ऐसा अनाज है जिसे हर कोई खाना पसंद करता है। भारत में या फिर हम बाहर की बात करें, इंटरनेशनल जगह, हर जगह जो है चावल एक मुख्य भोजन की तरह खाया जाता है। दाल चावल हो, खिचड़ी हो, बिरयानी हो, फ्राइड राइस हो, इन सभी को बनाने के लिए चावल की जरूरत होती ही है। ये एक ऐसा अनाज है दोस्तों जिसे एक बार ही 5 से 10 किलो खरीद कर रख लेते हैं। हालांकि कई बार इसमें बहुत जल्दी कीड़े लग जाते हैं। आखिर क्यों लग जाते हैं चावल में जल्दी से कीड़े और घुन, आज हम कॉमन कारण जानेंगे और चावल को किस तरह हम कीड़े से बचा सकते हैं उसके देसी तरीके जो है आज हम जानेंगे। आप जुड़े रहिए मेरे साथ रेडियो ब्रिस्वानी में।
1: मैंने

हाँ जी, तो आइए अब जानते हैं कि आखिर चावल में इतनी जल्दी कीड़े क्यों लग जाते हैं। दोस्तों, चावल में छोटे छोटे जो कीड़े लगने का एक आम जो है कॉमन समस्या है, जब हम इसे लंबे समय तक के लिए स्टोर करके रखते हैं, इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करते हैं, तो गर्मियों में इसमें जल्दी से कीड़े लग जाते हैं। इसके पीछे कई नेचुरल तरीका या फिर हमारा जो एनवायरमेंट है उससे जुड़ी वजह भी हो सकती है। अब बात करते हैं कि इसे बचाने के क्या क्या तरीके हैं, चावल को हम कैसे स्टोर कर सकते हैं। चावल को कभी भी दोस्तों खुले बर्तन, ढीले ढक्कन या फिर आप गंदे कंटेनर में ना रखें। इससे हवा और नमी जो है अंदर जाएगी, जो चावल को खराब कर सकता है। कीड़े लगने की संभावना बढ़ जाती है, हमेशा एयरटाइट कंटेनर में ही इसे रखें। कभी भी पुराने और नए चावल को एक साथ एक ही डिब्बे में डालकर ना रखें। अगर पुराने चावल में एक भी सफेद वाला कीड़ा होता है तो वो सारे चावलों को खराब कर सकता है। तो इन चीजों का हमें ध्यान रखना है। अब कुछ घरेलू उपाय हैं वो जानेंगे इस गीत के बाद। सुनते रहिए रेडियो ब्रिस्वानी।

आप सभी सुन रहे हैं रेडियो बिस्वानी। तो आइए इसके साथ अब बढ़ते हैं आगे और जानते हैं कुछ घरेलू उपाय। दोस्तों, कुछ घरेलू उपाय इस्तेमाल आप सभी कर सकते हैं। इसके लिए चावल के डिब्बे में नीम की जो सूखी पत्तियां होती है वो डाल सकते हैं। नीम में नेचुरल एंटीबैक्टीरियल और कीट रोधी गुण मौजूद होते हैं और इसकी तेज जो स्मेल होती है उससे जो कीड़े हैं वो जल्दी नहीं लगते हैं। तेज पत्ता जो है वो आप चावल के डिब्बे में डाल सकते हैं। आप लहसुन यानी कि गार्लिक की जो कलियां होती है उसका छिलका सहित आप उसमें डाल सकते हैं। इनकी जो तेज स्मेल है उनसे कीड़े नहीं लगते हैं। लौंग के आप 10-15 दाने भी चावल के डिब्बे में डाल सकते हैं। साथ ही आप साबुत लाल मिर्च जो है वो काफी कारगर साबित हुई है। आप साबुत लाल मिर्च जो सूखी लाल मिर्च होती है वो आप डाल सकते हैं, इससे भी कीड़े जो है वो नहीं लगते हैं। अगर ऐसे आप उपाय करेंगे तो आप देखेंगे कि चावल जो है लंबे समय तक टिके हुए हैं बिना कीड़े से। आइए इसके साथ बढ़ते हैं आगे, सुनते हैं नेक्स्ट ट्रैक।

आप सभी सुन रहे हैं रेडियो ब्रिस्वानी। तो दोस्तों यहाँ पे आज हमने जाना है किस तरह आप अनाज को स्टोर कर सकते हैं, मेन चावल जो है उसको किस तरह आप कीड़ों से बचा सकते हैं। ऐसे ही दालों के लिए भी होता है, दालों में भी आप लौंग, मिर्च, तेज जो स्मेल वाली चीज होती है ना वो आप डाल सकते हो, तेज पत्ता, क्योंकि ये जो इन्ग्रीडियंट्स है अगर आप ये मसाले डालते हैं इनके अंदर, तेज पत्ता हो गया, लौंग हो गया, नीम हो गया, अगर आप इन्हें डालते हैं तो जो कीड़े होते हैं इसकी स्मेल से वो अंदर नहीं आते हैं और हमारी जो चावल है, दालें हैं, वो जल्दी खराब नहीं होती है। और याद रखें इसको टाइट कंटेनर में ही, एयर टाइट डब्बे में ही रखें, क्योंकि जरा सी हवा लगने से भी ये खराब हो सकते हैं। तो आज आपने जाना किस तरह से हम लोग होम रेमेडी से ही इस्तेमाल करके इन चीजों का हम लोग बचाव कर सकते हैं। तो आशा करते हैं ऐसे छोटे छोटे टिप्स हम लोगों के घर की बेसिक चीजों के लिए हमें काम आएंगे और हम बहुत अच्छे आइडियाज लेकर अपनी चीजों को खराब होने से बचा सकते हैं। तो आइए इसी के साथ सुनते हैं नेक्स्ट ट्रैक।

वेलकम बैक है जी, आप सभी सुन रहे हैं रेडियो ब्रिस्वानी में प्रोग्राम चांदनी का सफर विद आरजे चांदनी जैन। तो दोस्तों, आशा करती हूँ आप सभी को ये प्रोग्राम अच्छा लगा होगा, कुछ न कुछ टिप्स ट्रिक्स आप सभी के काम आता होगा। ऐसे ही आप चीजें आप भी शेयर कर सकते हैं अपने फीडबैक द्वारा, आप बता सकते हैं कि आपको प्रोग्राम कैसा लगता है, और आप ही कुछ जानकारी अगर प्राप्त करना चाहते हैं कि क्या चीजें ऐसी है या होम रेमेडीज कुछ मैं ऐसी बताऊं आपको जिससे कि जो जिस मुश्किल में है वो आपका सॉर्ट हो सके, तो मैं कोशिश करूंगी आप अपने फीडबैक द्वारा बताएं, मैसेज के द्वारा बताएं, ताकि मैं भी जान सकूं और मैं आपको उसका उपाय बता सकूं। तो ये था आज का प्रोग्राम, कैसा लगा है जरूर बताइएगा, और अब दीजिए मुझे इजाजत, सुनते रहिए रेडियो ब्रिस्वानी।

0: अनुज, कोई अच्छा सा लॉयर सजेस्ट करो ना, ऐसा जो मेरी सारी बात ढंग से सुने, समझे और फिर मेरे तरीके से मुझे समझाए।
1: अर्शाद लॉयर्स है तुम्हारी प्रॉब्लम का सलूशन। कमर्शियल मैटर हो, जैसे लीज का मामला, बिजनेस हो या फिर घरों की बाइंग सेलिंग का मामला, और डिवोर्स जैसे फैमिली मैटर्स भी, वो सब में मदद कर सकती हैं। और फिक्र करने की जरूरत नहीं है, अदालत तक तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे। अभी फोन करो 0420-933-171 पर और 15 मिनट का फ्री फोन कंसल्टेशन ले लो।
0: अरे वाह, इनका पता बताना।
1: अर्शाद लॉयर्स, माउंट ग्रेविट शोग्राउंड्स, ऑफिस 5, 1644 लोगन रोड, माउंट ग्रेविट, एम्पल पार्किंग। कॉल अर्शाद फ्रॉम अर्शाद लॉयर्स नाउ ऑन 0420-933-171। वेबसाइट www.arshadlawyers.com। We pride ourselves in providing excellent service.
2: Containers for Change के माध्यम से अपने खाली डिब्बे बोतलों से धनराशि कमाएं। आपके प्रत्येक योग्य खाली कैन, बोतल और कार्टन पर 10 सेंट का रिफंड प्राप्त होता है। इसे हम बिन कॉइन कहते हैं। अपने बिन कॉइन की बचत करके रखें, खर्च करें या जिस उद्देश्य में आपका विश्वास है उसमें दान करें। आपके नजदीक कहीं एक कंटेनर्स फॉर चेंज मौजूद है। बैंक में डालें, ना कि कूड़ेदान में। अपना सबसे नजदीकी रिफंड पॉइंट ढूंढने के लिए वेबसाइट पर जाएं और आज ही 10 सेंट कमाना शुरू करें।
3: यार राहुल, तेरे केस का क्या हुआ?
4: यार, I'm so worried. Actually want an experienced lawyer to handle my case.
3: मेरी एडवाइस है, go for the best. अतुल भारद्वाज जी है ना, उनके पास 12 साल से ज्यादा का वास्ट एक्सपीरियंस है और लॉ की एंट्री केसेस को हैंडल करने में उनकी एक्सपर्टीज है। क्रिमिनल लॉ, डोमेस्टिक ऑफेंस, ट्रैफिक ड्रग ऑफेंस में 12 साल से ज्यादा का रिच एक्सपीरियंस, और तो और कन्वेयंस, फैमिली लॉ, इमिग्रेशन लॉज में भी भारद्वाज एंड एसोसिएट्स के लॉयर्स का वास्ट एक्सपीरियंस है। एंड द बेस्ट पॉइंट, दे अंडरस्टैंड द स्ट्रेस दैट यू गो थ्रू एंड वर्क इफेक्टिवली टू मिनिमाइज इट।
4: थैंक्स अटनियर, आई एम सो रिलैक्स्ड टू हियर दैट।
3: Don't risk your life. Talk to Atul before you talk to police. Contact Atul now on 0400-234-235. That is 0400-234-235.

नमस्कार, मैं सताक्षी, आप सुन रहे हैं रेडियो प्रस्थानी 1701 AM। आइए सुनते हैं अब तक की प्रमुख खबरें और सबसे पहले अंतर्राष्ट्रीय खबरें। सीमा पार फैली बीमारी, युगांडा और कांगो में इबोला का प्रकोप, ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी घोषित। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कांगो और युगांडा में फैले इबोला के प्रकोप को अंतर्राष्ट्रीय चिंता का ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी घोषित कर दिया है। ये वैश्विक स्तर पर संगठन का सबसे बड़ा अलर्ट है। ये कदम तब उठाया गया है जब इबोला के पुष्ट मामले अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं को पार कर कंपाला और किशांसा जैसे बड़े और घनी आबादी वाले शहरों तक पहुंच गए हैं। क्रैश हुए यूएफओ से मिली एलियंस की 4 प्रजातियां, अमेरिका के पूर्व शोधकर्ता ने किया सनसनीखेज दावा। एक पूर्व सरकारी शोधकर्ता ने एक सनसनीखेज दावा किया है कि अमेरिका ने दुर्घटनाग्रस्त यूएफओस के 4 अलग अलग तरह के एलियंस को बरामद किया है। एडवांस्ड एयरोस्पेस वेपन सिस्टम एप्लीकेशन प्रोग्राम के पूर्व सलाहकार और CIA वित्त पोषित शोधकर्ता डॉक्टर हाल फुटहॉफ ने स्टीव बार्टलेट के पॉडकास्ट द डायरी ऑफ CEO पर निर्देशक डैन फरहा के साथ मिलकर ये दावा किया। कनाडा में रंगदारी और अपहरण के मामले में 4 भारतीय गिरफ्तार, पुलिस ने कहा ऐसा मामला कभी नहीं देखा। कनाडा के कैलगरी शहर में जबरन वसूली और अपहरण की बेहद पेचीदा और हैरान कर देने वाली साजिश सामने आई है। बदमाशों ने व्यक्ति का अपहरण तो किया, लेकिन उनका असली टारगेट वो नहीं था। वो उस व्यक्ति का इस्तेमाल उसके दोस्त को घर से बाहर बुलाने के लिए कर रहे थे। हालांकि बदमाशों की ये साजिश नाकाम रही। कनाडा में रंगदारी और अपहरण के मामले में 4 भारतीय गिरफ्तार हुए हैं। पुलिस ने कहा कि ऐसा मामला कभी नहीं देखा गया है। आइए जुड़ते हैं अब भारत से और सुनते हैं भारतीय खबरें। राजधानी के एक्सप्रेस में लगी भीषण आग, दिल्ली मुंबई रेल मार्ग बंद। दिल्ली निजामुद्दीन की ओर जा रही राजधानी एक्सप्रेस के 2 कोच में आग लगने से अफरा तफरी मच गई है। घटना आलोट विक्रमगढ़ रेलवे स्टेशन के बीच हुई। प्राथमिक जानकारी के अनुसार आग लगने के बाद दिल्ली मुंबई रेल मार्ग पर रेल परिचालन प्रभावित हो गया है और कई ट्रेनों को रोक दिया गया है। 15 मिनट के अंदर सभी यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया और किसी जानमाल के नुकसान की खबर अभी तक सामने नहीं आई है। भारत ने सिंधु जल संधि पर हेग ट्रिब्यूनल के फैसले को किया खारिज। भारत ने सिंधु जल संधि के साथ जुड़े मामले में हेग स्थित स्थायी मध्यस्थता न्यायालय के ताजा फैसले को खारिज कर दिया है। केंद्र सरकार ने कहा कि ये तथाकथित मध्यस्थता न्यायालय अवैध रूप से गठित है और उसके सभी फैसले अमान्य हैं। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि 15 मई को जारी फैसला अधिकतम जल संचयन से जुड़ा है और ये सिंधु नदी संधि की व्याख्या से संबंधित पहले के फैसले का पूरक है। ये थी अब तक की प्रमुख खबरें। अगली खबरों के साथ जल्द होगी मुलाकात। सुनते रहिए रेडियो प्रस्थानी और सताक्षी को दीजिए इजाजत। नमस्कार।

0: on 1701 Brisbane. It's your morning drive show with your host, Amita and Jatish. सुबह का सफर आपके हम सफर जतीश और अमिता।
1: जी हाँ दोस्तों, आप सभी का स्वागत है रेडियो बिजवानी पर। अमिता नमस्ते और सभी को प्यार भरा नमस्कार। आज मंडे है दोस्तों और हर मंडे को यहाँ पर कुछ ना कुछ रामलीला होता है वीकेंड में, और फिर यहाँ पर हमें आकर इसको क्या बताऊं मैं। खैर चलिए कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं दोस्तों। और सबसे पहले वी बीन टू बिजी फिक्सिंग एवरीथिंग अप थिंग अप हियर। ओके, ब्रिस्बन का जो क्या बोलते हैं वेदर पर हम चलो ध्यान रखते हैं और देखते हैं कि कुछ शावर्स है आज 18 and 23 है। कल के लिए शावर्स 19 and 24। वेंसडे को पॉसिबल शावर्स है 15 and 24 रहेगा। थर्सडे को सनी है 14 and 23। फ्राइडे इज सनी 13 and 24। सैटरडे इज मोस्टली सनी 14 and 25। तो ये रहा हमारा क्या बोलते हैं वेदर। और रास्ते पर क्या हो रहा है दोस्तों, अभी भी आया है थोड़ी देर ऑन एवेन्यू चेलमा स्टेशनरी व्हीकल, नो ब्लॉकेज नॉर्थ बाउंड टूवर्ड्स इंद्रपेली, ठीक है। और मैकलक स्ट्रीट सनी बैंक स्टेशनरी व्हीकल वहाँ है, लेन और लेन्स रिड्यूस्ड। और इंगम्स प्लेस हेमंत क्रैश हुआ है, साउथ बाउंड जो हुआ था एक क्लियर हो गया है, ठीक है। और वाटरवर्क्स रोड एच ग्रोव मल्टी व्हीकल क्रैश, लेन और लेन्स ब्लॉक्ड बाउथ डायरेक्शन, शायद अभी क्लियर नहीं हुआ है। और हाँ अभी तक क्लियर नहीं हुआ दोस्तों, बस इतना ही था। और दोस्तों आपको शायद याद होगा पहले ज़माने में, हमारे यंग ज़माने में जब बारिश वगैरह होती थी तो गाड़ी बहुत से गाड़ी खड़ी हो जाती थी।
2: Yeah, because of what used to get in the distributors.
1: लेकिन ये सब बहुत कम हो गया because of all the computerized system. Okay, so can we play a song?
2: Yeah, this is what I want to play.
1: Yeah.
2: Because I think both of us need to calm our nerves down.
1: Yeah, okay, please. Soon. Yeah.
2: Because we need this desperately today.

0: ओके
1: थैंक्स फॉर वॉचिंग. अगर गाना आपको अच्छा लगे
0: कैन यू हियर मी नाउ. हेलो हेलो हेलो हेलो हेलो हेलो हेलो ओके where shall I start? I'm still getting myself. Let's play another song, then I'll come back, please.

0: Okay. What are you supposed to do?
1: Pizza.
0: नशेड़ी न पदार्थ के विरुद्ध सख्त कार्रवाई। फिजी पुलिस फोर्स और सेना ने पश्चिमी इलाके में क्या ये जो ड्रग है ना इस पर अभियान शुरू किए हैं। सरकार का कहना है कि अवैध नशे के व्यापार और अपराधी पर कठोर कदम उठाए जाएंगे।

0: हो राजा छोड़ दो दारू हमारे लिए। ये एक भोजपुरी गाना कुछ आप लोगों के लिए, ऐसे यहाँ छोड़ दो दारू हमारे लिए। वाओ
1: Wow. Now one thing, just one thing, because she's saying how many different things she left behind for him.
0: Oh, stop blackmailing.
1: No, what blackmailing about
0: yeah.
1: that?
0: आजकल कौन कहाँ छोड़ता किसी को?
1: All right, it's 7:31.
0: You know what will happen when you do that?
1: What?
0: तेरा सैया चुप-चुप कर पिएगा। ऐसे कहो कि अच्छा एक दो पी लो, बट
1: राइट।
0: एक्चुअली इट इज बीन फाउंड व्हेन अ वाइफ रियली क्रिएट्स अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम फॉर अ हस्बैंड व्हेन ही ड्रिंकिंग। ये कहां पर मैं पढ़ा था, द हस्बैंड्स दे वे चुप चुप कर पियेंगे एंड दे विल बिकम ड्रंक्स बिकॉज वे जल से पियेंगे, ज्यादा पियेंगे
1: बिकॉज ओके सीक्रेटिवली
0: सीक्रेटिवली। सो where did I read that? Was it a joke or was it something?
1: Now you don't know fact from.
0: एक लेडी ने पूछा हस्बैंड से, यानी किसी से कहा, यार बहुत प्रॉब्लम है मेरे हस्बैंड को, मुझे लग रहा है डॉक्टर देखना पड़ेगा। तो वो दोस्त पूछ रहा है क्यों, क्या ऐसा हुआ कि यू नो ए टॉयलेट बहुत ज्यादा जाता है, frequently visits the toilet.
1: Because he's drinking so much.
0: और हमने नोटिस किया कि शाम के वक्त ज्यादा जाता है टॉयलेट की ओर। Something must be wrong. इनको नहीं पता था कि दारू के बोतल वो सिस्टम में रखा था।
1: Oh my lord.
0: Okay, अब ये काम आप लोग मत शुरू करना, okay?
1: Okay, it's 7:33. And today is the 18th of May, so happy birthday if you're celebrating your birthday today. And a happy anniversary if you're celebrating your anniversary today.
0: All right.
1: Hope you have an absolutely beautiful day.
0: Okay. All right.

0: और देखिए दोस्तों, अगर आप कुछ गाना सुनना चाहते हैं, चाहे पुराना नया जो कुछ भी है, अपने रिक्वेस्ट को भेज सकते हैं, ठीक है। वुड लव यू टू कम ऑन एयर। अगर आप चाहे तो आप एयर पर आ सकते हैं, नंबर है 04-3003-1701, ठीक है। वुड लव टू ब्रिंग यू अप एंड आपके जो बातें हैं सुनेंगे हम, और अच्छा लगेगा थोड़ा।
1: व्हाट अबाउट द स्टूडियो नंबर 3279?
0: No, I'd rather they call this number.
1: You rather they
0: because
1: call
0: it's easier to put them on air.
1: Okay.
0: 04-3003-1701. We won't put you right away, okay? We will respect your privacy. If you want to just say something, you can talk to us first and then we'll put it on air. You must search your number, call karenge, tum straight up ko yahan pe karenge, ise nahi karenge, theek hai? ओके और आप चाहे जहां से भी सुन रहे हैं थ्रू द इंटरनेट, इफ यू वांट टू कॉल एंड टॉक टू अस, +61-43-003-1701, राइट? यू डोंट पुट जीरो, राइट?
1: नो।
0: सो +61-43-003-1701। या अगर आप चाहे व्हाट्सएप में हमें कॉल कर सकते हैं। I don't know how to tell you to call on WhatsApp. Well, I know I am on WhatsApp. Wohi number lagana padega shayad.
1: No, same number.
0: Yeah, same number.
1: I'm so sure it's the same number. Yes.
0: 43003-1701. We'd really like to talk to you. Aap chahe Canada mein ho, America mein ho. Abhi to America mein kitna baja hoga? Abhi to nahi soenge aap. Right?
1: Abhi, what's the time now?
0: Say 2 o'clock hoga. I know west 2 o'clock.
1: Mm.
0: Or either eastern time like New York and all that.
1: Mm.
0: Maybe 5 o'clock now. So you can give us a call, please.
1: Yeah.
0: I would love to bring you on air. And kuch apne desh ke baare mein batai, theek hai? We'll appreciate that. All right. Aage badhte hain aur agla ek koi purana nagma hai. Sunte hain.
1: Very old.
0: Not very old, like whatever.

0: ओके, कुछ ऐसे मधुर गीत आपको सुनने को मिलेगा। अब दोस्तों, आप रेडियो बिजवानी सुनते रहें, आपकी अपनी पहचान। चलो मैं कुछ कहूंगा और आप लोगों को मुझे बतलाना है कि गीत कौन सा है। ठीक है, आई विल मेक श्योर फर्स्ट। ओके, मुझे मेरा प्यार मिल गया है इसीलिए ए रात जरा धीरे गुजरना, मैं इस खूबसूरत एहसास को और महसूस करना चाहता हूं। नाउ टेल मी विच सॉन्ग, डिस्क्रिप्शन ऑफ विच सॉन्ग। इन द मीन टाइम यू कैन प्ले अनदर सॉन्ग, इट डजंट मैटर। या देखते हैं कि हमारे में कितने लोग हैं जो बताएंगे। एक बार फिर पढ़ दूं मैं, ठीक है, एक बार फिर पढ़ देता हूं। मुझे मेरा प्यार मिल गया है इसीलिए ये रात जरा धीरे धीरे गुजरना, मैं इस खूबसूरत एहसास को और महसूस करना चाहता हूं। ठीक है, ओके, प्ले
1: ऑन।
0: या

0: गोल भी होगा, ग्रुप भी होगा और फीजी का फ्लेवर भी फुल ऑन होगा। ब्रिस्बेन तैयार हो जाओ। क्यूब ऑफ 2026 सॉकर टूर्नामेंट प्रेजेंटेड बाय क्वींसलैंड फीजी फुटबॉल एसोसिएशन। टूर्नामेंट होगा संडे 31 मई और थर्सडे 4 जून से संडे 7 जून तक एट अकाशिया रिज सॉकर क्लब, 174 मॉर्टिमर रोड, अकाशिया रिज 4110। ग्राउंड पे चलेगा फुल सॉकर कटेशन, ओपन्स, मास्टर्स एंड लेजेंड्स। हर मैच में एनर्जी, एक्साइटमेंट और क्राउड का शोर। और भाई खाने का सीन तो और भी डेंजरस है। फीजी स्टाइल बारबेक्यू, स्पाइसी डक करी, यम्मी पुलाव और ठंडी ठंडी फीजी आइस ब्लॉक। तो इन डेट्स पर घर पे मत बैठना, फैमिली फ्रेंड्स के साथ आ जाना क्यूबॉन्ग सॉकर टूर्नामेंट 2026 में। ज्यादा जानकारी के लिए कॉल करें अब्दुल रहीम 0423-342-272 या फिर सेक्रेटरी रे अली 0413-868-240 और विजिट करो brisbane.com के इवेंट सेक्शन में। क्यूबॉन्ग 2026 आपका इंतजार रहेगा।
1: और दोस्तों लोग कोशिश कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, कोशिश से बढ़कर कुछ है नहीं, करते रहिए आप। और एक बार फिर कह देता हूं, ये कौन सा गीत है आप बताइए। मुझे मेरा प्यार मिल गया है इसीलिए ऐ रात जरा धीरे धीरे गुजरना, मैं इस खूबसूरत एहसास को और महसूस करना चाहता हूं। अब बताइए, हिंट तो दिया है इसमें लेकिन आंसर गलत आ रहे हैं। चलो कोशिश करते रहिए प्लीज। वे आर एवरीबॉडी, कम ऑन, देयर इज लॉट ऑफ गुड पीपल दैट ऑलवेज बिनी है, प्रेमा है और ये सब, प्रेम जी है, अनादा प्रेमा एंड देन प्रेम जी, प्रेमा जी, प्रेम जी, आप लोग कहाँ छुपे हुए हो और कौन ये तीन लोग जो हमेशा कोशिश करते हैं भी नहीं कर रहे हैं, और और कौन अब सिग्नलिंग।
2: Anyway, let me just play a song because I'm trying to think.
1: Oh, let's see, Shobha ji.
2: Yes, but Shobha ji as well. But this other name, I'm trying to get her name. That's the thing.
1: Oh yes.
2: But why only ladies always guess? You think men just can't be?
1: Men are too lazy, I think. No,
2: I don't know.
1: Have I got myself into trouble?
2: Maybe.
1: Maybe ladies are more romantic. They remember all these kind of things. But we men are too self-focused.
2: Maybe they remember the lyrics.
1: Maybe they do.
2: Hey?
1: Yeah.
2: Yeah, there you go. Okay, let me play a song.
1: Galat.
2: Galat. Uh-oh.
1: Okay.

0: मैं क्या करूं, मैं अपना नाम भूल गया हूं.
1: अनजाना.
0: अनजाना. देखिए पंडित जी, कैसे बातचीत? बहुत से लोग अभी कोशिश कर रहे हैं लेकिन राइट आंसर मुझे नहीं मिल रहा है. दोस्तों फिर से पूछूं?
1: हाँ. I think Vinny also wanted to know,
0: yeah,
1: right?
0: Yeah, yeah.
1: Listen she carefully, said, Vinny.
0: What is it? मुझे मेरा प्यार मिल गया है, ठीक है? मुझे मेरा प्यार मिल गया है, इसीलिए है रात जरा धीरे गुजरना, मैं इस खूबसूरत एहसास को और महसूस करना चाहता हूं. Here you are playing all kinds of songs. You've been playing songs for so long.
1: And I can't figure.
0: And you
1: it
0: can't
1: out.
0: Concentrate on your program anymore because you are trying to. You are concentrating but very hard to find that song.
1: In my mind.
0: कैसे पता लगा लेता अगर मुझसे कोई पूछता?
1: Okay, Panaji, the song you love, and Panaji yeah. says some
0: okay.
1: Mosam
0: music. Ah, yeah, yeah.
1: Very beman.
0: बहुत beman है.
1: Ah, चलो. There you go, Panaji.

0: हमें तुमसे प्यार कितना ये हम नहीं जानते, क्या कभी ऐसे हो सकता है दोस्तों? हाउ कैन यू नो
1: कितना प्यार है, हाउ मच आई लव यू।
0: तो हाउ अबाउट ऑन दैट नोट, ये थोड़ा कठिन बात है।
1: कठिन, इट्स मेकिंग मी थिंक ऑफ दैट सॉन्ग आई बारंबार।
0: Okay, you know that song? Yeah. Bhaiya, something like that, right? अच्छा चलो मैं एक गाना बजा दूं।
1: Okay.
0: जो प्यार की बात कर रहे हैं, मुझे मालूम नहीं कितना प्यार है, तो चलो मैं सोच रहा हूँ एक गीत आप सभी के लिए, और ये बजेगा, क्यों नहीं बजेगा, बिल्कुल बजेगा। ओके okay. Yeah.

0: तेरे केस दा की होया?
1: ओ यारा मैं बहुत वरीड हां। I actually want an experienced lawyer to handle my case.
2: Go for the best vire. Atul Bhardwaj ji nu ajj hi contact karo. Ohna de kol vast experience aa te law di entry cases nu handle karan ch vi oh expert han. Criminal law, domestic violence, traffic drug offense vich 12 saal to vadh da rich experience. Te conveyance, family law, immigration laws vich vi Bhardwaj and Associates de lawyers da vast experience aa. And the best point, they understand the stress that you go through and work effectively to minimize it.
1: Thanks a ton, Vire. I'm so relaxed to hear that.
2: Don't risk your life. Talk to Atul before you talk to police. Ajji contact karo Atul Jino on 0400-234-235. That is 0400-234-235.
3: Containers for Change ke madhyam se apne khali dibbe, botlon se dhan rashi kamaye. आपके प्रत्येक योग्य खाली कैन, बोतल और कार्टन पर 10 सेंट का रिफंड प्राप्त होता है। इसे हम बिन कॉइन कहते हैं। अपने बिन कॉइन की बचत करके रखें, खर्च करें या जिस उद्देश्य में आपका विश्वास है उसमें दान करें। आपके नजदीक कहीं एक कंटेनर्स फॉर चेंज मौजूद है, बैंक में डालें ना कि कूड़ेदान में। अपना सबसे नजदीकी रिफंड पॉइंट ढूंढने के लिए वेबसाइट पर जाएं और आज ही 10 सेंट कमाना शुरू करें।
4: Are you ready to stop renting and thinking about owning one? Or maybe an investor looking to invest? Then think no more and it is time to build your future in upcoming house and land packages available in Oxley, Breckenridge, Morgill and surrounding areas in Brisbane, Queensland. It is the great Australian dream. Homes built strong, smart and built to last. If you are ready to make the move, then don't wait till tomorrow. Call agent John Lawla on 0404-004-899. Yes, it's 0404-004-899. And quote code word Briswani. Your new home waiting for you in Oxley, Breckenridge, Morgill and surrounding areas in Brisbane, Queensland.
5: और मैं जानता हूँ बहुत से लोग ओल्ड इज गोल्ड जो गाने होते हैं पसंद करते हैं ना, तो ऐसे में एक बहुत प्यारा संगीत है दोस्तों।

0: यस, ये बात भी सही है दोस्तों। जो चेहरा है आपका सब कुछ बता देता है क्या असली सोच रहे हैं क्या नकली सोच रहे हैं आप। ठीक है, यस। तो एनीवे, जो गीत अभी इस गाने के बाद में मैं आपके लिए लेकर आऊंगा, जिसमें मैंने आपसे पूछा था मुझे मेरा प्यार मिल गया है। अच्छा, और इसीलिए ए रात जरा धीरे गुजरना। ओके, मैं इस खूबसूरत एहसास को और महसूस करना चाहता हूं। इतना बार मैंने पूछ लिया है तो मुझे रात भर ये मेरे नींद में आएगा अब। ठीक है, इस गाने के बाद में ये गाना मैं बजाऊंगा। सो फार आई डिडन्ट गेट एनी राइट आंसर, बट थैंक यू वेरी मच फॉर ट्राइंग, आई रियली अप्रिशिएट दैट। ओके, सी, अगर आप ट्राई करेंगे तो यू आर टीजिंग योर माइंड विल बी एक्टिव।
1: यस,
0: ये सब करने से आपका माइंड जो है वो चलता रहेगा। ठीक है, अल्जाइमर से दूर रहेगा आपसे। क्या बोलते हैं इसके, और क्या बीमारी है?
1: डिमेंशिया।
0: डिमेंशिया, या ओके,
1: ऑलराइट।

और देखिए दोस्तों, चलो गीत बजा देता हूँ, ठीक है. लॉट ऑफ पीपल आर ट्राइंग, लॉट ऑफ पीपल ट्राइड, बट वो गाना नहीं मिला जो मैं चाहता था, जिसमें आपको ऐसे एहसास होगा कि मुझे मेरा प्यार मिल गया है. इसलिए रात ज़रा धीरे गुजरना, मैं इस खूबसूरत एहसास को और महसूस करना चाहता हूँ. ठीक है, तो चलो आई विल प्ले एंड यू से ओह माय God, why didn't I get it right? Okay. इतना सिंपल सा है ये बात दोस्तों.

0: ओ साथी रे तेरे बिना भी क्या जीना। और चलो अगला जो गीत है दोस्तों, इसी के साथ हम यहाँ से निकल रहे हैं और हम मिलेंगे कल सुबह 7 बजे। ठीक है, अपना ख्याल रखिएगा दोस्तों।
1: नमस्ते
0: नमस्ते। एंड वी एक्सपेक्ट टू सी यू ऑल ऑफ यू बैक।
1: यस प्लीज।
0: ओके, थैंक यू, बाय।
1: ब्यूटीफुल डे।
0: यप, अ ब्यूटीफुल डे इन दिस रेनी वेदर।

गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक रेडियो प्रस्थानी पर एक बार फिर से आप सताक्षी के साथ, और मेरे साथ अब आप सुनने जा रहे हैं अपनी सुबह का सबसे बेहतरीन शो। ये शो है आपके अपने ब्रेकफास्ट का शो, इट हैपेंस। बेहतरीन इसलिए मियां मिट्ठू हम अपने इसलिए बन रहे हैं क्योंकि हम इस शो में आपसे बात करते हैं आपकी जिंदगी की, आप जो पाना चाहते हैं उसकी और जो आपके लिए जरूरी है उसकी भी। और इसके साथ ही साथ हम इस शो में प्ले करते हैं आपके लिए बहुत ही बेहतरीन मॉर्निंग नंबर्स। तो चलिए, जब इतना प्यारा इतना खास शो है तो भला देर किस बात की है। अगले ट्रैक के साथ बढ़ते हैं सफर में आगे। K+92 रेडियो ब्रिस्वानी, सुनते रहिए सताक्षी के साथ, इट हैपेंस।

वेलकम बैक रेडियो प्रसवानी पर सताक्षी के साथ आप एंजॉय कर रहे हैं आपका अपना ब्रेकफास्ट शो इट हैपेंस। दोस्तों आगे बढ़ना है, ढेर सारी बातें भी आपके साथ करनी है, लेकिन फिलहाल आगे बढ़ेंगे आज के उस विश के साथ, उस खास सेगमेंट के साथ जिसमें हम उन्हें विश करते हैं जिनके लिए आज का दिन खास है। सो जिनका आज है हैप्पी बर्थडे, उन सबको उनके बर्थडे की ढेरों ढेर शुभकामनाएं। जी हाँ, हम यही तो चाहते हैं कि आपकी सारी जिंदगी खुशियों से भरी रहे, आबाद रहे, और यही हमारी विश भी है आज आपके लिए, और आपके लिए हमारा गिफ्ट भी है। जिनके लिए आज का दिन स्पेशल और खास इसलिए है क्योंकि आज उनका जीवन साथी उन्हें मिला था। ये साथ जो है, सात जन्मों का, ये आज के दिन ही जो है वो बंधा था। सो आपको आज के दिन की ढेरों ढेर शुभकामनाएं। आप यूं ही जिंदगी के कदमों से कदम मिलाकर चलते रहें और एक साथ चलते रहें। इसी विश के साथ अब हम विश करेंगे उन्हें भी जिनके लिए है आज का दिन स्पेशल और खास। सो आपको आज के दिन की ढेरों ढेर शुभकामनाएं। यकीन मानिए आप जो भी चाहते हैं वो जरूर मुकम्मल होगा क्योंकि आपकी ख्वाहिश सच्ची और साफ दिल की है। आइए इस अगले ट्रैक के साथ बढ़ते हैं सफर में आगे। स्टे ट्यून्ड रेडियो प्रसवानी, सुनते रहिए हमारे साथ इट हैपेंस।

सो वेलकम बैक इट हैपेंस एंजॉय कर रहे हैं आप सताक्षी के साथ रेडियो ब्रिस्वानी 1701 AM पर। एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे आज के इस खास और खूबसूरत सफर में इस अगले ट्रैक के इस पार। यू नो, जब भी हम सोचते हैं कि हमें एक फ्रेश स्टार्ट करना है, एक नया स्टार्ट करना है, तो हम सोचते हैं कि यार जगह भी नई होनी चाहिए, है ना, क्योंकि भाई नई शुरुआत नई जगह से हो तो क्या बात है। लेकिन देखा जाए तो नई शुरुआत के लिए नई जगह की नहीं बल्कि नए माइंडसेट की जरूरत होती है। एक नया तरीका, एक नया अंदाज और एक नई जर्नी

जब साथ मिलकर शुरू होते हैं तो डेफिनेटली जिंदगी बहुत सारी नई चीज़ों से होकर गुजरती है। वहीं अगर आप नई जगह की तलाश कर रहे हैं अपने जिंदगी को या अपने गोल को रिस्टार्ट करने के लिए, तो फिर सिर्फ और सिर्फ जगह ही बदलेगी, आप में, आपके गोल में, आपके माइंडसेट में कोई चेंज नहीं आएगा। और जब तक माइंड को रीसेट नहीं करेंगे, एक नए सिरे से शुरुआत नहीं करेंगे, तब तक फिर आप लाइफ को बेटर नहीं बना सकते और अपने गोल्स को उसी ढर्रे पर चलकर, पुराने ढर्रों पर चलकर आप अचीव भी नहीं कर सकते। चलिए फिलहाल इसी बात के साथ आपको आगे लेकर चलती हूँ, एक और ट्रैक सुनिए मेरे साथ और सुनते रहिए इट हैपेंस ओनली ऑन रेडियो प्रिस्वानी 1701 AM।

या इट हैपेंस, आप एंजॉय कर रहे हैं सताक्षी के साथ रेडियो प्रस्वानी 1701 एम पर, और इस मॉर्निंग हो रही है आपके साथ कुछ बेहतरीन बातें हमारी। यूं तो सुबह आपके लिए बहुत कुछ लेकर आती होगी, लेकिन वो सारी चीजें जो आप खुद अपने लिए प्लान करते हैं वही आपकी सुबह की सबसे बेहतरीन प्लानिंग होती है। यू नो, वो सुबह की अपने साथ पी गई एक कप कॉफी भी हो सकती है, अपने लिए बनाया गया बढ़िया सा डिटॉक्स वाटर भी हो सकता है, और अपने लिए एक बढ़िया सा ब्रेकफास्ट तैयार करना भी हो सकता है, या फिर रेडियो पर बैठकर दो मिनट शांति से सताक्षी को सुनना भी हो सकता है, अपने साथ की गई एक्सरसाइज भी हो सकती है। वो कुछ भी जो आप खुद के लिए इस मॉर्निंग प्लान करते हैं उसके साथ आपकी मॉर्निंग और भी बेहतरीन हो जाती है। सो क्या है इस मॉर्निंग आपकी अपने लिए प्लानिंग, मेरे साथ शेयर करना मत भूलिएगा। और फिलहाल चलिए आपको अभी आगे लेकर चलती हूँ एक और गाने के साथ, इसे सुनिए और मेरे साथ सुनते रहिए। इट हैपेंस ओनली ऑन रेडियो प्रस्वानी 1701।

0: May I? Some matches are made in heaven and some are made at weddings. Every wedding is special. Think weddings, think Roy Singh. From the grand ballroom to your childhood backyard to a faraway beach, the big day comes in all sizes and styles, and that is why I'm proud that you have trusted me with your civil wedding, and I cannot wait to help you create yours. Contact me, Roy Singh, today on 0411-022-602, 0411-022-602, or email me at royleendrasingh@gmail.com. Think weddings, think Roy Singh.
1: वेलकम बैक, इट हैपेंस सुन रहे हैं सताक्षी के साथ रेडियो ब्रिस्पानी पर, और इट हैपेंस में चलिए ये वक्त है आज के गानों की हैट्रिक का। तो गानों की हैट्रिक में पहला ट्रैक कौन सा है, आइए गुनगुनाते हैं।

एंजॉय कर रहे हैं सताक्षी के साथ दोस्तों रेडियो प्रस्वानी पर, और इट हैपेंस में चलिए आपको आगे लेकर चलते हैं आज के गानों के हैट्रिक के लास्ट ट्रैक के साथ। के प्लस इनटू रेडियो प्रस्वानी, मेरे साथ एंजॉय करते रहिए इट हैपेंस।

0: Some numbers carry weight beyond what you see. Q11700, the master number of Vedic tradition, a heritage Queensland plate, first issued in 1922, a piece of Queensland history with full provenance, owned outright, transfer ready. For the buyer who understands that the number you carry is a statement of who you are, Q Plate Sales. Inquire at qplatesales.com.au. It's not just a number, it's a statement.
1: आप माने या ना माने, बात बिल्कुल सही है। मौत और टैक्स से कोई नहीं बच सकता, लेकिन आपका हुनरदार अकाउंटेंट आपको कम टैक्स भी भरवा सकता है और अधिक टैक्स वापस लौटा भी सकता है। स्मॉल और मीडियम बिजनेस टैक्स अकाउंटिंग, ऑल इनकम टैक्स बेस आदि विषयों में वर्षों के अनुभवी बिजनेस अकाउंटेंट प्रकाश मेनन का जवाब नहीं। प्रॉम्प्ट पर्सनलाइज्ड एंड प्रोफेशनल सर्विस के लिए ऑब्लिगेशन फ्री अपॉइंटमेंट फ्री ऑफ चार्ज रिंग करें प्रकाश मेनन को। फोन 3630-5438 या मोबाइल 0415-952-660 0415-952-660

या इट हैपेंस पर सताक्षी के साथ हैं आप और एंजॉय कर रहे हैं मेरे साथ इस मॉर्निंग कुछ बहुत ही बेहतरीन और प्यारे से गाने। देखिए जिंदगी बहुत सारी चीजों को आपको सिखाती है और बहुत सारी चीजों से भरी हुई है, लेकिन अगर आप मुझसे पूछें कि जिंदगी में सबसे इंपॉर्टेंट चीजें क्या हैं, तो मुझे लगता है कि जिंदगी पूरी तरह से डिपेंड है भूलने पर, जो किया है जो गलत किया है इनफैक्ट उसके लिए थोड़ा सा पछताने पर, और लाइफ ने जो आपको लेसन्स दिए हैं उनको याद रखने पर। लेकिन हम करते बिल्कुल इसका उल्टा है, अपनी गलतियों को हम कभी रिग्रेट करते नहीं, उस पर ध्यान देते नहीं है, चीजें हम भूलते नहीं हैं, और लाइफ के लेसन्स तो याद रखना जैसे लगता है कि हमें अपनी गलतियां याद रखने के लिए कहा जा रहा है। तो भाई इसीलिए लाइफ की इतनी सारी प्रॉब्लम से हम और आप घिरे रहते हैं। ख्याल रखिए ताकि जिंदगी बेहतरीन हो सके। और चलिए आपको एक और ट्रैक के साथ अभी आगे लेकर चलती हूँ, इसे भी सुनिए और मेरे साथ बने रहिए इट हैपेंस में, सिर्फ और सिर्फ आपके अपने रेडियो ब्रिस्वानी पर।

0: जो प्रस्वानी पर इस वक्त आपने सताक्षी के साथ आज की सुबह, आज की मॉर्निंग एक बार फिर से और हमेशा की तरह ये मॉर्निंग भी कई सारे प्रॉब्लम से घिर कर आई होगी। जी हाँ, मतलब ऐसा तो नहीं हो सकता कि हर एक सुबह की जर्नी जो है वो बिना किसी प्रॉब्लम के गुजर जाए। भाई लाइफ है और इस लाइफ में ढेर सारी प्रॉब्लम्स भी साथ रहती हैं, जैसे कि उसके सॉल्यूशंस रहते हैं। तो हाँ, यही तो आपसे कहना है कि लाइफ की जर्नी में जब प्रॉब्लम्स आती हैं तो अपने साथ वो लेसन्स लेकर आती हैं जो उसको सॉल्व करवाते हैं। लेकिन बस एक चीज़ है जो इस बीच में हम भूल जाते हैं कि हमारी जो प्रॉब्लम्स हैं उनका सॉल्यूशन उन्हीं के साथ आए और हम उनको लेकर परेशान होना शुरू हो जाते हैं। तो बॉस, जिंदगी में कोई भी ऐसी परेशानी नहीं है जिसका कोई हल ना हो, है ना। तो एक्सपीरियंसेस जो हैं आपके, अगर आप उनको गौर करना शुरू करेंगे तो धीरे धीरे अपने एक्सपीरियंसेस के दम पे आप उन प्रॉब्लम्स को हल भी कर पाएंगे और उन प्रॉब्लम्स को जीत भी पाएंगे। ठीक है जी, तो चलिए आप अपनी प्रॉब्लम से निकलने के तरीके सोचिए। मैं फिलहाल आपके लिए प्ले करती हूँ ये अगला ट्रैक। स्टे ट्यून्ड, रेडियो प्रस्वानी सताक्षी के साथ, एंजॉय करते रहिए इट हैपेंस।
1: किस्मत से ज्यादा और वक्त से पहले कुछ नहीं होगा भैया।
2: तुझे पता माँ क्या कहती थी? कहती थी बेटियों की शादी कराने के लिए महादेव खुद आते हैं, जिस राम ने चोंच दिए वही दाना भी देगा।